अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करती हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं।

तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं। ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से

कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और चार उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो चार उंगलियां दोनों हाथों की दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को यानी कि 2 और 2 4 दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपनी स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में

हमने अपने चेहरे की यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्ध प्राणायाम, कपालभाति मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ। शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो। आप शायद इस लाइन से परिचित नहीं हैं, लेकिन आज इसी लाइन को मैं आपको आ रही हूँ परिचित कराने, यानी आपकी योगिनी समता। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो योगशाला में, जो कि आपकी आर्य समता लेकर के आती है। ये अभी आपने जो लाइन सुनी ना, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि तेरा आहार हो। प्राकृतिक चिकित्सक का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यही है कि आहार ही ऐसा किया जाए जो औषधि का नाम दे, यानी औषधि को नाम देने के साथ साथ उसे काम भी दे और जिससे शरीर के विकार स्वयं दूर हो जाएं। शायद आपको ये भी पता होगा कि पूर्णता सिद्धांत भारतीय विद्वानों के मत से मिलता हुआ है। इसे भारतवर्ष की विद्याओं का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक माना गया है, क्योंकि उस 2500 पुराने युग में भारत की सभ्यता और संस्कृति का संसार के सभी भागों में प्रचार तब तक हो चुका था। इसलिए इस प्रकार जब तक मनुष्य प्रकृति की गोद में पलते खेलते थे, उनका रहन सहन भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल था, तो वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक ढंग से ही करते थे। पर मध्यकाल में जब बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हो गई, तो उन्हें बड़े आदमियों के रहन सहन में भोग विलास की अधिकता होने लगी और उनकी पूर्ति के लिए भांति भांति की कृत्रिम उपायों का प्रयोग भी करना पड़ा, जिसके चलते साधारण लोग भी उनकी नकल करने लगे। नकली चीजों का इस्तेमाल अधिक सुंदर और आकर्षण बनने के कारण से उनके स्वरूप पर पड़ने लगा, उनके शरीर पर पड़ने लगा, उनके मस्तिष्क पर पड़ने लगा, जिसका सीधा असर उनके अपने रहन सहन पर भी होने लगा।
इसीलिए आज जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है प्राकृतिक योग। योग में प्राकृतिक का क्या समावेश है? प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ होता है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषज्ञ, प्रकृति के पांच मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। विचार पूर्वक देखा जाए तो यह कोई ऐसी गुहा विषय नहीं है। जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता रहता है, तब तक बिना सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें लाभ होता आया है। जब वह मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग करके कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षण और के स्वास्थ्य संबंधी उलझने बढ़ने लगती हैं और समय समय पर उनसे शरीर में कष्टदायक प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जिसको रोग कहा गया है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आजकल बहुत सारी प्रचलित हो गई हैं, जिसमें हजारों तरह की औषधियां, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम उपयोगों को लेकर के हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की ओर चलते जा रहे हैं। लेकिन शायद आप ये जानते हैं कि प्रकृति अपने आप में एक डॉक्टर का काम करती है। जैसे हम बिना किसी दवा के लिए किसी भी रोग को पूर्णता नहीं ठीक कर सकते हैं, हमें उस दवा की आवश्यकता होती है और हम दवा लेने के लिए जायसी बात है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक वैसे ही चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उतनी ही लाभवत है जितना कि हम अपने शरीर के लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मानसिक चिकित्सा, उपवास, वायु चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और आहार। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सभी चिकित्साएं हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ये अन्य चिकित्साओं में श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि हम हर एक रोगी को दवाई देकर ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, उनसे दवाइयाँ, इंजेक्शन इत्यादि का उन पर प्रयोग होता है और वह उपचारों का आश्रय लेता है। रोग के कारण रोगी में जो वह लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें दूर करता है और उन लक्षणों के विलुप्त होने पर डॉक्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। डॉक्टर रोगी के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इस चिकित्सा से कुछ दिन के लिए रोग दब जाता है और वह नष्ट हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जीवन की एक वो पद्धति है जिसे हम अपने आप में स्वस्थ रह करके उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला कुदरती इलाज के मूल तत्व पंच महाभूत। शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु नाम के पांच तत्वों से हुआ है जो पंच महाभूत कहलाते हैं। इनमें सबसे आवश्यक तत्व वायु है, जिसके बिना एक क्षण का अस्तित्व ही नहीं है। वायु जीवन है, तेज तत्व शरीर को शक्ति पहुंचाता है। जल से रक्त संचालन का कार्य ठीक प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे चिकित्सा पद्धति में वायु का प्रयोग क्या होना चाहिए। वायु का प्रयोग, प्राकृतिक जीवन के अनुवायु को हवा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वैसे हवा तो हम सभी लेते हैं, किंतु ईश्वर का प्रसाद तो स्वच्छ ताजी वायु में प्रकट होता है। घर के चार दीवारी या गंदी नालियों और कूड़े करकट से भरे मोहल्लों, बाजारों या कारखानों में स्वच्छ हवा मिलना कठिन है। अतः हमें चाहिए कि प्रातःकाल किसी उद्यान, जंगल या शहर से दूर टहलने जाएं और ताजी हवा से फेफड़ों को खूब भरें। प्रातः सायंकाल स्वच्छ हवा में दीर्घ उच्चारण यानी दीर्घ मंत्र उच्चारण का प्रयास करना चाहिए। ये कसरत करने से फेफड़े सशक्त रहते हैं। वायु अधिक लेने से रक्त शुद्ध होता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। आपके मकान, खिड़कियों और रोशनदानों से युक्त जो भी हवा आती है उसे हमें स्वतः लेते रहना चाहिए। सोते समय कमरे में यथेष्ट वायु रखें। बिस्तर पर पड़कर आप कपड़ों से मुंह ना ढकें। दूसरी बुरी आदत मुंह से सांस लेने की होती है। काफी लोगों को ये देखा गया है कि सोते समय उनका मुंह खुल जाता है या उनकी आदत में आ जाने से उनका मुंह वह स्वयं ही खोल लेते हैं। या चिकित्सा में वायु मुंह से लेना सबसे खतरनाक साबित होता है।
नथनों की राह श्वास लेने से वायु को स्वच्छ होने पर अवसर मिलता है और उसे जितना गर्म या ठंडा होना चाहिए वो वैसे ही ली जा सकती है। वायु के संपर्क में अधिक से अधिक रहने की आदत डालिए। अपना अधिक समय उद्यान, सरिता तट, खुले स्थानों, सैर सपाटे, जंगलों, प्रकृति के आंचल में रहकर व्यतीत कीजिए। वायु का जितना अधिक

उपयोग कर सकें कीजिए। हवा लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे, यह निराभ्रम ही है। शुद्ध स्वच्छ और ताजी वायु तो प्राणदाता है, उसे अपने अंदर कार्य करने दीजिए। प्रकृति की यही सबसे बड़ी एक अनोखी हमारे लिए उपहार है, जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं और उस उपहार से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति हमारे लिए स्वयं चलकर आती है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना चाहिए। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख और शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण से बलदायक भी मिलता है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सोते समय हमें अपने नथुनों से यानी अपनी नासिका से ही श्वासों का लेना निरंतर जारी रखना चाहिए। मुंह से जितना हो सके श्वास नहीं लेनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी निवृत्त रहते हैं। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना पड़ता है और चाहिए भी। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निद्रा और शरीर में शांति होने के कारण पृथ्वी का बलदायक प्रभाव सूर्य स्नान या नंगे बदन सोने की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उनके पास एक उपाय ये जरूर होता है कि आप थोड़ी देर नंगे पैर जमीन पर चलें।

स्वाभाविक और आरोग्यप्रद है। नंगे पांव चलने वाला पांव को दृढ़ करता है और पृथ्वी से प्राण शक्ति खींचता है। नंगे पांव चलने से रुद्राभिसरण बराबर होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होती है। कई रोगों में पृथ्वी पर सोने पर चमत्कारिक लाभ होता है। सोने के लिए ऐसी भूमि पसंद करनी चाहिए जहां घास स्वाभाविक जीवन प्रारंभ करने वालों को कुछ दिन हवादार पर्णकुटी में सोना चाहिए। आनंदी और फुर्तीला रहने के लिए यथासंभव प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति में पशु कम सोते हैं किंतु गहरी निद्रा सोते हैं। हम भी यथाशय आराम के लिए नवजीवन संचार के लिए विश्राम करना चाहिए। थोड़ी और आवश्यक नींद लेने से दृढ़ता दीर्घायु एवं नवजीवन आता है। अधिक नींद लेने से आलस्य बढ़ता है, आयु और समय का भी नाश होता है। कृत्रिम शिथिलता अधिक निद्रा का परिणाम हो सकती है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी सोचा है या सुना होगा, आपने सुना होगा कि हम जब भी योग के लिए बताते हैं तो हमेशा से ये कहते हैं कि जमीन पर बैठकर योग नहीं करना है, मतलब जमीन पर कुछ बिछा करके ही बैठ करके योग करना है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, जमीन का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के साथ मिलकर के एक नई ऊर्जा बनाता है, जिसके कारण से योग से निकलने वाली ऊर्जा का जो स्तर है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम योग करें तो हमें कुछ न कुछ चटाई मैट या कोई पुरानी चद्दर बिछा करके ही बैठ करके हमें योग करना चाहिए। लेकिन आज कुछ दो ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जिसको करने से सीधा का सीधा पृथ्वी का जो लाभ है, पृथ्वी से निकलने वाला गुरुत्वाकर्षण है, उसका लाभ हमें निरंतर मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे प्राणायाम जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो आपको करना है, तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं मात्र दो ऐसे प्राणायाम जो सीधा सीधा पृथ्वी से जुड़ करके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है ध्यान योग मुद्रा। ध्यान योग मुद्रा यदि हमें पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण को लेना है तो हमें किसी मैट या चटाई पे नहीं बैठना है। दूसरा है शवासन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कई बार कि सब प्राणायाम योग करने के बाद में शवासन जरूर करना चाहिए। जमीन पर आराम से शरीर को ढीला करके लेट जाना होता है और सारी प्रक्रियाओं को आंतरिक स्थिति से यानी मनोस्थिति में उस पूरे योग प्राणायाम को दोहराना है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का कोई जानवर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, मनुष्य इन मादक पदार्थों का विष लेकर सेवन करता है और प्रकृति के द्वारा सजा पाता है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बैठिए, सोइए, चलिए, विश्राम कीजिए। पृथ्वी की आर्द्रता या सर्दी से न डरकर घूमने फिरने या यात्रा के लिए जमीन पर बैठकर या सोकर आराम करने का अभ्यास चाहिए। उत्तेजित मस्तिष्क वाले आदि वातग्रस्त मनुष्यों को शांतिपूर्वक पृथ्वी पर बैठने और सोने से अधिक लाभ मिलता है। रात्रि के समय प्रकृति से एक नया जीवन प्रभाव निकलता है। रात्रि के समय पृथ्वी की शक्ति अति प्रबल हो जाती है। तो आइए हम आपको कुछ और ऐसे योग से आपको बताने जा रहे हैं जो कि हम घर में बैठ करके ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं।

0: संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
1: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आपके संग तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 9.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

आइयो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा?
1: और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

0: तेंदुलकर बिना इंडिया अधूरा, जय को वीरू करता है पूरा, रॉ को बुलाए और हंटर ना आए,
1: ऐसे डायलॉग पे रजनीकांत भी ताली बजाए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो हाय भाई, क्या हाल चाल है? अपने हाल चाल को बता दें, क्योंकि आज जो हवा चल रही है वो बड़ी गजब की चल रही है। मन तो किया कि किसी व्हीकल से ना करके डायरेक्ट हवा पर सवार हो जाए और आ जाए, क्योंकि इतनी बेहतरीन हवा, मतलब बहुत कम ही ऐसी हवाएं जो है वो नसीब होती हैं, लेकिन जब भी चलती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई और इस तरह की हवाएं चले तो हम कहीं अलग ही दुनिया में चले जाए। वैसे अलग दुनिया में जाना किस किस को पसंद है, आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया आपको बताने का कि मॉर्निंग वाला आज का क्या थॉट ऑफ द डे है, वो भी मंडे स्पेशल। सो मंडे स्पेशल थॉट आ गया है आपकी मॉर्निंग शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के जरिए। क्या है, आइए जानने के लिए चलते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? आज का थॉट ऑफ द डे कहता है, ख्वाबों को थोड़ा ठहरना चाहिए, ख्वाबों को थोड़ा ठहरना चाहिए, आंखें थोड़ा आराम चाहती हैं। ख्वाबों को थोड़ा ठहरना चाहिए, आंखें थोड़ा आराम चाहती हैं। भाई वैसे तो मंडे है और मंडे होते ही हम भागने की बात करते हैं, निकल जाने की बात करते हैं, जुट जाने की बात करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा ख्वाबों को ठहरा देना चाहिए। जिस ख्वाब के लिए आप दिन की शुरुआत करते हैं, रात में सोच के सोते हैं, उस ख्वाब के लिए ख्वाब ठहरेंगे तो आंखें थोड़ा आराम जो चाह रही हैं उनको मिल जाएगा। सो भागते रहना और बढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मंजिल के जाने

एंड लिटरली बिलीव मी कि जो थोड़ा सा आराम होता है, ये जो कुछ नहीं करने वाला फेज होता है, टेंशन में नहीं, जानबूझकर कुछ वक्त के लिए कुछ भी नहीं करना, ये आपको रिलाइव करता है। जी हाँ, ये वापस से पुनर्जीवित करता है, ये आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ाता है, ये एहसास कराता है कि कितने रास्ते मुकम्मल किए अभी तक आपने और किधर जाना और कैसे। इसलिए इसको जरा सा भी कम नहीं आंकना है। और कई बार ऐसा ही होता है, चलते रहते चलते रहने के साथ साथ थोड़ा सा ठहरने के लिए बहुत मन करता है। तो कभी अगर ऐसा मन करे तो ज़रूर इस बात को याद रखिएगा कि इतना आराम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कैसा लगा आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ डे? चलिए, जो कि हमको सुन रहे हैं 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, वो चैट पर आकर के बता सकते हैं कि आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे कैसा लगा। और वैसे भी ठहरना तो आज इसलिए भी है क्योंकि हवाएं चल रही है, और हवाएं चल रही हैं अपने लिए नहीं, आपके लिए। इसलिए काम पे जाते वक्त, नाश्ता करने के बाद और थोड़ा सा भी फ्री हो जाने के बाद हवाओं को महसूस ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल महसूस करने के लिए एक सॉन्ग भी आप तक आ रहा है आपके इसी मॉर्निंग शो में।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब आइए, वक्त आ गया है जो थॉट ऑफ द डे हमने बताया उस पर आपके रिएक्शन को देखने का, और साथ ही साथ आज की सुपर वाली मॉर्निंग पे आपका क्या है कहना और आज की मॉर्निंग आपके लिए कैसी रही, ये सब कुछ जानते हैं चैट बॉक्स पर आकर। वेलकम करते हैं उनका जो फ्रिक्वेंसी से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। तो चलते हैं उसी एप्लीकेशन के चैट पर जो कि लाइव हम तक पहुंचता है। क्या मैसेज आया है, लेट्स गो।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आर्जी अकान।

हाँ जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू से अगर हम बताएं कि भाई कैला मैसेज किसका पहले आया है, तो सविता दुबे जी का आया है। लिखा है, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और बहुत सारे इमोजीज हैं, सितारे हैं, हार्ट इमोजीज हैं, भाई बड़ा प्यार भेजा है आप सभी लोगों ने, बहुत शुक्रिया। गाने आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, दैट्स वेरी गुड। मुकेश मौजूद हैं, लिखा है, गुड मॉर्निंग सर, दिल से वेलकम। क्या बात है भाई, दिल से वेलकम करते हैं तो ऑफ कोर्स दिल से आने का मन करता ही करता है। गुड मॉर्निंग टू यू मुकेश, आपका भी दिल से ही वेलकम करते हैं। एंड आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ मौजूद हैं, लिखा है कि आज लखनऊ में तेज़ आंधी तूफान है। क्या बात है, अच्छा तो कहीं ना कहीं मौसम काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ नज़र आ रहा है अपने ईस्ट यूपी में स्पेशली। और धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास गोंडा से मौजूद हैं, लिखा है, गोंडा गुड मॉर्निंग सुनने वालों को हमारी तरफ से नमस्कार, आपको भी नमस्कार और अदनान जी को भी नमस्कार, आपको भी, आज आपका दिन हैप्पी हो। थैंक यू सो मच, और आपका भी दिन हैप्पी हो। इसके बाद जो है अगला जो मैसेज है वो है सविता दुबे जी का, इसीलिए मैं 4 घंटे वाली काम लिया हूँ, आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा। हा हा हा, क्या बात है, आपको आज का सुविचार बहुत पसंद आया। मुकेश ने भी लिखा है गोंडा से ही कि वेरी नाइस थॉट सर, मंडे स्पेशल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आशु मिश्र जी ने भी कहा वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एंड आंधी स्पेशल सॉन्ग, राइट मुकेश, कितनी जल्दी कैच कर लेते हैं भाई आप। एंड यस, हाँ बिल्कुल सही बात है कि आज का जो थॉट है वो थोड़ा सा रुकने की बात भी करता है, आंखों को थोड़ा आराम भी चाहिए, जिसको लेकर के लिखा है सविता जी ने कि आज उन्होंने थोड़ा सा काम से ब्रेक लिया हुआ है। बिल्कुल इनकी तरह आप भी ब्रेक ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, देख सकते हैं खुद को, है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये कर रहे हैं तो ये करते रहना चाहिए, क्योंकि ये करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये जो ठहराव है, ये जो रुकना है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि शायद इसकी इम्पॉर्टेंस हमको काफ़ी ज़्यादा बाद में आखिर समझ में आती है, लेकिन हमको ये ठहराव चाहिए होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वक्त है जो निकल जाता है, तो हम बहुत कुछ पा तो लेते हैं, कमा तो लेते हैं, लेकिन वो गवा देते हैं जो महसूस करना था इत्मीनान से बैठ करके, जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत की थी, वो आज ही मिल रहा है, लेकिन हम न जाने क्यों हर रोज़ कल पे टाल कर ऐसे कल को बनाते हैं जो कभी आता ही नहीं है। फिलहाल चलते हैं खूबसूरत से गाने की तरफ, इस मौसम को और भी ज़्यादा खुशनुमा बनाने वाला है ये गाना। दर्शन रावल की आवाज़ में ज़रा गाने को गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। गेस कर लिया या नहीं, अगर नहीं किया है तो चलिए अब इस गाने को सुन लीजिए और बताइए कि भाई दर्शन रावल की आवाज़ में बढ़िया सा गाना जो हवाओं के साथ आता है वो कौन सा हो सकता है।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
0: अरे सुना
2: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मैंने डैड को अपने बारे में बता दिया कल।
4: हमारी शादी से ज्यादा तुमको ये समोसा और सॉस की पड़ी है।
5: नहीं बात सुन, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार कहूंगा तुझसे, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन समोसा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो पहले समोसा लेते हैं।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम है। न सिर्फ वेलकम है बल्कि आपको सिटी की अपडेट की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं कि आज क्या है आपके सिटी अपडेट में। सो ऑफ कोर्स आपने ट्यून कर लिया है ना 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। यस, आपकी हाँ बता रही है कि आपने ट्यून कर लिया है। तो चलिए अब हम भी ले चलते हैं आपको कि गोंडा में क्या कुछ हो रहा है अपडेट करने के लिए आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो फिलहाल आपको हम बता दें, एक बहुत बड़ी अपडेट है कि भैया अब आईपीएल में भी आपने बहुत जलवे देखे हैं, लेकिन अब टी20 मुंबई में भी आप देखेंगे कि भाई गोंडा का जलवा किस तरह छाता है। जी हाँ, दरअसल अकौनी के रहने वाले आदित्य सत्यप्रकाश सिंह का जो सिलेक्शन है मुंबई टी20 लीग में हो गया है। 2 लाख रुपए के बेस प्राइस में मुंबई पैंथर टीम ने इन्हें ऑलराउंडर के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया है। आदित्य जो है वो किसान परिवार के बेटे हैं। आदित्य की सफलता से उनके परिवार वाले काफ़ी खुश हैं। आदित्य के जो फादर हैं सत्यप्रकाश यानी किसान, वो क्रिकेट के प्रति आदित्य के जुनून को देखते हुए परिवार के लोगों ने उन्हें मुंबई भेजा है और अपने छोटे चाचा जय सिंह के साथ मुंबई नाला सोपारा में रह करके पढ़ाई के साथ ही क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आदित्य का कहना है कि 15 साल से ट्राई कर रहे हैं, मतलब अभ्यास कर रहे हैं, और वो मुंबई के अंडर 23 टीम का हिस्सा रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेटर आंजिक्य रहाणे की कप्तानी में 1 जून से होने वाले मुकाबले में आदित्य खेलेंगे। इस लीग में क्रिकेटर शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे जैसे बड़े क्रिकेटर भी लीग में हिस्सा लेने वाले हैं। सो इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं। आदित्य सिंह की सफलता पर उनकी माँ रीता सिंह, भाई छोटू सिंह और बहन आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हर विधानसभा क्षेत्र में 50 करोड़ से बनेंगी रोड्स। जी हाँ, बेशक सही सुना आपने। सो वित्तीय वर्ष 2026-27 में सड़क निर्माण काम को गति देने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है, और कल की बात है यानी कि इस बात की पुष्टि की गई कि आज सोमवार को डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सांसद और विधायकों के साथ बैठक करके प्रस्ताव लिए जाएं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आज ही करीब 50 करोड़ रुपए से सड़कें बनवाए जाने का प्रस्ताव लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के गोंडा सर्किल के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि भाई शासन का जो मंशा है उसके हिसाब से कलेक्ट्रेट में सभी सांसद विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के जो ज़रूरी काम हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसको लेकर के प्लानिंग की जाएगी और इस तरह से आज इसका प्रस्ताव बनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि भाई कल ऑफकोर्स आपने ज़रूर सुना होगा कि नीट का एग्ज़ाम था। सो कल गोंडा में भी कई ऐसे सेंटर्स थे जहां पर 3,822 कैंडिडेट्स ने नीट का एग्ज़ाम पे अटेम्प्ट किया। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो संजय सेतु है इसके 52 जॉइंट्स और 35 कोठियों की बेयरिंग जो है वो बदल दी गई है। सो तहसील से क्षेत्र रामनगर में सरयू नदी के पास मौजूद घाघरा घाट के संजय सेतु की मरम्मत के जो काम है वो हो रहा है। उसके 52 जॉइंट्स और 35 कोठियों की बेयरिंग बदली जा चुकी है। इसके अलावा अधिकारियों का कहना है कि ये ज़रूरी काम 20 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। पुल पर कुल 62 जॉइंट्स बदले जाने हैं जिन्हें अप और डाउन साइड में पार्ट करके किया जा रहा है। अब तक 52 जॉइंट्स बदले जा चुके हैं जो कि बाराबंकी से गोंडा बहराइच की तरफ जाने वाले साइड के हैं। बाकी के 10 जॉइंट्स बदलने के बाद डाउन साइड की तरफ काम शुरू हो जाएगा। मरम्मत के काम के तहत पुल की जो पुरानी डामर है परत खोद करके हटाई जा रही है, उस जगह पे नए सिरे से डामरीकरण किया जा रहा है जिससे आवागमन जो है वो और भी सेफ हो सके। पुल की 35 कोठियों की बेयरिंग भी बदली जा चुकी है और हर एक कोठी में 8 बेयरिंग लगती है। ये काम पुल की जो संरचना है उसको मजबूत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इससे पुल पर जो भारी वाहन है उसमें क्षमता में सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। सो फिलहाल ये एक अपडेट थी, एंड अगली अपडेट की तरफ चले कि कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से 20 वाला मटर समोसा 25 रुपए में बिक रहा है। जी हाँ, सो कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल, ढाबा, रेहड़ी, ठेला, फूड स्टॉल्स जो हैं, ये जो बिकने वाले सामान इस तरह के खाद्य सामग्री जिनको हम खाते हैं फूड आइटम्स, ये फिलहाल महंगे हो चले हैं। और फिलहाल शहर के ही एक व्यवसायी ने बताया कि 5 किलो के काम चलाते हैं और पहले ये सिलेंडर 642 रुपए में मिलता था, अब इसको 903 रुपए का हो गया है। 20 रुपए वाला मटर समोसा गैस सिलेंडर महंगा होने से 25 रुपए में बेचना पड़ रहा है। पूरी सब्जी के दाम 20 से बढ़कर 25 हो गए हैं
और प्रति दोना चाय के दाम 10 से बढ़ा करके 12 कर दिए गए हैं। फिलहाल इसके बाद चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट किधर से आ रही है आपको बताया जाए कि फिलहाल देवी पाटन जोन के चारों ज़िलों में 2,20,000 घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर्स। जी हाँ, सो फिलहाल स्मार्ट मीटर्स को लेकर के जहाँ एक तरफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं, वहीं पर पूरे देवीपाटन जोन में यानी डिवीज़न में 2,20,000 घरों में स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ज़िला सूचना कार्यालय में कई सारी योजनाओं का फ़ायदा देने के लिए शिविर का आयोजन सुबह अभी 10 बजे से किया जाने वाला है। इसके अलावा शाम 5 बजे गांधी पार्क में ताइक्वांडो खिलाड़ियों का जो है उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। सो फिलहाल नीट का एग्ज़ाम को लेकर के कल जिस तरह से हमने शहर में भीड़ देखी थी, कल नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। ज़िले में 9 ऐसे केंद्रों हैं जहां पर नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें 3,917 में से 3,822 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया। बट फिलहाल स्टूडेंट्स का कहना था कि बायोलॉजी आसान थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ने किया परेशान। जी हाँ, फिलहाल इतनी ही अपडेट थी जो कि गोंडा से हमने आपको दे दी। आई होप कि आपके काम की ज़रूर रही होगी। और अब फिलहाल चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, और अगले सॉन्ग को सुन लेने के बाद वापस से आने वाले हैं। आप फिलहाल बने रहिए अपने गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, आज है मंडे, सो मंडे वाला फुल मूड हमको बना के रखना है, यानी एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं होनी चाहिए, एनर्जी चलती रहनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। सो फिलहाल अगला जो गाना आ रहा है वो आपकी मॉर्निंग वाइब लेकर के आ रहा है। सो आइए इस गाने को मिल करके एंजॉय करते हैं एक साथ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और अगला गाना आप सभी के लिए मॉर्निंग स्पेशल।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइफ टाइम आपने जिस इमेज को बनाया हो उससे कई बार आप निकलना चाहते हैं। एक ऐसी ही बात है इमेज से निकलने की जो कि है मूवीज से जुड़ी हुई। जी हाँ, अब आप सोचेंगे मूवीज में ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन है वो महाशय जो अपनी ही बनाई गई इमेज से अब बाहर निकल के एक नई इमेज बनाने की बात करते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: मुझे कॉमेडी में फंसा दिया गया था।
1: जी हाँ, दरअसल ये किसी और का कहना नहीं है, बल्कि आपको हम बता दें देवेन का कहना है। अब ये देवेन हैं कौन? देवेन जिन्होंने कॉमेडी ने उन्हें पहचान दी, लेकिन उसी ने इन्हें लिमिटेड भी कर दिया। अब ये गुजराती फिल्म धबकारों में नजर आ रहे हैं, इसके जरिए खुद को एक अलग तरह से पेश करने का मौका है। सो बातचीत से मीडिया में इन्होंने बताया कि टाइप कास्टिंग और अपने करियर के उतार चढ़ाव, धुरंधर में राकेश बेदी की कास्टिंग और इंडस्ट्री के नए नज़रिए पर खुलकर इन्होंने बात भी की। सो इन्होंने कहा कि मुझे कॉमेडी में सीमित कर दिया गया था। जी हाँ, देवेन कहते हैं कि मैंने कॉमेडी बहुत की है और मुझे उस पर गर्व है, क्योंकि कॉमेडी करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे उसी में सीमित कर दिया गया। लोगों ने मान लिया कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, जबकि मेरे अंदर और भी बहुत कुछ है। एक बार आपने जो कर लिया, लोग उसे आपको उसमें फिट कर देते हैं। सो थिएटर में विलेन किया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, देवेन बताते हैं कि मैंने थिएटर में अलग अलग तरह के रोल्स किए। अपने पहले प्ले में मैंने एक विलेन का रोल किया था और उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। यानी शुरुआत से ही मैंने खुद को अलग अलग किरदारों में आजमाया है, लेकिन टीवी और फिल्मों में लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए वो उसी सेफ रास्ते पर चलते हैं जो उन्हें दिखता है, वही उनको सच लगने लगता है। सो स्क्रिप्ट सुने बिना ही आधा मन बना लिया था। जी हाँ, नेशनल अवार्ड विनय डायरेक्टर अभिषेक शाह के साथ काम करके इनका अनुभव को कहते हैं कि जब अभिषेक का फ़ोन आया तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने उसकी फिल्म हेलारो देखी थी और मैंने पहले ही उसके काम से प्रभावित हो गया था। सच कहूँ तो धबकारों की स्क्रिप्ट सुने बिना ही मेरा 50% मन बन गया था। फिर जिस तरह उन्होंने नरेशन दिया, मुझे पूरी फिल्म आँखों के सामने नज़र आने लगी और समझ आ गया कि ये कुछ अलग और ख़ास है। सो राकेश बेदी और गौरव गेरा जो है हमारी उम्मीद बढ़ाते हैं। देवेन कहते हैं कि राकेश बेदी जो कि धुरंधर में अलग अलग किरदार में देखा गया, अच्छा लगा। इतने सालों तक उन्हें कॉमेडी में ही देखा, लेकिन ऐसी कास्टिंग हम जैसे एक्टर्स की उम्मीद बढ़ाती है। गौरव गेरा को भी जिस नए नज़रिए से कास्ट किया, काबिल तारीफ है। और मैं आदित्य धर और मुकेश छाबड़ा को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने ऐसा फैसला लिया। जब कलाकार को नए नज़रिए से देखा जाता है तो लगता है कि हमें भी अलग अलग तरह के किरदार करने को मिल सकते हैं। एंड डेफिनेटली किसी भी एक्टर से अगर आप बात करना चाहें या किसी भी ऐसे थिएटर आर्टिस्ट से, हालांकि कई थिएटर आर्टिस्ट इस मामले में अभी सोए हुए हैं, लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि भाई अलग अलग किरदार करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अलग किरदार आपकी जो सीमित दायरे हैं उसको तोड़ करके आपको आगे लेके जाता है। जी हाँ, सो इसलिए इस तरह के किरदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड आम आदमी की बात करें तो हमको भी अपनी कुछ चीज़ों से बाहर निकलना होता है, हमें भी कुछ ऐसी ही चीज़ों में हम खुद को कैद कर लेते हैं और उसके बाद खुद को बाहर देखना चाहते हैं। सो आखिर ऐसा क्या होता है कि हम निकल नहीं पाते? क्योंकि हम खुद को ही सेफ जोन में डालने लग जाते हैं, और ये बात सच है। तो इसलिए आप भी लाइफ में जब भी आपको लाइफ कुछ अलग करने का मौका दे, ज़रूर करिए, करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कुछ अलग करेंगे तो फिर आपको समझ में आएंगे कि आपके अंदर और भी बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आपको खुद भी उसका ज्ञान नहीं है, बस खाली इंट्यूशंस आती है कि हाँ कुछ तो है। तो ये कुछ है को बहुत कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है आपकी लाइफ में भी। आप खुद को सीमित अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ खोलिए, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, बहुत सारा नज़रिया है, और उस नज़रियों को मिला करके अपना खुद का एक पर्सनल नज़रिया है। और फिलहाल सुनिए ना कितना प्यारा सा सॉन्ग अरिजीत की वॉइस में है, गदर 2 का दिल झूम। सुनने के बाद झूम जाएंगे आप।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
5: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी, और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
4: सच में? क्या खास है वहाँ?
5: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है, जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
4: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
5: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
4: और फोटोग्राफी वगैरह?
5: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
4: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
5: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
4: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

है तो ये शेयर होती है रात में भी, वरना रात में उसी यात्री का अधिकार होता है जिसका टिकट होता है, वही उस पर सो सकता है। इसके अलावा अपर साइड जो है दिन में नीचे साइड लोअर पर बैठ सकते हैं, बट रात में सीट पर कोई अधिकार नहीं होता, अपनी बर्थ पर जाना होगा, यानी अपनी बर्थ पर जाना होता है साइड अपर वाले को।

0: आता है RAC।
1: इसके अलावा जैसा कि बताया, जो मिडिल बर्थ है उसको फोल्ड रखना ज़रूरी होता है, सिर्फ रात में ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपर जो है लोअर बर्थ, अपर बर्थ पूरे वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड वाला आपको बता ही दिया है, RAC है तो नीचे साझा करेंगे, नहीं तो जिसका टिकट होगा उसी का ही, कन्फर्म टिकट जिसका होगा उसका ही अधिकार होगा। इसी तरह साइड अपर के बारे में बताया कि नीचे लोअर पर बैठ सकते हैं दिन में, रात में लेकिन नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपकी सीट ऊपर है तो आपको ऊपर ही जाना होगा। इसको लेकर के कभी भी कोई झगड़े करे कुछ भी है तो ये नियम जो रेलवेज़ का है वो आप तक हमने पहुंचा दिया। आई होप कि ये जानकारी आपके काफ़ी ज़्यादा काम की रही होगी। फिलहाल मौसम देख के लग रहा है कि भाई जिस तरह चेंज हो रहा है, मौसम काफ़ी ज़्यादा मेहरबान है, फिर से बदली छा गई है और मौसम हो गया है सुहावना। तो आइए खूबसूरत से गानों को एंजॉय करते हैं आपके बेहतरीन रोमांटिक से मौसम में। वीडियो मॉर्निंग चौक RJ अदनान जो कि कर रहे हैं आप सभी को ऑफ कोर्स एंटरटेन आपके मॉर्निंग वाले शो में। और फिलहाल हम मजे ले रहे हैं बदलती हुई रोमांटिक सुबह का आपके अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। वीडियो मॉर्निंग चौक RJ अदनान।

हाँ जी, क्या बात है भाई, सनम बैंड की आवाज में और ये गाना इश्क तो बुलावा, ऐसा लगता है सच में इश्क आ ही गया है। फिलहाल इश्क आया हो या ना आया हो या शायद रास्ते में हो, पर मौसम में जरूर बदलाव आ गया। धर्मेंद्र मोहन जी ने कहा भी कि ऊपर वाला पासा फेंक नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छाव। ऑलराइट, एंड बहराइच से प्रीति जी ने स्वागत किया है। पहले तो सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। आपने कहा है कि बट बनारस में धूप है इस समय, ये कैसे? आप बनारस में हैं या बहराइच में? आप पहले क्लियर करें, क्योंकि आपके यहाँ से इंटरसिटी जाती है बनारस में, ये तो हमको भी पता है।

नाइस इन्फॉर्मेशन ट्रेन के बारे में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई। वैसे आप हैं कहाँ से, आप बनारस में धूप है ये कैसे आपने जान लिया, इस बात को आप ज़रूर बताएं। और आइए चलते हैं सोनू निगम की तरफ, एक बेहतरीन खूबसूरत सा गाना जिसको सुनने के बाद आप कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है जी, मॉर्निंग में गाना तो अलग ही लगता है।

0: ये कुछ ऐसी कहानी होती है जो हमको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है। फिलहाल जब वो कहानी रियल लाइफ की हो तो कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर करती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा गांव जहां वाटर एटीएम, डिजिटल क्लासेस, साफ सड़कें और 100% प्लास्टिक फ्री, और ये कोई स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि एक फ्यूचर गाँव है, तो आप बिलीव करेंगे? थोड़ा सा मुश्किल है ना। चलिए हम बताते हैं आपको कि ये महाराष्ट्र का आखिर कौन सा फ्यूचरिस्टिक गांव है जहां वाटर एटीएम है, डिजिटल क्लासेस हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं और 100% प्लास्टिक फ्री माहौल है। आखिर ये जगह है कौन?
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई आखिर क्या है ये गांव? सो मुंबई से तकरीबन आपको हम बता दें 250 किलोमीटर दूर पुणे के अडाचीवाड़ी गांव में जो है ग्रामीण जीवन एक अलग तस्वीर पेश करता है। लिटरली आप यहाँ देखेंगे तो हैरान होने वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं उनका अगर आप अनुशासन देखेंगे और सिविक सेंस, जिसकी बात हम इस वक्त पूरे इंडिया में करते हैं, ये खुद गांव को आगे बढ़ाने का काम करता है। एक वक्त था जब अचाड़ी वाड़ी में पानी की कमी से ये जूझ रहा था और सिंचाई के लिए भी प्रॉपर पानी नहीं था, लेकिन आज वाटर मैनेजमेंट एक ऐसा है कि पूरे साल जो है वहाँ के खेत हरे भरे होते हैं। बिल्कुल उस स्टेट में, जिस स्टेट में पानी की इतनी कमी है, वहाँ वाटर मैनेजमेंट ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला। अंजीर जो है वो यहाँ की मुख्य फसल है, 70% महिलाएं जो है वो खेती संभालती हैं यहाँ पर, और यहाँ की सेफ्टी के लिए 46 सीसीटीवी कैमराज जो कि सड़कों पर नज़र रखते हैं। बिना रेगुलर पुलिस के भी इस गांव में ज़ीरो क्राइम रिकॉर्ड है, यानी पुलिस की मौजूदगी के बिना भी यहाँ पे ज़ीरो क्राइम रिकॉर्ड है। ये है इस गांव का हाल। एंड आपको हम बता दें कि रोज़ दिनचर्या जैसे हमारी अलग अलग तरह की होती है। इस गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ सुबह उठकर अचाड़ी वाड़ी के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, सबसे पहले अपने घरों के साथ सड़कों को साफ़ करते हैं, यानी उनके घर के आसपास का जो एरिया होता है उसको साफ़ करते हैं। और यहाँ की सड़कें और नालियाँ किसी मेट्रो सिटी से ज़्यादा साफ़ सुथरी आपको नज़र आने वाली, जितना आप किसी मेट्रो सिटी में साफ़ सुथरा पाते हैं उससे भी ज़्यादा साफ़ आपको इस अचाड़ी वाली गांव में नज़र आने वाली है। इसके अलावा स्कूल्स पूरी तरह से डिजिटल और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, बच्चे टैबलेट और लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं। स्कूल के बाद रिटायर्ड टीचर्स जो हैं वो फ्री ट्यूशन क्लासेस भी चलाते हैं, यानी वो उस गांव के रहने वाले जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो फ्री ट्यूशन क्लासेस बच्चों के लिए भी चलाते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें, अभी यही बात नहीं है, 100% प्लास्टिक फ्री गांव में स्वच्छता अभियान नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का हिस्सा है। सो लोग कचरे को अलग अलग करते हैं, डस्टबिन्स की लोकेशन गूगल मैप्स पर भी दिखती है इवन, ताकि बाहर से आए लोग भी कूड़ा ना फैलाएं और उनको भी कूड़ेदान में ही फेंके, इस तरह का मैनेजमेंट। इसके अलावा वाटर एटीएम की भी फैसिलिटी है, जी हाँ, जहाँ पर कार्ड स्वाइप करके सिर्फ 25 पैसे में पीने का पानी आप भर सकते हैं। इससे पानी सभी तक पहुँचता है और बर्बादी भी नहीं होती है। इसके अलावा यही बात नहीं रुकती, ये गांव के लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं। सो गांव में सिर्फ 300 रुपये की महीने फीस वाला एक शानदार जिम भी बनाया गया है, जो यहाँ के फिटनेस फर्स्ट वाली जो मानसिकता है उसको भी दिखाता है। सो यहाँ जिम्मेदार लोगों पर थोपी नहीं जाती बल्कि लोग खुद उसे निभाते हैं। और इस गांव की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ ना कोई बड़ा बजट लगा है, ना कोई बाहरी सख्ती है, बस ऐसे लोग जिन्होंने बहाने नहीं जिम्मेदारी चुनी है। अचाड़ी वाड़ी सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि इस बात का एग्जाम्पल है कि जब समाज अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो वो खुद भविष्य बन जाता है। यह है एक एग्जाम्पल अडाची वाड़ी का। सो अडाची वाड़ी इस तरह से एक अलग ही गांव है, जिसमें हमने जो बातें बताई वो आपको बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में इवन नहीं नज़र आती होंगी। वजह बात सिविक सेंस की हम करते हैं कि जो आसपास उस जगह के रहने वाले लोग हैं वो उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है, इस लिहाज से हम बात करते हैं। एंड लिटरली अडाचीवाड़ी जैसे गांव अगर कभी विज़िट करने का मौका मिले तो जाना चाहिए लोगों को, और देखना चाहिए कि वहीं के रहने वाले जो बाशिंदे हैं वो खुद किस तरह से ऐसी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और न सिर्फ उनका गांव साफ है, सारी फैसिलिटी है, वो भी एक ऐसा गांव जो हमेशा से ऐसे नहीं रहा है, जो बहुत पानी के बुरे हालातों से भी गुज़रा है, जहाँ पर बाकी गांव जैसे चैलेंजेस रहे लेकिन अपने उसने हर चैलेंजेस को ओवरकम करके स्मार्ट तरीके से बढ़ा है और बहुत स्मार्टली काम कर रहा है। किसकी वजह से? वहीं के रहने वाले लोगों की वजह से। तो क्यों ना एक छोटा सा कदम हम भी उठाएं और कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालें और पानी की बर्बादी ना करें। अगर टोटी कुछ इस कदर ख़राब है कि भाई उसमें से टप टप पानी बहता रहता है तो टोटी चेंज करा लें। और
वेस्ट नहीं करें। जिस तरह हम बहुत तेज़ धार में खोल करके वॉश बेसिन पर फिर मुँह धोते हैं, पानी हालांकि वेस्ट ही होता है, उसी तरह हम थोड़ा सा कम धार में खोल के अगर करेंगे तो उतना पानी हमको ज़रूर मिलेगा जितना हमको चाहिए होगा, यानी जितना रिक्वायर्ड होगा। तो चलिए छोटी सी शुरुआत हम भी करते हैं अपने शहर, अपने गांव और जहां से भी हम सुन रहे हैं इस गोंडा FM को, उसी जगह से। फिलहाल अडाचीवाड़ी गांव के बारे में आपको कैसा लगा जान करके हमको कमेंट करके बताइए ज़रूर। एंजॉय करते रहिए अपना गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, वीडियो मॉर्निंग जॉक, RJ अदनान।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

सोचता हूँ कितना ठीक मौसम था, लेकिन फिलहाल अभी कितना अलग हो गया देखते ही देखते, और क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। तो प्लीज ऑन द सीरियस नोट कि भाई अभी इस वक्त बाहर निकलना अवॉइड करें, जिस तरह का तूफान आ गया है और अलर्ट भी लगातार जारी है। अगर अभी आप वेदर फॉरकास्ट देखेंगे तो आपको बता भी रहा है कि स्ट्रॉम दिखा रहा है, यानी तूफान है। सो इस वक्त निकलने से बचें, एंड प्लीज़ जिन तक हमारी आवाज़ जा रही हो रोड्स पर, चौराहे पर, वो प्लीज़ पेड़ के आसपास ना खड़े हों, ऐसी किसी जगह पे, ऐसे किसी खंभे तार के पास ना खड़े हो जहां गिरने का रिस्क हो। एंड प्लीज़ अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो साइड में कहीं सेफ जगह लगा कर खड़ा कर दें, क्योंकि चलते रहने में बहुत रिस्क होता है, रास्ते में कुछ भी गिर सकता है, कुछ भी आ सकता है। एंड बारिश हो रही है इस तरह से, अगर जो बिजली के खंभे हैं, जो तार है, वहाँ पर आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। और ये अलर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जान माल का नुकसान अक्सर ऐसे ही तूफान में हो जाता है। सो प्लीज़ जहाँ तक आरजे अदनान की आवाज़ जा रही है, ये अलर्ट करिए, और अपनी जो कार है उसके दोनों इंडिकेटर्स ऑन कर दिए, जिससे इंडिकेट करते ना, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो गई है, पानी बहुत बरस रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की बन सकता है। इसलिए बहुत सेफली अगर आप बाहर गई हैं तो बहुत सेफ जगह जा कर के ख़ुद को रखें। एंड अगर अभी आप घर में हैं और निकलने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी देर आप अवॉइड करें अनटिल एंड अनलेस ये तूफान कम ना हो या थम ना जाए। एंड प्लीज़ सेफ्टी इज़ फर्स्ट, सो ये पहले ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मौसम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बिला वजह बाहर जाएं। तो इसलिए ख़ुद को अंदर रखें, जानवर अगर बाहर हो तो उनको भी सेफली करने की पूरी कोशिश करें। और ये अलर्ट जो है वो हम जनहित में बता रहे हैं, ताकि आप निकलने से पहले अलर्ट हो जाए। एंड प्लीज़ कोई और रिस्क मत लीजिएगा, ये हमारी गुजारिश है आपसे। और फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा शो विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-4095-84। 88404-4095-84। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, तो अब चाल से पता चल जाएगा आपको शुगर की शुरुआत की प्रॉब्लम। अब आप ये सोच रहे हैं ये कैसे? अजी, ये किसी और की बात नहीं है, KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक स्टडी में एक्टा साइंटिफिक न्यूरोलॉजी यानी ASNE में ये जो है एस्टैब्लिश हुआ है या पब्लिश की गई है ये रिपोर्ट। सो क्या है पूरी रिपोर्ट और क्या है भाई ये पूरी बात, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

सुबह ही मधुमेह की शुरुआत की अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ चाल से ही पता चल जा सकता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय ने, इसके फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपनी स्टडी में साबित किया है। स्टडी में एक्टा साइंटिफिक न्यूरोलॉजी में इसको जगह मिली है। इसके लिए डिपार्टमेंट को पेटेंट भी हासिल हुआ है। अगर हम जनरली देखें तो जो मधुमेह है इसकी पहचान खून की जाँच से होती है। इसके लिए फास्टिंग शुगर और HbA1c की जांच होती है। सो डॉक्टर बताती हैं सीमा तिवारी, दिलीप वर्मा और मनीष वाजपेयी ने 44 लोगों पर इसका रिसर्च किया, शोध किया, जिसमें से 22 मधुमेह रोगी और 22 गैर मधुमेह रोगी थे। सभी प्रतिभागियों को 11 मीटर लंबी सुरंग में चलने के लिए कहा गया। इस सुरंग में डेक्सा स्कैन और सेंसर जैसी खास मशीन लगाई थी। सो इस मशीन से दोनों ग्रुप्स के लोगों के चलने के दौरान उनकी स्पीड, उनका बैलेंस और बॉडी की जो एक्टिविटी है वो जांची गई। पता चल गया कि मधुमेह रोगियों की जो मांसपेशी है वो कमज़ोर थी, खासकर उनका दाहिना पैर बाएं पैर की तुलना में कमज़ोर था। गैर मधुमेह रोगियों में दोनों तरफ मजबूत मांसपेशियाँ और बेहतर बैलेंस पाया गया। मस्तिष्क का बायां हिस्सा जो है हमारी बॉडी की जो स्पीड है उसको बैलेंस करता है। खून में शुगर की मात्रा को बढ़ने की वजह से जो मस्तिष्क है वो बॉडी का संतुलन ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता है। इससे दाहिने जो ऑर्गेन्स हैं इसमें कमज़ोरी आ जाती है। और इस स्टडी की वजह से शुरुआती एज में भी मधुमेह का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद बचाव और ज़रूरी जो उपाय हैं वो उपचार की दिशा में भी तय की जा सकती है। सो AI की मदद से हो सकती है मॉनिटरिंग। डॉक्टर सीमा तिवारी बताती हैं कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के सहयोग से एक बड़ी स्टडी की प्लानिंग भी बनाई जा रही है। सो फ्यूचर में कैमरे और AI भी मधुमेह के जोखिम का पता लगाने के लिए चलने के पैटर्न का स्टडी कर सकते हैं। ऐसा होने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलने की संभावना है। सो 7 बजे तक रात का खाना खाने से कम होता है जोखिम, जी हाँ। सो जिनको मधुमेह है वो ज़रूर इस बार को और इस जानकारी को समझ ले कि KGMU के एंड्रोकाइनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसने साल 2024 में हुई स्टडी के हिसाब से रात का खाना 7 बजे तक खा लेने से वज़न और मधुमेह दोनों बढ़ने का जो जोखिम है वो कम होता है। सो अगर आप 7 बजे तक रात का खाना खा लेते हैं सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा आप करेंगे तो आपके मधुमेह का जो एक ख़तरा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसा कहना है स्टडी का। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ध्यान दें। और घर पर अगर इस तरह के कोई भी पेशेंट है तो उनको भी इस बारे में ज़रूर अवेयर करें ताकि वो भी अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। इसी के साथ ही साथ आइए अब हम चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं चैट बॉक्स पर, काफ़ी सारे लोग भी आ गए हैं, काफ़ी कुछ लिखा है। तो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद भी आ गए हैं। और सविता जी ने जानकारी दी थी कि आंधी ने काले काले बादल भी लाए हैं, बारिश होने वाली है हरखापुर में। सो हरखापुर नहीं बल्कि पूरे गोंडा में और आसपास के कई और भी एरियाज़ में हो रही है बारिश। और इसके बाद सोनी है फ्रॉम गोपालगंज, वेरी स्वीट मॉर्निंग टू यू सोनी, आपको भी। गीता श्रीवास्तव जी हैं गोंडा से, गुड मॉर्निंग डियर आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रमुख हैं लुधियाना से, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आंधी आई है, प्रमुख ने भी बताया श्रावस्ती से। एंड गीता जी ने भी रिक्वेस्ट किया है कि पेड़ के नीचे ना खड़े हों, बेशक सही बात है। और आज घर पर रहेंगी, सविता जी ने मूड बना लिया क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत अलग तरह का इस टाइम मौसम हो रहा है। मुस्तफ़ा फ्रॉम सऊदी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड नाइस इन्फॉर्मेशन बोला है गीता श्रीवास्तव जी ने, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन प्लीज़ एक बार वापस से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भाई मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो प्लीज़ इस वक्त बाहर निकलना अवॉइड करें और सभी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें। फिलहाल सुनते रहिए अपने गोंडा FM रेडियो गाना स्थली 89.6 FM को, क्योंकि ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और फिलहाल RJ अदनान के चलने का वक्त अब आ गया है। सो आज का शो कैसा रहा हमको ये कॉमेंट करके आप बता सकते हैं। और साथ ही बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के बाद 89.6 FM पर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। गांव की गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर के एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं। इस बार का एपिसोड हमारा मनकापुर से संबंधित है। उसमें बहुत सारे मधुर मधुर गीतों की जो माला पिरोई गई है वो श्रीमती किरण पांडे जी की मधुर आवाज में है और उनका साथ दे रही है जिमी, श्वेता, हरिओम। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं गांव की गूंज का ये नया एपिसोड। अरे भाई, सब तैयार हो? जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। अरे मनकापुर चलना है।
1: पर किरण दी कहाँ है? उनका तो कुछ पता ही नहीं है और जिम्मी भी अभी तक नहीं आई है, क्या करें?
0: अरे किरण दी को फोन लगाओ, पूछो कहाँ है, चलना है कि नहीं। कहीं थी 10 बजे तक निकल लेना और 11 बज रहे हैं, अभी तक उनका पता ही नहीं।
1: अरे बाबा, लगा रही हूँ फोन।
2: हाँ श्वेता, बस आ रही हूँ। मैं ना रात ही में अपने मायके चली आई थी, बस आ रही हूँ, तुम लोग तैयार मिलो।
3: किरण दीदी अपने नैहरे गई हैं, देखो कितनी देर में आवती।

0: चलो दीदी, बहुत देर होती है, हमका लौटे के समझाता।
1: किरण दी, आपको पता है कि गांव निकलना है, फिर भी इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी आप?
2: अरे देर हो गई, पर चलो जल्दी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है, रामनिवास को एक कप चाय पिला दो, बहुत ठंडी है।
3: देखो कुछ भी हो जाए पर हम लोग अपने गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कितना मजा आता है जब गांव में बगीचे में चारपाई डालकर हम लोग आराम से धूप सेकते हैं।
1: हाँ सच में श्वेता दी, ना कोई प्रदूषण ना कोई शोरगुल, कितना सुकून मिलता है ना गांव में। किरण दी आइए, हम लोग गाड़ी में बैठ गए।
2: अरे आज मैं साड़ी पहनकर चल रही हूँ, मेरी सास जू आ रही है, पर ये पेटीकोट में गांठ लग गई जो खुली नहीं रही। जिम्मी जरा तुम ही देखो।
1: देखती हूँ दी, एक मिनट।

0: अरे भाई मेरी सांस बहुत तेज है, जरा बच के रहना, और बड़े फैशन में रहती हैं।
1: हम लोग चाची को खूब सजा देंगे।
2: अरे नहीं संता दी, वो खुद ही इतनी सजी संवरी रहेंगी। मैं एक बार उनसे मिली हूँ, बहुत तेज हैं वो।
3: राम निवास भैया, जरा यही गाड़ी रोकिए, अमरूद बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ले लूं चाची के लिए।
4: अच्छा दीदी, रोकता हूँ।
1: आ गए हम लोग। किरण दी, आपके सासू जी कहाँ हैं?
0: वो रही धूप में बैठी हैं चारपाई पर, जो सबसे ज्यादा सजी धजी है, लाल साड़ी में, वही हमारी सासू जी हैं।

0: अच्छा, दिखने में ही बड़ी तेज लग रही है।
1: चलो चलो आओ, सब लोग चाची जी को राम राम कहते हैं भाई। चाची जी राम राम।
2: चाची राम राम।
3: राम राम बहनी, के हो तुहरे लोग?
4: चाची, हम सभी आपके पतोहिया के साथे में काम करी थे।
3: अच्छा अच्छा, आओ बहनी, बैठा बैठा सभी। हे दुल्हन, लाओ सबका चाय पानी कुछ पियाओ। का करती हो दादा? हाँ अम्मा जी, ला रही हूँ। बहुत चिल्लाती हैं अम्मा जी। सुनिए, अम्मा के लिए एक नौकरानी लगवा दीजिए।

0: गांव में आज भी कितना अच्छा लगता है। मैं तो कहीं भी रहूंगी पर अपने गांव बराबर आती रहूंगी।
1: अरे किरण दीदी है ना हम लोग को गांव-गांव घुमाने के लिए।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, चाहे जहाँ रहो पर अपने गांव अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ी रहो।
1: जब अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी रहोगी तो अपने माता पिता सास ससुर या पूरे परिवार से जुड़ी रहोगी और यही होना चाहिए।
3: बिल्कुल, अब देखो किरण दीदी के पड़ोस वाली अम्मा कहा बना कर लाई हैं हम लोग के लिए, वो भी एकदम गर्मा गर्म।
0: गांव में यही तो अच्छा लगता है, कितना प्रेम है एक दूसरे से। अरे वो देखो चाची अलाव जला रही हैं। अरे ठंडी भी तो बहुत पड़ रही है।
1: चलो चलो तापते हैं और यही बैठकर चाची जी के साथ खाना भी खाते हैं।
3: वाह सरसों का साग और जनरी की रोटी, अरे भाई मक्के की रोटी, मजा आ गया खाने में।

0: अरे तुम लोगों ने खाना खाया? ये खाना हमारी बड़की अम्मा ने बनाया है।
1: पर किरण दी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या हुआ, भैया से कुछ कहा सुनी कर ली क्या?
0: अरे समता, ये जरा जल्दी ही नाराज हो जाते हैं।
2: अरे कोई बात नहीं, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार होता है।
3: कोई बात नहीं, आप जाकर भैया जी को मना लीजिए, रूठना मनाना तो लगा ही रहता है।
0: अरे भाई, ये इनकी आदत है रोज रोज नाराज होने की, तनिक सी बात पर बस गुस्सा हो जाते हैं। अरे तो हार कौन चाहे।

0: अरे किरण दी, जाने दीजिए, भैया की बात को इतना दिल से न लगाइए। चलिए चलिए खाना खा लीजिए।
1: खाने में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, खूब लड़िए और जमकर खाना खाइए। क्यों समता दीदी?
2: भाई गांव में अभी भी बड़ों का सम्मान, प्यार और दुलार है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब देखो हम लोग आए तो किरण दी की बड़की अम्मा खाना बना कर ले आई ना, कितना अच्छा लगता है। ये प्यार देखकर कोई बाहर से आया तो पूरा परिवार आकर स्वागत में खड़ा हो जाता है।
3: हाँ ये बात तो है, गांव में अपनापन है, इसीलिए कहती हूँ कहीं भी रहो पर अपना गांव, अपना घर, अपनी मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए।
0: और हाँ, अपने लोगों से आप तभी जुड़कर रह पाओगे जब आप उनके बीच आते जाते रहोगे। और देखो कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो, पर किरण दी हम लोगों को गांव की सैर करवा ही देती हैं।
3: बहनी सभी जाती हो का? अरे तनी यहाँ सब लिहा जाओ, ई लौकी होए, ई कद्दू होए, आओ ई बड़के झोलवा में ना साग होए, हमारे खेतवा खोए दादा। और सुनो, सरसों के साग है और बथुआ के साग है और मुरई है बहनी, सभी आपस में थोड़े थोड़े बांट ली हो।
1: अच्छा चाची ले लियो बहन।
0: राम निवास भैया कहाँ है? चलिए
2: किरण दी कहाँ है, चलिए। राम निवास भैया ये बोरी और ये झूला गाड़ी में रख लीजिए।
0: सब लोग गाड़ी में बैठिए, मैं देखती हूँ किरण दी कहाँ है। किरण दी कहाँ है आप? अरे चलिए वरना रात हो जाएगी। अरे ये क्या, फिर नाराजगी? अभी भी आप भैया से नाराज हैं?
3: चलो चलो चलते हैं, ये झगड़ा हमारा और इनका हमेशा रहेगा। और इनको जब किसी भी बात की सनक सवार हो जाती है तब ये किसी की नहीं सुनते।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर

0: ये तो सभी बोलेंगे जब देखेंगे आपका शानदार इवेंट। अब आपके इवेंट्स को यादगार बनाने के लिए फ्लरिश इवेंट्स मौजूद है गोंडा में अपने बेहतरीन अनुभव के साथ, जहां वेडिंग प्लानिंग एंड केटरिंग मैनेजमेंट, वेडिंग डेकोरेशन, ब्राइड एंड ग्रूम एंट्री, एंगेजमेंट्स एंड प्री वेडिंग फंक्शंस, वरमाला एंड एंट्री कॉन्सेप्ट्स, रिचुअल कोऑर्डिनेशन एंड मंडप सेटअप, थीम एंड डेस्टिनेशन वेडिंग, सरप्राइज इवेंट्स, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गेम्स एंड मेनी मोर। ओनर है रिया श्रीवास्तव। आज ही विजिट करें राजनंदी कॉम्प्लेक्स नियर जेपी पैलेस गोंडा। कॉन्टैक्ट करें 7905250060। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये जज्बातों का संगम है, और इन पलों को खास बनाने के लिए चाहिए ऐसी जगह जहां मिले शाही माहौल, बेहतरीन सुविधा और यादगार एक्सपीरियंस। और ये सब कुछ मिलता है वेडिंग विला बैंक्वेट हॉल एवं लॉन गोंडा में, जहां आपको मिलता है एसी हॉल, हरा भरा शानदार लॉन, बेहतरीन कैटरिंग और जायकेदार खाना, थीम डेकोरेशन और कंप्लीट इवेंट मैनेजमेंट की सुविधा, सब कुछ एक ही जगह पर। शादी हो, रिसेप्शन हो, सगाई हो या हो जन्मदिन, वेडिंग विला हर खुशी को बनाता है राजसी और यादगार। एड्रेस है सर्किट हाउस, मोकलपुर रोड, गोंडा। कॉल करें 983-874-3251 और 9450-033-450। हॉल एवं लॉन, जहां हर पल बनता है यादगार, शानदार और बेमिसाल।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840-339584, 8840-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें आकाश गोंडा 7800854343, 7800864343 पर।

हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 12:12 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपकी अर्जुनदी मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में लेकर के आज का बेहद ही स्पेशल स्वास्थ्य संगिनी, जिसमें बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य पर और आपके हेल्थ पर। भाई, आप सभी का हम स्वागत करते हैं स्वास्थ्य संगिनी में, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। एंड ऑफ कोर्स आपने ट्यून कर लिया है आपका अपना वाला एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन। इन खूबसूरत गानों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारा दिलो दिमाग में एक रोमांटिक सा मौसम छा जाता है कि भाई इतने खूबसूरत, इतने रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमारे अंदर के डोपामिन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं और हमें लगता है कि हमें भी मोहब्बत हो गई है। लेकिन वो मोहब्बत किस उम्र में हो रही है और आप किस उम्र में कर रही हैं, ये

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम का नाम है स्वास्थ्य संगिनी। मैं हूँ आपकी आरजे रति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो टॉपिक था स्वास्थ्य संगिनी में, वो बड़ा ही जबरदस्त था भैया। बड़ी कमाल की टॉपिक पे बात कर रहे थे हम, चाइल्ड मैरिज पे बात कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है, एक डिजास्टर की तरह है, जिंदगी खराब कर देने वाला डिजास्टर है ये। तो हमने इसको समझा कि आफ्टरऑल क्यों चाइल्ड मैरिज के लिए सब इतने खिलाफ हैं, आफ्टर ऑल क्या है ऐसा जिसके लिए सब बोलते हैं कि बाल विवाह नहीं करवाना चाहिए, और आफ्टर ऑल क्यों सरकार पीछे पड़ी हुई है आपके। तो अब आप समझ गए होंगे, और आप मुझे लगता है कि अब आप भी सरकार का ही साथ देने वाले हैं, हमारा साथ देने वाले हैं, और हम मिलके भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं चैट बॉक्स में, देखते हैं भाई चैट बॉक्स में क्या क्या मैसेजेस हैं और किस किस ने हमें क्या कुछ लिख के भेज दिया है। तो भाई अखिलेश पांडे जी का मैसेज आया है सबसे पहले, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। एंड मोहम्मद तुफाइल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत है आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी में। ओके गुड मैम, थैंक यू सो मच। साथ ही लिखा है वेरी नाइस वॉइस मैम, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद मैसेज आया है कि मुझे रेडियो बहुत पसंद है मैम, गुंडा एफएम रेडियो सुनकर अच्छा लगता है। ओके थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा फीडबैक है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं हाय कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत है स्वास्थ्य संगिनी में। शिवांगी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड साथ ही लिखा है नाइस, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ये प्यारी प्यारी सी स्माइल्स भेजने के लिए। राधे श्याम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, नाइस सॉन्ग, गुड मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बने रहिए, सुनते रहिए, आप गुनगुनाते रहिए और स्वस्थ रहिए आपके अपने FM रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सुनते रहिए आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी। फिलहाल के लिए लेते हैं इजाज़त, क्योंकि वक्त है विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
1: क्या है,
2: कह दूं तुम्हें क्या, चुप रहूं दिल।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: गोंडा शहर की धड़कन।
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है?

शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में है अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? और आज तो मौसम ने इतनी ज्यादा वाली जैसे कहते हैं ना कि उठा पटक कर दी कि क्या ही बता दे। मतलब सुबह 10 बजे से 10:20 पे बिल्कुल फिर से वो रात हो गई थी जो पहले कुछ दिनों पहले हुई थी रात। सड़कों पे छा गया था अंधेरा और यहाँ कॉलेज में भी हम सभी के रूम्स की लाइट जल गई थी। जैसे लग रहा था कि हम लोग रात्रि में फिर से आ गए हैं। तो इस मौसम को क्या ही कहा जाए। मतलब मई के महीने में अगर ये वाला मौसम है तो आगे ईश्वर ही हम सभी पर दया रखे। और किस तरीके से आज का मौसम हो गया। तो कैसे हैं आप सभी भाई? आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो आइए इस प्यारे से मौसम में, इस प्यारे से मॉनसून मौसम में हम एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे, शुभ दोपहरिया।
7: शुभ दोपहर आप सभी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? भाई मौसम जो है वो तो वाकई में बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्यारे से मौसम ने थोड़ी सी हम सभी की बैंड भी बजा रखी है। कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा पानी, इतनी ज़्यादा बरसात, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुश्किलें भी हो रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हम सही कहीं ना कहीं इंजॉय करते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी कई बार हो जाती हैं। इन्जॉयमेंट के साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो क्रिएट होती ही होती है, कहीं ना कहीं हमें देखनी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, मौसम है, अगर मौसम का लुत्फ आप उठाएंगे तो उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी तो आप ही को फेस करनी पड़ेंगी ना।
6: बिल्कुल, तो मौसम जो है ये तो ये वाला मौसम जो है ना, ये मैं क्या बता दूं कि इस मौसम में ना सभी को सर्दी, जुखाम, बुखार, बदन दर्द, पैरों में दर्द और पेट की समस्या तो ज़रूर से ज़रूर सभी को हो रही है। तो प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है कि हम कूलर एसी का भी यूज़ कर रहे हैं, शाम होते होते गर्मी होने लग रही है, लेकिन फिर रात में इतनी ज़्यादा ठंडक होने लग रही है कि फिर से हम उसमें मतलब उस वाले मोड में चले जा रहे हैं कि भाई कंबल निकाल लो, मोटी चद्दर निकाल लो। तो प्लीज़ ऐसे वाले मौसम से बचें, थोड़ा सा अपना ध्यान दें। और क्योंकि ये मौसम जो है ना, ये बहुत ही ख़राब वाला मौसम चल रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है तो कभी सर्दियाँ आ जा रही हैं। तो चलिए आज के मंडे सेक्शन में एक प्यारी सी एक काव्य कविता के रूप में आज हम लेकर के आए हैं उम्मीद पर। यानी कि उम्मीद, इस सुहाने सफर में उम्मीद किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप उम्मीद रखते हैं तो वो उम्मीद टूटती जरूर है। लेकिन हम क्या करें, महिलाओं की तो आदत ही होती है, लड़कियों की तो आदत ही होती है उम्मीदें रखना। तो आज उम्मीद पे आइए हम बता दें आपको, क्यों किसी से उम्मीद रखती हो, क्यों किसी से उम्मीद रखती हो कि बचाए तुम्हारा आत्मसम्मान हो, कि बचाए तुम्हारा आत्मसम्मान हो, क्यों किसी से उम्मीद रखती हो कि बचाए तुम्हारा आत्मसम्मान वो, क्यों किसी से कहती हो कि तुम कि कुछ करे वो तुम्हारे लिए, क्यों किसी से कहती हो कि कुछ करे वो तुम्हारे लिए, क्यों किसी से कहती हो कि लड़े वो तुम्हारे लिए, क्यों खुद शक्ति होकर ढूंढती हो सहारा किसी में, क्यों तुम खुद शक्ति होकर ढूंढती हो सहारा किसी में, क्यों खुद नहीं बन पाती हो सहारा अपना, कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो क्यों शांत रहती हो, क्यों नहीं उठा पाती आवाज खुद के लिए, कब तक ढूंढती खोजती रहोगी सहारा दूसरों में, क्यों नहीं बन जाती सहारा खुद ही खुद का, कब तक सहती रहोगी भाग्य में लिखा है कहकर, कब तक सहती रहोगी भाग्य में लिखा है कहकर, खुद के लिए आवाज उठाकर क्यों नहीं बदल लेती खुद का भाग्य, कब तक तुम्हें कोई शब्दों में समझाएगा कि चुन लो आत्मसम्मान की जिंदगी, कब तक कोई तुम्हें क्यों शब्दों में समझाएगा कि चुन लो आत्मसम्मान की जिंदगी, कब तक तुम्हें कोई क्यों बताएगा कि ढूंढ लो सहारा खुद में, ढूंढ लो सहारा खुद में। बिल्कुल, सहारा ढूंढना ही है तो अपना सहारा खुद बनिए। आत्मविश्वास अगर आपका खो गया है तो आप अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए खुद को मजबूत करिए।
7: बिल्कुल, खुद ही में तुम शक्ति हो तो क्यों बेबस हो जाती हो, खुद के लिए लड़ना क्यों नहीं सीख पाती हो, अब तो जग में वो स्त्री अपने सम्मान के लिए, अब जागो जग में स्त्री अपने सम्मान के लिए, वरना मार दी जाओगी बार बार अपमान से, मार दी जाओगी बार बार अपमान से। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखो, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीखो, अपनी जिंदगी को अपने लिए, अपनी जिंदगी को अपने लिए जीना सीखो। न किसी से उम्मीद रखो, खुद के आत्मसम्मान पर खुद ही रक्षा करो, खुद के आत्मसम्मान पर खुद ही रक्षा करो। क्यों किसी से उम्मीद रखती हो कि बचाएगा वो तुम्हारा सम्मान, क्यों किसी से उम्मीद रखती हो कि बचाएगा वो तुम्हारा सम्मान। बिल्कुल, हम क्यों किसी से अपने सम्मान के लिए उम्मीद रखें, अपना सम्मान हो या आत्मसम्मान हो, हमेशा उसे बचाने के लिए कोशिशें हमें खुद करनी चाहिए। जब तक हम हमारे सम्मान और आत्मसम्मान को बचाने की कोशिशें करते रहेंगे, तब तक हमारा सम्मान और आत्मसम्मान हमारे ही हाथों में रहेगा और बना रहेगा। हमेशा अपने सम्मान को पहले रखिए, अपने आत्मसम्मान को पहले रखिए और उसकी रक्षा की कोशिशें भी करते रहिए।
6: बिल्कुल, तो इस प्यारी सी कविता के साथ आइए लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के उस पार हम आएंगे लेकर के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। और आज का जो खाना खजाना, आप सभी को पता है कि मंडे होता है भाई लजीज, और लजीज मंडे में लेकर के आते हैं हम बहुत सारी रेसिपीज को, मास्टर शेफ को, और हम सभी की, हम लोगों की भी खुद की एक एक रेसिपी। तो रेसिपीज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है, क्योंकि रेसिपीज का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को और लेकर के आएंगे ब्रेक के उस पार रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है 89.6 FM के शो चल रहा है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। दोस्तों आ गई आपकी आज समता और साथ में है अंशिका। तो चलिए भाई अब सुन लेते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में आज क्या है कुछ खास।
4: रियल फैक्ट ऑफ लाइफ में आज हमारे पास जो फैक्ट है वो ये निकल करके आया है कि आज हमारा फैक्ट कुछ गानों से रिलेटेड है, कुछ आपकी पुरानी यादों से रिलेटेड है। आज का फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि 70% लोग पुराने गाने सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन गानों के साथ उनकी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई होती हैं। हम सभी के साथ होता है ना मैम कि ज़्यादातर हमें पुराने गाने ही पसंद आते हैं, स्पेशली वो सॉन्ग्स पसंद आते हैं कि जिनसे आपकी लाइफ का कोई एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ होता है। कई बार हम छोटे बच्चों को लेकर के कभी कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उससे हमारी कुछ बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है वो यही है कि पुराने गाने लोगों को सिर्फ इसीलिए पसंद होते हैं क्योंकि उनसे उनकी यादें जुड़ी होती हैं और हमारी यादों से हमारा अच्छा कहते हैं ना कि हमेशा यादें जो है वो दिल से जुड़ी होती हैं, लेकिन आज हम आपको जो रियल फैक्ट बता रहे हैं वो ये है कि यादें आपके दिमाग से भी जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब हम अपनी किसी अच्छी याद के बारे में या किसी के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों के बारे में सोचते हैं तो इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनका श्राव बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कई बार होता है कि पुराने गाने सुनने पर हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं वो एक किसी अच्छी चीज को या फिर
0: मेमोरी को जैसे जैसे अच्छी वाली मेमोरीज को याद करना तो वो एक ना हम सभी के लिए जैसे कहते हैं ना कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस के लिए हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे ही जब हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स जो होते हैं वो अगर हम किसी प्यारी सी याद को करते हैं ना तो ऑलरेडी वो हैप्पी हॉर्मोन्स जो है ना वो इनक्रीज हो जाते हैं जिसके कारण से हम सुंदर लगने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा, आजमाया होगा कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए तैयार होते हैं और किसी खास पर्सन के साथ जाते हैं तो क्या होता है कि हम सोच लेते हैं पहले से कि आज तो मैं बड़ी सुंदर लगने वाली हूँ। तो ये पता है ये होने लगता है, फिर ये हो जाता है वैसा, क्योंकि एक तो आप अपने मनपसंद पसंदीदा इंसान के साथ हैं और दूसरी चीज़ कि अगर आपने ये अपने दिमाग में ये डाल दिया ना कि आज मैं सबसे सुंदर लगने वाली हूँ तो ये वाला जो एक हैप्पी हार्मोन्स हो गया ना वो ब्लड में मिल करके ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में रन कर जाता है जिसके कारण से हम ऑलरेडी अपने आप को ब्यूटीफुल मानने लगते हैं और दिखने भी लगते हैं। ये होता है हैप्पी हार्मोन्स का इंक्रीज होना।
4: बिल्कुल, तो आज का हमारा रियल लाइफ ऑफ फैक्ट्स आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो, आप सभी को अच्छा लगा और आप सभी ने इससे कहीं ना कहीं सीखा हो। देखिए यादें बहुत कई बार अब जब यादों पे बात छिड़ी गई है तो ये भी कहना चाहूँगी कि यादें हमेशा कई बार तो बहुत अच्छी होती हैं पर कई बार कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। जैसे हमारी लाइफ में कई बार कुछ नमकीन यादें भी होती हैं। हम कहते हैं ना कि अगर बहुत सारी मीठी यादें हैं तो उनमें कुछ नमकीन यादें भी हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में हमें ऐसी चीज़ें भी याद आ जाती हैं। अगर ऐसा होता है आपके साथ भी तो कोशिश करिए थोड़ा सा उन यादों से हटने की, थोड़ा सा उन बातों के बारे में कम सोचिए। अगर कभी आपको याद आ जाता है, जैसे अचानक कभी हमें याद आ जाता है, अगर ऐसा आपके साथ भी होता है अचानक आपको आपकी कोई बुरी चीज़ या कुछ भी ऐसा याद आ गया जो आप याद नहीं करना चाहते थे बट आपको रिमेम्बर कहीं ना कहीं हो गया, तो कोशिश करें कि तुरंत वहाँ से माइंड हटा कर कि किसी भी बात में किसी भी चीज़ में आप लगाइए लेकिन वहाँ से आपको आपका माइंड हटाना है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
0: और इसीलिए अभी मैं चैट बॉक्स पर जब मैं गई तो मुझे एक मैसेज मिला कि आज इतना प्यारा सा मौसम है जिसको जिसके कारण जो सॉन्ग जो है ना वो सुहाना सफ़र। तो मेरे मन में भी यही था कि मैं अभी अपने लिसनर्स को ये गाना ज़रूर से सुनाऊं। तो चलिए ये गाना सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं आज की रेसिपीज़ की ओर। और एक मैं आज आपको बताऊंगी कि वेस्ट बंगाल में कौन सी ऐसी एक मीठी चीज़ है जो कि वहाँ की फेमस है। तो ये प्रश्न भी है और जब तक मैं आऊँगी तब तक आप उसका आंसर भी करें कि वेस्ट बंगाल में एक ऐसी मीठी चीज़ है जो कि बहुत वहाँ की फेमस है। तो आप बताएं कि कौन सी है वो चीज़। तब तक सुनिए ये प्यारा सा गाना, हम बस यूं गए यूं आए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली, और आज है हमारा लजीज लजीज मंडे। मतलब मंडे को मैं क्या कहूँ, मंडे ऐसे लगता है ना कि मंडे वीक में दो बार हो। मतलब आपको तो पता ही है कि मेरा तो ये फेवरेट डे है, मुझे तो बहुत पसंद है मंडे, आई लव मंडे।
5: चलिए तो अभी जो मैंने प्रश्न बोला था उसका सही आंसर दिया है सविता जी ने, एग्जैक्टली मिस्टी दही। तो मिस्टी दही जो है ये बंगाल की, वेस्ट बंगाल की बहुत ही पॉपुलर एक मिष्ठान में से एक है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट उनमें से एक मिस्टी दही है। तो सविता जी इज द राइट आंसर, और बहुत ही प्यारा सा, और पता है इस मौसम में ना दही खाने का अपना ही एक सुरूर होता है, क्योंकि बाहर ठंडी होती है और जब ठंडी ठंडी दही खाओ ना तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया सा लगता है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है मिस्टी दही, और यहाँ पे भी अब मिलने लगी है, मतलब हर जगह मिलती है। तो आइए अब जानेंगे अंशिका से कुछ आज की रेसिपी के बारे में, और उसके बाद हम आएंगी हमारे स्टूडियो में यानी कि मास्टर शेफ। तो सबसे पहले अंशिका से जानते हैं आज की रेसिपी।
4: तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए मैंगो फ्रूट कस्टर्ड। क्योंकि भाई देखिए आम जो है ना वो बहुत ही अच्छे वाले पके आम आने लगे हैं मार्केट में, और फ्रूट कस्टर्ड ना बने इन गर्मियों में, तो गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी अधूरी लगती हैं। हालांकि गर्मियों वाला एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जितना प्यारा मौसम है ऐसे लग रहा है कि मई में बैठे बैठे ना हम अगस्त में पहुंच गए हैं, जो बारिश वाला मौसम होता है। लेकिन फिर भी आप इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और मैंने इसे भी बनाया था इसलिए आज मैं आप सबसे यही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो आपको दूध चाहिए, दूध आप ले लीजिए 2 से 3 कप, और फुल क्रीम लीजिएगा अच्छा। और उसके बाद में आपको ले लेना है कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड पाउडर आपको 2 बड़े चम्मच ले लेने हैं। उसके बाद में हमें चीनी ले लेनी है, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच चीनी आराम से वो हो जाएगा, क्योंकि आम आप डालेंगे ना पके आम, तो पके आम में अपनी भी एक मिठास होती है, तो 3 से 4 चम्मच चीनी इनफ रहेगा। अब आते हैं कि आपको आम ले लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2 आम आपको ले लेने हैं। अब आते हैं हम कि आपको करना क्या है, कैसे बनाना है। एक बात मैं और बता दूं कि वैसे तो मैंने ये मैंगो फ्रूट कस्टर्ड बनाया था, लेकिन अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें तो आप इसमें बनाना या फिर एप्पल ऐड कर सकते हैं, अंगूर, अनार, ये सारी चीजें
5: अपने हिसाब से आप जितने भी वेजिटेबल्स डालना चाह रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो आप, सॉरी फ्रूट्स डालना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग तो पता है इसमें ना खीरा भी डालते हैं
4: जी मां,
5: तो आपके ऊपर है, और बहुत पतली पतली सी काट करके गाजर भी डाल देते हैं तो फ्रूट कस्टर्ड में, क्योंकि जब वो क्रंची वाला एक मुंह में आता है ना तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपके ऊपर है, कस्टर्ड में आप कुछ भी मिला सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स तो आप भर भर के डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का जो कि असली मजा जो कस्टर्ड का है वो विदाउट, मैं तो ये कहूंगी कि विदाउट ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं है,
4: बिल्कुल नहीं। और साथ ही साथ में इन सारी चीजों के साथ में, ड्राई फ्रूट्स के साथ में, आपको चाहिए ठंडा दूध। ठंडा दूध आपको ले लेना है 1/2 कप से भी कम, और इसका करना क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आपको क्या करना है कि एक कढ़ाई ले लीजिए या फिर पैन ले लीजिए, और पैन में दूध गर्म कर लीजिए, उसमें चीनी मिला करके उसे अच्छी तरीके से आपको घुलने देना है, पकने देना है, जब तक कि चीनी और दूध मिलकर के पूरा एक सार ना हो जाए। अब आपको क्या करना है कि 1/2 कप से भी कम जो मैंने आपको ठंडा दूध रखवाया था ना, उसमें आपको कस्टर्ड पाउडर डाल करके अच्छी तरीके से उसे मिला लेना है, मतलब अच्छी तरीके से पूरा फेंट लीजिएगा ताकि उसमें कहीं भी गांठें ना रह जाएं। अब आपको क्या करना है कि उबलते हुए दूध में जब दूध पूरा उबलने लगे फिर उसमें आपको वो कस्टर्ड पाउडर डाल देना है जो आपने घोल के रखा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे डालिएगा और धीरे धीरे डालते डालते उसे चलाते रहिएगा ताकि कस्टर्ड नीचे ना लग जाए। अगर आप ऐसे डाल देंगे एक साथ पूरा और उसको चलाएंगे नहीं तो कस्टर्ड नीचे लग सकता है। धीरे धीरे चलाइए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसे धीमी आँच पर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको आपको रख देना, एकदम धीमी सिम कर देनी है। इससे क्या होगा कि वो गाढ़ा हो जाएगा और लगातार चलाते रहने से अच्छे से पक भी जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको गैस बंद कर देनी है और कस्टर्ड को पूरी तरीके से मतलब बहुत अच्छे से ठंडा होने देना। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा फिर आपको 1 से 2 घंटे से फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि जब कस्टर्ड पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद आपने जो आम रखे थे वो आपको अच्छी तरीके से आम को जो है पीस पीस में उसको सबसे पहले आप उसको धुल लीजिएगा। धुल करके अच्छे से साफ कर लीजिएगा और उसके छिलके निकाल दीजिएगा। छिलके निकाल करके फिर आपको आम को अच्छे अच्छे से टुकड़ों में काट लेना है और इसके साथ आपको सारे ड्राई फ्रूट्स और जो भी मतलब आपके पास अगर आप कोई और फल भी डालना चाहते हैं तो वो भी आपको उसमें सब डाल देना है। डाल करके उसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ठंडे ठंडे मैंगो कस्टर्ड को बढ़िया से एक प्यारे से बाउल में आप सर्व कीजिए। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालिए, अनार के थोड़े से दाने डाल दीजिए, अच्छे से सर्व करिए और खाइए। और इस ठंडी ठंडी ठंड में हाँ क्या करें, अब तो ठंडी कहनी पड़ेगी क्योंकि क्या है ना कि इस बार हमारी जो मई है ना वो हमें गर्मियाँ कहने का मौका ही नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं ठंडे ठंडे मौसम में ठंडे ठंडे कस्टर्ड को खाइए और इन्जॉय करिए। और मतलब मौसम तो बहुत ही प्यारा है, मैंने भी बनाया था और मुझे भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा, तो आप ज़रूर बनाइए और ट्राई करिए।
5: बिल्कुल, तो चलिए भाई इस कस्टर्ड को तो आप जब तक बनाएं सारे

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: दोस्तों, आइए अब चलते हैं सीधे सीधे हम पहले चैट बॉक्स में और देखेंगे कि धर्मेंद्र जी मोहन आवासिका से सुन सहेली सुनने वाले सभी को नमस्ते, समता जी को, अंशिका जी को नमस्ते, सविता जी नमस्ते, नागेश्वर जी नमस्ते, और कौन आया है, प्रबल जी नमस्ते। तो सभी लिसनर्स का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। तो आइए, देर किस बात की है, जल्दी से चलते हैं और सुनते हैं आज की रेसिपी, जो कि है हमारी रंजना मैम की। ठीक है, तो आइए फटाफट सुनते हैं उनकी रेसिपी को।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वाला शो जो कि है सुन सहेली। सुन सहेली में आज दिन है हमारा लजीज मंडे, मतलब हम कुछ आज को आपको खिलाने वाले हमारे किचन से, और हमारे किचन से बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज आपको बताने और खिलाने के लिए आ गई है हमारी मास्टर शेफ। तो सबसे पहले तो हम वेलकम कर लेते हैं मैम का, और चलिए सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
6: भाई, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो है बहुत सरल चीज मैं लेके आई हूँ, क्योंकि कच्चे आम आ गए हैं और देखा है लू कितनी तेज चल रही है। तो हम चाहते हैं कि किसी को भी बीमारी ना लगे, लू ना लगे, क्योंकि धूप में निकलना ही रहता है चाहे कितना भी। बच्चे 12 बजे स्कूल से निकल आ रहे हैं तो भी धूप का समय है, हम ही लोग घर से निकल रहे हैं तो भी धूप का समय है, तो लू नहीं लगनी चाहिए। तो भगवान ने, कुदरत ने जाए कच्चा आम आपको दे रखा है
5: जी।
6: तो उसके लिए हम छोटी सी दो ट्रिप्स आपको बताए देती हैं, अगर आप अपने घर में अपनाएंगी तो आपको यह समय बहुत बचेगा। सबसे पहले क्या करना है कि आप एक प्याला चीनी ले लीजिए
5: जी,
6: उसमें आधा प्याला पानी डाल लीजिए
5: जी मैम।
6: उसको भगोने में या कढ़ाई में, आप जो भी आपकी सुविधा, वैसे भगोने में डाल करके आप धीमी आंच पे उसको घुलने, चीनी घुलने तक सिरप बना लीजिए
5: जी।
6: जब ये सिरप बन जाए, इसको आप ठंडा करिए, किसी भी कांच की या प्लास्टिक की बोतल में भर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। इससे ये होगा कि अगर आपके घर कोई मेहमान आया है तो चीनी में जरा सा यही सिरप डाला, पानी में चीनी का सिरप आपका तैयार है, पानी में यही सिरप डाला, नींबू निचोड़ा और आपने उसके सामने शिकंजी दे दी।
5: हाँ।
6: तो ये आपका समय बच गया चीनी घोलने का
5: जी मैम।
6: एक दूसरा उपाय बता रही हूँ कि आप दो प्याला चीनी लीजिए, उसको अच्छे से पीस लीजिए
5: जी मैम।
6: मिक्सी चलाइए, मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगता पीसने में। उसको आप साफ प्लास्टिक की बोतल में भर के फ्रिज में रख दीजिए। जैसे ही कोई आता है, सिरप ने आपने पानी में दो चम्मच चीनी डाली पिसी हुई, जो भी आपके पास नींबू संतरा है उसका रस डाला, देखिए आपका शरबत तैयार
5: जी मैम।
6: तो ये दो काम सभी लेडीज को कर लेना चाहिए, इससे हमारा एक तो समय बचता है, दूसरा कोई आता है तो अब हम लेके बैठे खटखट खटखट घोल रहे हैं,
5: वैसे आप
6: तो
5: इंस्टेंट तुरंत हाँ दे सकते हैं,
6: और ऐसे आपको बैठे बैठे सब आपका काम हो जाएगा, तो आप ये बनाए। चलिए, तो अब हम आपको, आप सिखा रहे हैं आम की जेली
5: जी मैम।
6: तो जेली बनाए आजकल बड़ा अच्छा है कि सब बच्चे खाते हैं, बैठ करके दे दीजिए, पढ़ते रहेंगे, मुंह में डाल डाल खाते रहेंगे।
5: हाँ।
6: और घर का बना है तो नुकसान भी नहीं करेगा। चलिए सामान ले लिख लीजिए। इसके लिए आप दो कच्चे आम लेंगे, उसको आप छील लेंगे
5: जी मैम,
6: गुठली निकाल लेंगे और टुकड़े कर लेंगे, ठीक है
5: जी।
6: आप उसको क्या करेंगी, आप मिक्सी में डाल देंगी जो टुकड़े आपने काटे हैं, और एक पुदीने का गुच्छा, मतलब ज्यादा पुदीना आप उसमें थोड़ा डाल देंगे
5: जी।
6: और उसी पैन में जो है इसको चला देंगे मिक्सी में, ये मीट पीस लेंगे। जब आप इसको पीस लेंगी तो इसको अलग रख लेंगी। अब क्या करेंगी, पैन लेंगी, उसमें आधा प्याला चीनी डालेंगी और जो हमने पल्प पीसा है मिक्सी वाला वो इसी में डाल देंगी और धीमे धीमे चलाती रहेंगी। चलाने से क्या होगा, ये थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगा
5: जी मैम।
6: अब इसमें क्या करेंगी कि एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच सादा नमक, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, अब और जीरा पाउडर, फिर जो है थोड़ा सा सौंफ, आधा चाय का चम्मच डाल देंगी। और उसके बाद क्या करेंगी कि इसको डाल करके उसमें खूब अच्छे से चला देंगी। अब क्या करेंगे, 4 से 5 टेबल स्पून आप उसमें कॉर्नफ्लोर लेंगी, कॉर्नफ्लोर ले करके उसको हल्के से पानी में घोल लेंगी
5: जी मैम।
6: और उसको घोलने के बाद क्या करेंगी, जो आपने मिक्सर तैयार करा है उसमें डाल देंगी
5: जी,
6: जैसे, और बराबर चलाती रहिएगा, नहीं गुठली पड़ जाएगी
5: जी मैम।
6: जब खूब बराबर चलाते चलाते गाढ़ा सफेद सा हलवा ऐसा हो जाएगा, तब देखने में खराब लगेगा, तब आप 2 बूंद जो है हरा कलर डाल देंगी
5: जी।
6: उससे तो क्योंकि आम का बना रही है, कच्चे आम का, तो हरा ही कलर डालेंगी
5: जी।
6: अब जो है इसमें, इसको भी आप क्या कर सकती हैं कि अब जब थोड़ा ठंडा हो जाए, आप देखेंगी कि ये जम रहा है अब, और टोटल पूरी तरह कड़ा कड़ा नहीं जमेगा क्योंकि जेली है ना,
5: हरा
6: रोट पड़ा है, तो जैसे कराची हलवा होता लिड्डी जैसा, वैसे ही तो होती है
5: जी मैम।
6: तो आप इसको भी खूब छोटे छोटे, जो चंद्रामृत वाले गिलास आते हैं जिसमें छोटे
5: छोटे
6: कागज, एकदम छोटे से कप जो आते हैं, उसमें आप इसको कप को पहले पोंछ लीजिएगा कपड़े से, फिर यही सामग्री उसमें भर दीजिएगा
5: जी मैम।
6: भर करके उसको फ्रिज में आप 3-4 घंटे रख दीजिएगा। रखने के बाद 3-4 घंटे के बाद आप गिलास जो भी जरूरत हो आप फाड़िए, अपने बच्चों को दे दीजिए खाने के लिए। देखिएगा कि बच्चे कितना ये पसंद करेंगे जेली। और उसके बाद अगर आपको और सुंदर करना है, आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो गरी का बुरादा जो एकदम महीन वाला होता
5: है
6: उसमें इस जेली को लपेट दीजिए और गरम गरम ये जो है अपने प्लेट में निकाल के अलग से सर्व कीजिए। देखिएगा कितना सुंदर लगेगा और जो लोग हैं वो भी बहुत तारीफ करेंगे। आम का मौसम है, बनाइए, इस समय ठेले पे बहुत आम बिक रहे हैं, खरीदिए, बनाइए, सबको खुद खाइए और सबको खिलाइए।
5: तो चलिए लिसनर्स, भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये मैंगो जेली, मतलब आम की जेली, मतलब आम का तो नाम सुन के ना ऐसा लगता है कि मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए चलते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, इस मैंगो जेली के प्यारे प्यारे स्वाद के साथ। बस यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: आपने जेली तो बनाई ली होगी, आज जो है हम आम पना भी आपको सिखा देते हैं।
5: जी,
4: आम पना आप बना कर अपने घर में रखिए, क्योंकि इस समय लू का मौसम है, धूप बहुत तेज है, सर में दर्द होने लगता है, इन सब का सबसे अच्छा है आम पना। तो आम पना पहले तो हम लोग गांव में रहे या जिसमें रहे, चूल्हे पे सबके घर जलते थे तो आग में भून लिए जाते
5: जी।
4: थे। अब वो समय तो है नहीं, तो चलिए सामान लिख लीजिए कि आप आधा किलो आम ले लेंगी कच्चा।
5: आधा किलो आम?
4: हाँ
5: जी मैम।
4: और उसमें जो ऊपर ढेपी होती जहाँ से लटका रहता है उससे जुड़ा, उसको काट देंगी
5: जी।
4: काटने के बाद आप इसको खूब अच्छे से धो लेंगी।
5: ओके।
4: हाँ, और धो करके जो है कुकर में इनको डाल देंगी, साबुत डाल देंगी, छोटे ही छोटे आम है, कोई बहुत बड़े हाँ। आम तो आ नहीं रहे हैं। इनको कुकर में डाल देंगी और साथ में उसके दो प्याले पानी भी डाल देंगी।
5: दो प्याला पानी
4: भी डाल देंगी और गैस पे चढ़ा देंगी
5: जी।
4: जैसे ही स्टीम आए आप 2 मिनट के लिए धीमी आंच करिए और गैस बंद कर दीजिए
5: जी मैम।
4: फिर कुकर को आप अपने आप खुलने दीजिए, और जब कुकर खुल जाए तब आप जो उबली हुई सामग्री उसको थाली में निकाल लीजिए। थाली या परात में निकालने से ये होगा कि वो ठंडा जल्दी हो जाएगा
5: जी,
4: है ना। जब वो ठंडा हो जाए तब आप खूब हाथ से दबा दबा करके पल्प निकाल लेंगे, जितना भी गूदा है आम का वो निकाल लेंगे। छिलके में भी रहता है गुठली, तो आप अभी तो कच्ची कच्ची गुठलियां हैं तो आप उसको ऐसे ही फेंक देंगी
5: जी,
4: पर छिलके से जो है पल्प आप निकाल लेंगी। अब उसमें जो है जो चीनी है वो आप आधा प्याला लगभग मिला देंगे
5: जी,
4: और भुना जीरा है, पुदीना है पीस करके, और सौंफ है थोड़ी सी है, काला नमक है, स्वाद के अनुसार आप चाट मसाला भी डाल सकती हैं।
5: मैम क्या हींग भी डाल सकते हैं?
4: नहीं, हींग का वो नहीं है।
5: अच्छा,
4: क्योंकि
5: अच्छा।
4: ये गर्मी ठंडक पहुंचाता है।
5: ओके।
4: तो इन सब चीजों को मिला लेंगी, मिला अंदाज से पानी भी बढ़ा सकती हैं, पतला या गाढ़ा। अगर आपके पास सिरप रखा है या पिसी चीनी रखी है तो चम्मच से आप चख सकती हैं, जवान से बढ़ के कोई स्वाद और तराजू होता नहीं है।
5: बिल्कुल मैम।
4: आप अगर बच्चे मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिए, अगर आपके घर बच्चे नहीं है, आप बड़ों ही को पीना है, तब तो नमक ही, काला नमक जरूर डालिएगा, और भुना जीरा, इन दो का जो है वो बहुत जरूरी रहता है। हाँ, थोड़ा सा अदरक भी डाल सकती हैं अगर चाहिए तो, वैसे बच्चे पीते हैं तो उसमें मत डालिएगा अदरक
5: जी मैम।
4: और अब उसे जो है एक जग में भर करके छान दीजिए कि कोई रेशा ऐसा ना हो
5: हाँ।
4: और उसको छान करके जग में भर के या बॉटल में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए, जैसे आए आप तुरंत निकालिए और सर्व कर दीजिए। इसमें कोई झंझट भी नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, आप जब चाहिए हर दूसरे तीसरे दिन जो है आम उबालिए, गूदा निकालिए और मसाला तो आप भून करके रख सकती हैं शीशियों में। भाई जीरा है, सौंफ है, ये तो सभी के घर काला नमक
5: है,
4: ये सबके घर रहता, बस उठा के चम्मच से मिलाना है, एक अंदाज देखना है
5: जी।
4: तो चलिए आज आपके जो है वो सबसे अच्छी रेसिपी हो गई है, गर्मी लायक है, तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए और खिलाइए।
5: थैंक यू सो मच मैम। और आज तो हमारा जो मंडे था वो हो गया मैंगो स्पेशल, तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: बिल्कुल, तो चलिए भाई, प्रोग्राम जो है वो लास्ट पड़ाव पर आ गया है और अभी आप लोगों ने रेसिपीज को भी सुना, तो जाते जाते हम सोच रहे हैं कि आज आपको कुछ किचन टिप्स देते जाएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ना एक साथ जब काम करने के लिए किचन में खड़ी होती हैं तो कई कदार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो फिर हमें बाद में पता चलता है कि अरे यार, ये ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, या फिर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो इसीलिए आज कुछ ऐसे टॉपिक्स पर हम बात करने आए हैं, कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स देने के लिए आए हैं, जिसको हम अगर पहले ही, समय रहते ही अगर हम उसको देख लेंगे तो हमारा काफ़ी समय भी बचता है और हमारा खाना भी लजीज बनता है।
4: बिल्कुल, आज हमारे किचन टिप्स में जो है वो ये है कि देखिए, चावल जो होते हैं जब हम बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है ना कि कई बार गीले हो जाते
5: हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, या फिर जो भी हो, पानी ज्यादा हो जाने के कारण ही वो गीले हो जाते हैं
4: और चिपचिपे भी हो जाते हैं। फिर बहुत लोगों को ये रहता है कि नहीं, मुझे वैसे मतलब खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं, वैसे बनाओ। तो आज उसके लिए हम कुछ टिप्स देना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको टिप बताना चाहूंगी वो ये है कि चावल को अच्छी तरीके से कम 3 से 4 बार आप धो लीजिए, और जब तक कि उसका जो सफ़ेद सफ़ेद वो एक स्टॉर्च होता है ना, वो पूरा ना निकल जाए, तब तक आप उसको धुलिए 3 से 4 बार। अगर साफ़ रहेगा तो उसकी वजह से ना वो चिपचिपा होगा और ना ही ज़्यादा, जैसे चिपक जाते हैं ना कई बार आपस में, बहुत ज़्यादा चिपचिपे जाते हैं, वैसा नहीं होगा।
5: और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग जिनके घर में कुकर में चावल बनते हैं, वो फिर अगर ज़्यादा सीटी आ जाती है या फिर ज़्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है, या तो पर आप तुरंत सीटी लगवाओ और तुरंत खाओ तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं 1 घंटा आधा घंटा अगर आपने उन चावलों को बाद में खाने के लिए छोड़ दिया तो वो ना आपस में बिल्कुल जैसे नहीं क्या बताएं, जैसे वो चिपक जाते हैं और उसके बाद में वो लेई का रूप ले लेते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और अगर कहीं गेस्ट आ जाए और गेस्ट के सामने अगर ऐसे चावल बन जाए तो फिर क्या ही। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा टिप कि अगर आपको गेस्ट, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, अगर आपको चावल बनाना है कि आपके चावल खिले खिले रहें और बिल्कुल भी वो, जैसे कहते हैं ना कि आप होटल्स में जाते हैं और खाते हैं बिल्कुल वो वाले चावल, तो क्या करना है आपको कि पहले तो आपको खुले बर्तन में चावल बनाना है, आपको उसके लिए खुला बर्तन ले लेना है, खुला कोई कंटेनर ले लेना है। तो जितना ग्लास चावल है कहा जाता है कि उसका जस्ट डबल पानी होना चाहिए। अगर एक गिलास है आपका, अगर एक कटोरी चावल है तो उसमें 2.5 कटोरी या 2 कटोरी पानी होना चाहिए। उसके बाद में जैसे पानी पूरा गर्म हो जाए, पहले चावल, कुछ लोग क्या करते हैं कि चावल को पहले ही डाल देते हैं कुकर में और सब कर्जा उतर गया, बंद कर दिया, गैस को ऑन कर दिया और सीटी लग रही है और इसीलिए वो चावल खराब हो जाते हैं। अच्छा, हमारे घर में जो रियलिटी है, जो रियल में बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, तो पहले पानी गर्म हो जाता है, चावलों को अच्छी तरह धुल दिया जाता है, उसके बाद में उस गर्म पानी में हम लोग क्या करते हैं कि हल्का सा, भाई हम लोग तो नमक खाते हैं चावल में, जो लोग नमक नहीं खाते हैं वो लोग नमक ना डालें, 1 से 1.5 चम्मच जो कि रिफाइंड ऑयल आता है और रिफाइंड घी आता है, देसी घी नहीं। अगर आपको कोई भी घी, अगर तेल ऑयल मिल रहा है, आपने वो डाल देना है और 2-3 बूंदे आपको इसमें डाल देनी है नींबू की। इससे क्या होगा कि चावल का जो कलर होगा वो खिला खिला रहेगा, साथ में चावल आपस में चिपकेंगे नहीं, और जब आप खुल के बनाएंगे, मतलब खुले बर्तन में बनाएंगे, तो वो चावल कभी आपस में चिपकते नहीं है, और जब आप गेस्ट को सर्व करेंगे तो एक अच्छी वाली खुशबू भी आती है, लेमन वाली। भाई मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनते हैं, हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं, और वो कभी भी जब कोई रेयर हो गया तो कुकर में बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लगता है कि यार कुकर में चावल क्यों बने, और कुकर वाले चावल तो लगता है कि तुरंत जैसे विसल ख़त्म हो उतारो और खाओ।
4: बिल्कुल मैम, ये तो बहुत ही अच्छी टिप बताई आपने, तो लिसनर्स आप भी इसे यूज़ करिएगा और इससे आपके चावल जो है ना वो खिले खिले बनेंगे।
5: बिल्कुल, और एक टिप मेरे पास और भी है, जब आपके घर में, आपके स्पेशली किचन में बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी लोगों की आदत होती है कि डस्टबिन वहीं रखना किचन में, तो उसमें क्या करना होता है कि आपकी किचन में बहुत सारी स्मेल आने लगती है, तो सबसे पहली बात तो ये तो मतलब अलग सी बात है कि अगर उसमें सिर्फ सब्जियों के छिलके हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर और भी कूड़ा है तो उसे अपने किचन से बाहर रखिए। दूसरी चीज़ कि अगर आपको आपके किचन का एक रूम फ्रेशनर बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको ले लेना है कुछ आधा मतलब नींबू कट करके उसकी रस मिला लेनी है, और एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है। आप जहाँ पर खाना बनाते हैं, जहाँ पर आपने रोटियाँ बेलते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि वो चकले बेलन पे नहीं सीधे फ्लैट पे ही रोटियाँ बेलते हैं, तो क्या करना है, जैसे भी एक बार आप सफाई कर लें और उस स्प्रे बॉटल में 1 नींबू पूरा कट करके उसका रस और 1 कटोरी मतलब पानी डाल दें, 1 कप पानी डाल दें, और उसमें हल्का सा नमक, ये उसको शेक कर लें, और जहाँ जहाँ आपके किचन में कोने हैं, फ्लैश है, जहाँ पे भी हो ना, आपने स्पेस को स्प्रे कर देना है, जिससे चींटियाँ भी नहीं आएंगी, एक प्यारी सी स्मेल भी आएगी, और हाइजीन का तो क्या ही कहने।
4: तो ये हो गई बहुत ही प्यारी सी टिप्स, और आई होप कि आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। और देखिए समय जो है ना वो इतनी जल्दी निकल जाता है मैम कि पता ही नहीं चला कि हमारे जाने का भी टाइम हो गया।
5: बिल्कुल, तो चलिए हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर और इतने अच्छे मौसम को एंजॉय करिए। भाई इतना अच्छा मौसम है तो इस मौसम में बाय-बाय करने का खैर मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, आज अगर जाएंगे नहीं तो कल आएंगे कैसे, तो इतने प्यारे मौसम को एंजॉय करें, आप भी कहीं घूमने जाएं, मस्ती करें। हम मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय
4: दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
8: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
9: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
10: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
9: और जेंट्स के लिए?
10: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
9: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
10: संपर्क करें 9125707593 और 9696746006। कपड़ा

धूप ने की थी गुजारिश, धूप ने की थी गुजारिश, एक बूंद बारिश की जैसे सूखी सी जिंदगी को आस हो किसी ख्वाहिश की। धूप ने की थी गुजारिश एक बूंद बारिश की जैसे सूखी सी जिंदगी को आस हो किसी ख्वाहिश की। दूर दूर तक छाए थे बादल मगर साया कोई था नहीं। ऐसा भी बरसात का मौसम आएगा ये सोचा कभी था नहीं। याद आई वो पहली बारिश जब तुझे एक नजर देखा था। भीगती फिजाओं में जैसे दिल ने तेरा नाम ही ले लिया था। हाँ, और कुछ खास लोगों के लिए दफ्तर से मिलती नहीं छुट्टी, दफ्तर से मिलती नहीं छुट्टी, वरना ये इरादा था मेरा बारिश की हर एक बूंद को हथेली में भर लेना तेरे साथ। साथ बारिश में लिए फिरते हो उसको ए अंजुम तुम, क्या इस शहर में मोहब्बत की कोई आग जलानी है तुमको। गुनगुनाती हुई आती है फलक से ये बूंदें जैसे, लगता है कोई बदली तेरी पाजीब से टकराई है हौले से। धूप और बारिश के बीच कहीं ये दिल भी भीग जाता है, हर एक कतरा तेरी याद बनकर मुझ में ही जब सिमट जाता है। जी हाँ, हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, बड़े दिनों बाद, और मुझे सारे हालात पता हैं आप सभी के। और साथ ही साथ में एक ख्यालात भी आई है कि भाई मेरे वेलकम बैक के लिए ये मौसम कितना खूबसूरत हो गया था। ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली लवली लवली एंड ऑसम वाला मौसम। जी हाँ, ये जो बारिश, ये जो एहसास, आह ना हम बयां कर सकते हैं इसे, ना आप बयां कर सकते हैं, बट हाँ ठहराओ ठहर के कुछ पल के लिए महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, आज मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, केवल स्पेशली आज का, छुट्टियों वाला तो किसी और दिन ज़रूर बयां करूँगी, पर आज वाला एहसास मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि शो चल रहा है आपका अपना पसंदीदा कॉलर ट्यून गोंडा, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। और आज की जो पहली डिमांड आई हमारे पास में वो है हमारे प्रबल मिश्रा जी उर्फ पंडित जी की। और हाँ, ये शायरियाँ हमारी ही कलम से थी, क्योंकि आज माई गॉड क्या मौसम था, मैं तो पागल सी हो गई थी। और मैं आज इतनी खुश हूँ दोस्तों, मुझे मैं बता भी नहीं सकती, बयां भी नहीं कर सकती, कारण है इस हैप्पी मौसम का। और आप लोग से मुलाकात जो करनी थी, थोड़ी सी दीवानगी तो चढ़ना बनती है ना दोस्त। हाँ, तो चलते हैं फिलहाल के लिए आज की सबसे पहले डिमांड की ओर। और इनका कहना है, कहते हैं इन्होंने कुछ फरमाया है, तो चलिए हम बता देते हैं कि क्या फरमाया इन्होंने हमसे। ये फरमाया कि आज अपनी पसंद का कोई गाना आप सुना दीजिए। तो इनके लिए हमारी ओर से कुछ खास चार लाइनें हैं कि आज का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक नगमा अपनी पसंद का सुना दूं अगर आपको बुरा ना लगे। चलिए, हमारी पसंद का ये सॉन्ग हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी के लिए और आप सभी के लिए। भाई ये नगमा अगर आज आपने अपनी प्लेलिस्ट में नहीं ऐड किया होगा, आज तक नहीं सुना होगा, तो आप बखूबी ऐड करने वाले। फिलहाल बने रहिए 3 से 4 के सफर में, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और ये सबसे पहला नगमा हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी के लिए हमारी ओर से, हमारी पसंद का। एंजॉय द ट्रैक, फिर आते हैं नेक्स्ट नगमा लेके, बने रहिए।

दोस्तों, शो चल रहा है आपका अपना पसंदीदा। जी हाँ, पूरी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा। और अगर आप भी अपनी फरमाइशों को ट्यून करवाना चाहते हैं इतनी रोमांटिक से एहसासों के साथ में, तो बेशक कॉल कर लीजिए। वही नंबर है आपका स्टूडियो वाला 6393316429। और इतने सारे सवाल हैं और हमारे भी ख्याल हैं और कुछ जज्बात भी हैं जो आपसे साझा कर रहे हैं। पर उससे पहले ये फीलिंगफुल सॉन्ग जो आप सुन रहे हैं,

जी हाँ, और इन लम्हों को यहीं पे ठहर जाने दो, क्योंकि आज का जो मौसम बना हुआ था उसकी ठंडक वाली एहसास अभी भी है। भले ही सूरज दादा थोड़े से निकल आए हैं, बट हाँ, जो वो ठंडा ठंडा एहसास है ना, लगातार पिछले हफ्ते से ही बरकरार है। और वो जो ठंडक है ना, वो आपके दिलों में भी भर जाएगा ऐसे नगमों को जब आप ट्यून कर लेंगे। और हाँ जी, ट्यून करके अगर आपने रखा होगा रेडियो गानसली 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन को, तो बखूबी आप इसको फील भी कर पा रहे होंगे। फिलहाल बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे दिख रहा है, मैं सोच रही पहले वो ले लूं। नहीं, मेरा मन कर रहा है आज अमित जी की ये वाली डिमांड ट्यून ही कर देते हैं। और मुझे मालूम है कि मेरी मोस्टेस्ट फेवरेट वाले सॉन्ग, यानी कि रोमांटिक सॉन्ग की अगर बात करूं तो ये मेरा मोस्टेस्ट फेवरेट सॉन्ग रहा है। और ये सॉन्ग मैंने आज तक कभी किसी को गिफ्ट नहीं किया है, सिवाय पहली दफा मैंने किया है प्रबल मिश्रा जी पंडित जी को, तो थैंक्स तो बनता है, एक आप कर देंगे हमारे लिए तो अच्छा लगेगा। मैं फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे अमित कुमार जी की है। हाँ जी, आपके लिए पहुंचता है ये नगमा आप सभी के लिए। 3 से 4 के सफर में मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि 3:15 हो चुके हैं, 45 मिनट शेष, और बहुत सारी बातें करनी है, और बरसात और एहसास दोनों साथ लाई है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

हाँ जी, मजा तो आज आ गया है सौसम वाले मौसम को, और चैट बॉक्स में आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस को पढ़ते हुए बड़ा ही मजा आ रहा है। साथ ही साथ में आपको यकीन नहीं होगा कि हमको अभी मिली है छुटकी सी अमिया और उसमें लगा हुआ है काला नमक। सोचिए क्या स्वाद होगा अगर हम खाएंगे तो। लेकिन उससे पहले करना है हमें शो, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले गीत की ओर। ये गीत आया हुआ हमारे पास में, जी हाँ, आपके अपने रिजू जी की ओर से। जी हाँ, मुंबई वाले गोरे छोरे यानी कि रिजू जी की ओर से आया हुआ है ये नगमा। तो चलिए सुन लेते हैं, क्योंकि भाई ये हमारे प्यारे फेवरेट। जी हाँ, बता देते हैं कौन है। रणबीर कपूर जी पे फिल्माया गया सॉन्ग है, तो हम तो भैया सुनना चाहेंगे, आप भी सुनिए। और पैगामात की ओर हम विशेष करके वक्त निकाल के आएंगे, भाई बहुत सारी बातें करनी है। और बारिश के मौसम में अगर आपने किसी का हाथ पकड़ के आज तक भीगने का प्रयास नहीं किया है तो एक दफा कर लीजिएगा, मोहब्बत और गहरी हो जाएगी। बस इतना ही कहेंगे, बढ़ते हैं इस नगमे की ओर और आते हैं नेक्स्ट सॉन्ग लेकर के आप सभी के पास। फिलहाल ये गाना आपके अपने शो कॉलेज इन गोंडा के साथ।

हाँ, ये शहनाइयाँ बज रही। तो मुझे याद आ रहा है कि आज से लगभग 2-3 दिन पहले इतनी सारी चैटिंग आप लोगों ने की थी हमारे विवाह को लेके। मुझे लग रहा है विवाह समारोह में आप सभी पहुंच गए हैं और बस विवाह हो रहा है, लेकिन आज तक क्या बताऊँ, दुख है, मुझे खेद है, मेरे पिताजी को उनका दामाद नहीं मिला। खैर, सुनिए इसी नगमे को, फिर आते हैं नेक्स्ट सॉन्ग के साथ।

और एक दूसरे का साथ जरूरी है, कई दफा नहीं भी जरूरी होता, क्योंकि आज मुझे डांट पड़ी है जब मैं छई छपा छई खेल रही थी। यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं बारिश के मौसम में एकदम से पागल सी हो जाती हूँ और इतना खुश हूँ मैं, मतलब हुई थी बारिश सुबह में, अभी हो गई गर्मी, लेकिन वो जो खुमार है बारिश वाला वो अभी तक बरकरार है मेरे माइंड पे, मेरे जहन पे, मेरे दिलो दिमाग पे। और मैं चाहती कि वो फीलिंग आप तक पहुँचा ही दे उड़ेल उड़ेल के बाल्टी से, हाँ, क्योंकि पानी तो क्या बताएं जिस तरह से भरा हुआ था घर में, तो बस ऐसे ही चाह रही कि प्यार और एहसास आप तक उड़न उमड़ घुमड़ के आए, जिस तरह से एक गाना बता रहा है कि पहली प्यार की पहली बरसात है। क्या प्यार में बरसात होना जरूरी है या फिर एहसास होना जरूरी है, आप बताइए। फिलहाल सुनिए गाना।

जी दोस्तों, अगर हम और आप साथ हो ना तो फिर क्या ही बात है, तभी तो बनती है शमा, तभी तो बनता है ये कार्यक्रम हमारे और आपके होने से। फिलहाल चलते हैं हम चैट बॉक्स की ओर, बढ़ना चाहेंगे आपके पैगामात की ओर, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हम इतने दिन से कहाँ थे, क्या किया हमने। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आप हमसे करना चाहते हैं, तो चलिए फिर रुख कर लेते हैं उसी ओर और मुलाकात कर लेते हैं आप लोगों के मैसेजेस से। जी हाँ, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला मैसेज जो आया हुआ है हमारे पास में, वो आया हुआ है हमारे प्यारे सबलू सावंत जी का, फिर सुरेंद्र यादव जी का और रिजू जी का। इन्होंने भेजा हुआ है नीला लिंक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद में हमारे साथ में बनी हुई हमारी दरक्षा अंसारी जी, लिखते हैं गुलाबो, नहीं नहीं हाँ ऐसे ही कुछ इन्होंने लिखा है, लिखती हैं गुड आफ्टरनून डियर गुलाब, वो कैसी हैं आप, मैं बहुत बहुत बहुत ज़्यादा वाले खुश हूँ। और इसी के बाद में प्रबल मिश्रा जी और पंडित जी हमारे बीच में हैं, आपको भी गुड आफ्टरनून। और बबीता जी हैं गोंडा से, बड़ी क्यूटी पाई हैं, और इन्होंने लिखा है मैम जी नमस्ते, नमस्ते आपको भी। और रिजो जी ने भाई तारीफ कर दी है हमारी पसंद की, और अच्छा अच्छा ओके शायरी की थी, थैंक यू सो मच आप सभी का। और जी, और आपने जो लिखा है मैं समझ गई, थैंक यू। और कैफ मोबाइल जी भी आ गए भाई गुड मॉर्निंग का मैसेज लेके, वेरी वेरी थैंक यू भाई भाई भाई भाई भाई, भाई। कारण ये है गुड मॉर्निंग का जो आज मौसम था, आहा, काश कि वो पल वहीं थम जाता। और पता है आपको जब बारिश की बात आती है तो जब बूंदें आप पे गिरती हैं और वो जब शबनम आपके इर्द गिर्द नज़र आती है, आपके इर्द गिर्द जो मदर नेचर हैं, अच्छा आपने सोचा होगा, सुना होगा और देखा भी होगा कि एक मतलब थोड़ी सी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी महिलाओं की, जब वो नहा के निकलती हैं या फिर कोई भी हो, पुरुष हो या महिला कोई भी, तो कितना खूबसूरत लगता है। ऐसे ही मदर नेचर की अगर खूबसूरती को आपको देखना है तो जब वो नहा के निकलें तब देखिए, यानी कि बारिश के मौसम में देखिए, बरसात में देखिए, वो भीगे भीगे पत्ते, वो धुले धुले पत्ते, यहाँ तक कि आपके जो छत होंगे जहाँ काई लगी होगी उसका भी रंग एकदम खुशनुमा होगा, आपका मन खुशनुमा होगा, आपके इधर इर्द गिर्द लोग खुशनुमा होंगे, वो लोग भी खुशनुमा दिखेंगे जो बारिश में भीग रहे होंगे। और यकीन मानिए आज मैंने किसी को छाते में देखा ही नहीं है, सभी भीग रहे थे, इतना अच्छा मौसम था जिसका कोई जवाब ही नहीं। खैर बढ़ते हैं पैगामात की ओर, मैं कहाँ ही चली गई। हाँ, तो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में कुमार टेलर्स जी का, गौरा चौकी से, और आकांक्षा मैम आप आंधी पानी लेके आए हैं, आंधी पानी बिना जिंदगी कहाँ है, और अगर इतना खुशनुमा आंधी पानी हो तो भैया हम तो कहेंगे चार दफ़ा हो जाना चाहिए दिन भर में। और मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नीना जी हैं हमारी, जी हाँ चंगू जी हैं, लेकिन मंगू जी का आता पता नहीं है, उम्मीद है मंगू जी भी कहीं होंगी, और मैं खुद ही भूल जाती हूँ नामकरण करने के बाद, कौन चंगू जी कौन मंगू जी, क्षमा करिएगा थोड़ा सा। और आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, गायब तो हम थे, हम सच बोल रहे हैं, हम ससुराल थे मेरी गलती नहीं है भाई, आप लोगों ने मैसेज कर करके हफ्ते भर आयुषी जी को जो तंग किया है, आते ही हमको शिकायत।

0: शायद मिला है, आप इसी मतलब ये आपका जोड़ा था शादी का मैम, जीन्स टॉप में आपने मतलब जीन्स टॉप में शादी की है, आपके सारे लिसनर्स यही कह रहे थे। ओके तो थैंक यू भाई, और मैसेज कह रही मैं अपने ससुराल ही थी। और इसके अलावा मैम हमारे बीच में है सविता दुबे जी, लिखती हैं शुभ दोपहरिया आकांक्षा मैम, शुभ दोपहरिया आपको भी। और अपने साइड से इन्होंने धूप और बादल भेजा, भाई बारिश की दो बूंदें भेज देती क्या चला जाता है आपका, खैर कोई बात नहीं, फ्लावर भी भेजे हैं तो उसको देख के मैं फिलहाल खुश हूँ क्योंकि बहुत ही महकता हुआ चैट बॉक्स आपने बना दिया, थैंक यू सो मच। दरक्षा अंसारी जी बहुत प्यारी बात कही इन्होंने, कहती हैं कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। आ हा हा, क्या बात है, आपको बता दें कि वही पानी का जो रंग है, मतलब जो बेरंग है वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, कारण ये है कि वो हर एक रंग में ढलना जानता है, और हर एक रंग में जो ढलना जानता है वो जीवन को बहुत ही आसानी से जी सकता है, हर एक रंग का स्वाद मिल भी उसको प्राप्त हो जाता है, और हर एक जगह वो एडजस्ट भी हो जाता है, और सामने वाले मतलब जो रंग मतलब खुशी का हो दुख का हो कोई भी रंग हो उसके हिसाब से अगर वो ढल जाता है तो सामने वाला भी खुश, आप भी खुश, और ये जहाँ भी खुश खुश खुश खुश नवा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैसेज की अगर बात करें नीना जी ने लिखा है, मैम जी लग रहा है आपको आंधी उड़ा लाई है। हाँ जी बिल्कुल बखूबी आपने सही फरमाया है, वाकई मुझे आंधी उड़ा के ही लाई है, मैं तो आ ही नहीं पा रही थी, मेरे कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, थैंक यू सो मच। और रिजु जी ने फीडबैक दिया है कि पहली बार ये गाना सुना है, वाकई अगर हमारे दिल तक कोई गाना उतर गया है तो मुझे मालूम है कि हमारे लिसनर्स को भी वो ज़रूर पसंद आएगा, मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग में से एक सॉन्ग था वो मेरे प्लेलिस्ट का, थैंक यू सो मच। और सबलू सावन जी मुंबई बोरीवली से लिखते हैं, शुभ दोपहर आज आकांक्षा जी, कहाँ भूल गई थी आप लिसनर्स की, आप धड़कन हो आपके बिना, ओके थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा फीडबैक देने के लिए, और मैं कहीं भूली भूली नहीं थी, बस दो पल का रेस्ट लेना ज़रूरी होता है हर किसी को, तो बस मैं भी चली गई थी रेस्ट के लिए, थैंक यू सो मच आप लोग के फीडबैक के लिए, लव सपोर्ट के लिए। शैलेंद्र कुमार जी हैं हमारे बीच में, हाँ जी एमपी खजुराहो से लिखते हैं, हेलो आकांक्षा मैम, हेलो आपको भी, नमस्ते आपको भी, शुभ दोपहर आपको भी। अनिल वर्मा जी हैं सैदापुर से, भाई आज इन्होंने जो गाना भेजा उसके साथ में एक सवाल भी था इनका, मैं ढूंढ रही हूँ अगर चैटबॉक्स में मिल जाएगा तो ज़रूर जवाब देना चाहूँगी, शुभ दोपहरिया आर्ज आकांक्षा जी आपको भी शुभ दोपहरिया। और विकास तिवारी जी उन्नाव से, हेलो आर्ज आकांक्षा मैम कैसी हैं आप, कहाँ चले गए थे, बस ज़्यादा दूर नहीं गए थे, बस गए थे कहीं पे थोड़ा सा रेस्ट मारने के लिए, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों के हिसाब से तो हम अपने ससुराल गए थे, पालकी में होके सवार चल गई थी वागन, वापस आना पड़ा भाई, आप लोग की याद जो आ रही थी, हिचकी तक आ रही थी हमको। ओके और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मैसेज की ओर, अगर एक एक मैसेज पढ़ेंगे तो बड़ी देर हो जाएगी, इसलिए फटाफट से सभी के मैसेज को हम इन शॉर्ट में लेते हैं। आर के श्रीवास्तव जी हैं गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं जी। हाँ हमारे चिंटू जी भी हैं, लिखते हैं गुड आफ्टरनून दीदी जी, आपको भी शुभ दोपहरिया। और चिंटू जी हमें सुनते हैं आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। मनी शर्मा जी हैं, प्लीज़ मनी जी कॉल कर लीजिए, अगर कॉल किया होगा तो अच्छी बात है, मैंने भी देखा नहीं है। और इसके बाद में आपका भी स्वागत करते हैं, और इसके बाद मैं ढूंढ लूँ कोई और छूट तो नहीं रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मुझे लग रहा है कि कोई छूट नहीं रहा है, और बाकी मैसेजेस मैं एक एक पढ़ूंगी तो फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी। धर्मेंद्र मोहन भाटी जी भी हमारे साथ में हैं, जो हमें सुनते हैं आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। तो चलते हैं फिर दोस्तों दूसरे वाले यानी कि नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर, और ये सॉन्ग है किसका, ये तो मैं भूल गई, नहीं नहीं याद है मुझे, हाँ जी हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी का ही है। तो आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से सुनने वाले सभी लिसनर्स के लिए स्पेशली ये सॉन्ग हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर से। भाई 3 से 4 के सफर में आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त आर्जा कांक्षा को, आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 96.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। वक्त हो चला है 3:34, और शेष जो भी वक्त है उसमें मैं सभी के कानों को ट्यून करने की पूरी कोशिश करूंगी, बने रही है ज्यादा ट्रैक।
1: करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

थी कि मैं कहाँ गई थी, तो हमारी प्यारी दरक्षा जी का कहना है कि आज आकांक्षा जी अपनी नानी के यहाँ से पानी लेने गई थी। थैंक यू ये बताने के लिए। मुकेश यादव जी हमारे बीच में मौजूद है, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मुकेश जी।

भाई 12, 13, 14, 15 ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन एक मैसेज आया हुआ है और उसमें लिखा गया है, बोलो इतने दिन तूने क्या किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, आई एम जोकिंग। अच्छी बात है आप खाली जोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग कर रहे होते तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। फिलहाल ये जनहित में जारी एक पैगाम था हमारी ओर से, और हमें सुन रही है हमारी रीना शर्मा जी रुड़की उत्तराखंड से, और फिलहाल ये गाना सुनिए।

हाँ जी, आपने अभी ये नगमा सुना है हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी के फरमाइश पे, और ये मूवी थी हमारी तेजाब जो कि आई थी 1988 में और फिल्माया गया ये माधुरी दीक्षित जी के ऊपर ये सॉन्ग। और अभी हम बढ़ेंगे जो कि 90s हिट्स में से एक है, आपने सबलू सावंत जी के सॉन्ग की ओर, और देखते हैं ये क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमको भी नहीं पता है आखिर में सुनना क्या चाहते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं ये सुनना क्या चाहते हैं।

भाई प्यार का सिग्नल मिले या ना मिले, लेकिन जब आप ट्रैफिक में अटके हो तो हवलदार का सिग्नल जरूर मिलना चाहिए, वरना आप अपनी ड्यूटी पर देर से पहुंच सकते हैं और लग सकता है आपका हाफ डे। हाँ, आज के दिन काफी लोगों का लगा होगा क्योंकि बारिश हो रही थी और इसलिए मैंने जस्ट बता दिया। और आगे बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। ये डिमांड बेहद खूबसूरत है, कारण है ये डिमांड है हमारी सभी हाजी की और इनकी प्लेलिस्ट बड़ी प्यारी होती है, सूती सा सॉन्ग है। चलिए उस ओर चलते हैं। और हाँ जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए भाई कि हम पे सूट करता था ये सॉन्ग और सभी को इंतजार था हमारा। और इससे पहले मैं बता दूँ, मुझे इस बात का इंतजार था कि मैं आप लोगों को फेस कैसे करूँगी, और सबसे ज़्यादा इस बात का इंतजार था कि इतने दिन के बाद में इतने सारे सवाल होंगे, उस चीज़ को कैसे फेस करूँगी। फिलहाल शुक्र है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये हमारी सभी हाथ की डिमांड है और डिमांड बड़ी खूबसूरत है। आइए सुनते हैं मिलके। और जी हाँ, शेष है 20 मिनट हमारे पास में और नेक्स्ट डिमांड हम लेके आएंगे अपने प्यारी सविता दुबे जी की, बने रहिए।

हाँ जी, कहो ना प्यार है से ये सॉन्ग अभी आपने सुना सबीहा जी की फरमाइश पे। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारी सविता दुबे जी की आई हुई है हरखापुर से, और ए आर रहमान जी के कंपोजिंग में ये वाला सॉन्ग आपने हर बारिश में एंजॉय किया होगा। अगर हर बारिश में नहीं किया है तो इस बार जब बारिश आएगी तो ज़रूर सुन लीजिएगा। वैसे सुन लीजिए, फिर बताती हूँ कि इस गाने में क्या कहना चाहता है लिरिसिस्ट। हम अपने वाले स्टाइल में बताएंगे, थोड़ा सा मजाक किया है, बस दिल पे मत लीजिएगा।

सोचिए अगर ढेर सारे मेघे एक साथ में बरसे, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अवधी में मेघा किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा अच्छे से, तो टर टर की कितनी सारी आवाजें आएंगी, इमेजिन करिए आप, जस्ट इमेजिन। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को जो की फरमाइश है हमारी सविता दुबे जी की। इसके बाद हम बढ़ेंगे बबीता जी की डिमांड की ओर, और उसके बाद होगी डिमांड हमारी मेहताब जी की, और फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में किसकी डिमांड है। विकास जी भी हैं, अनिल जी भी हैं सैदापुर से, और बाकी लिसनर्स भी हैं, और वक्त शेष 15 मिनट, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

0: बापू मैं जा रही हूँ।
1: जी हाँ, मेघा मतलब बादल नहीं होता, मेघा मतलब क्या होता है आप सभी को अच्छे से पता है। और जब वो टर टर टर करेगा तो कैसा फील होगा, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, ऐसी वाली भी आ सकती है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है बहुत ही प्यारी सी फीलिंग वाली। हाँ, ये डिमांड हमारे बबता जी की, तो चलिए सुनते हैं आपके फोन फरमाइशी कार्यक्रम यानी के कॉलेज इन गोंडा में ये डिमांड। एंजॉय द ट्रैक।

भाई हमारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी ने पूछा है आवाज़ बिकॉज कॉलोनी से कि भैया सावन चला है या वैसाख है, कोई हमें बताए। तो भैया अगर हम पूछने जाएंगे पंडित जी से तब तक पता चलेगा जो 13 मिनट बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं मैं जाके पूछ के आऊँ? फिलहाल ये गाना।

जी, और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि पन्ना एक शहर है जहाँ पे हीरे की खदान है, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया था जब उसकी ट्रांसफर वहाँ पे हुआ था और वो रहते थे। तो उनका कहना कि भाई वो इसी के लिए फेमस है, मैं तो आज तक जान ही नहीं पाई थी, मुझे लगा था बस ऐसे ही फेमस है। नहीं नहीं नहीं, लिरिसिस्ट बहुत सोच समझ के लिखते हैं, गाना बहुत प्यारा था बबीता जी, सेम टू सेम आपकी तरह, आप ही हीरे की कम नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खास होता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड है हमारे मेहताब जी की, तो चलिए सुन लेते हैं क्या सुनना चाहते हैं। उसके बाद में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। नेक्स्ट बारी जो होगी वो होगी हमारे विकास तिवारी जी की उन्नाव से, उसके बाद होंगे हमारे अनिल जी, और उनका सवाल भी हमारे पास में, वो भी हम पढ़ के जवाब देना चाहेंगे, और फिर बाकी सभी लिसनर्स की बारी। फिलहाल ये गाना जी हाँ आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा में।

तो अभी आपने अंजय के मेहताब जी की डिमांड को और बड़ा ही मजा आ रहा है भाई। हमारे बीच में रोशनी जी भी उपस्थित है, कह रही हैं ओके गुड इवनिंग जी, और साथ में पूछा कहाँ खो गई थी जब हमने बोला ससुराल थे। मोटा सनमा वाला फेस भेजा इन्होंने, इमोजी मजा आ गया पढ़ के देख के। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे विकास तिवारी जी की उन्नाव से, और इन्होंने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा को। चलिए सुन लेते हैं कि ये क्या पैगाम भेजा इन्होंने। बड़ा ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। अच्छी चीज हमारे

मैं बस इसी सवाल से डर रही थी और वही सवाल मेरे सामने आ गया। भाई प्रमुख जी भी आ चुके हैं। ओके, फिलहाल के लिए श्रावस्ती में है और इन्होंने अपना, जी हाँ, पीछे से थोड़ा सा चेंज कर लिया है नाम और लिखते हैं प्रमुख कुमार जी। वैसे आज तक लुधियाना पढ़ते आए हैं तो आज पढ़ रहे हैं श्रावस्ती से। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारी रोशनी जी का कहना, भैया शादी कब हुई, मुझे बुलाया भी नहीं, पूरी छुपा ली आपने, पूरी लुकवाने के लिए, सच्ची में इतना छोटा दिल है आपका, मैं पूरी सब्जी तक नहीं पूछा आपने। माय गॉड, इतनी हंसी आ रही मुझे पढ़ पढ़ के, जिसका कोई जवाब नहीं है। मुस्तफा जी, फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये गाना बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच विकास जी।

अगर दूर ना होती तो ये जज्बात उमड़ के कैसे सामने आते, आप लोग का इतना सारा प्यार कैसे मिलता है ना। तो कभी कभी थोड़ी सी गैपिंग मेंटेन कर लेना चाहिए। यकीन मानिए आपके जो अपने होते हैं वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, और आप सभी तो मेरा बहुत ज़्यादा रखते हैं, मुझे ये भी पता है। इसीलिए मैं सच बताऊँ, मैं आपसे दूर नहीं हो पाती, वरना कब का यहाँ से शायद चली गई होती, और ये सच है। और दिल के जज्बात है तो फिर मैंने बयां भी कर दिया। और इसी के बीच में भाई एक और जज्बात हमारे सामने आया हुआ है, और जो कि नेक्स्ट सॉन्ग है हमारे अनिल वर्मा जी का सैदापुर से। तो इनका सवाल है, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। मेरा ये सवाल है कि गम होने पर शराब ही क्यों पीता है इंसान। हाँ जी, पानी पूरी से पानी वाले भैया से पानी क्यों नहीं ले लेता है, और कभी कभी गन्ने का जूस भी पी सकता है, और चाहे तो माता पिता के अपने आंसू भी पी सकता है। हाँ जी, और उनके सपनों को भी साकार कर सकता है। आप अपने माता पिता के प्रति समर्पण भी कर सकते हैं, उनका त्याग है और आपको पालन पोषण करके उन्होंने बढ़ाया है, एक योग्य नागरिक बनाया है। आप क्यों नहीं पीते उनके आंसुओं को और उनका ध्यान क्यों नहीं रखते। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है, और मुझे मालूम है कि शराब पीना मतलब कोई खुशी से नहीं पीता है, इंसान को एक लत सी लग जाती है, और कई दफ़ा तो इसलिए इंसान पीते हैं कि मैं अगर फैक्ट बताऊं तो फैक्ट ये होता है कि शराब पीने के बाद में इंसान की जो नसें हैं वो एकदम से ढीली हो जाती हैं, और उसके बाद में अच्छी सी नींद ले पाता है। कई दफ़ा होता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस में होता है, और इसलिए वो चाहता है कि एक अच्छी सी नींद मिल जाए उसे। और कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे ये है कि वो मतलब खुशी से पी रहा हो, कई दफ़ा गम होता है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। और आप बिल्कुल से हमारे अनिल जी की बात को मान सकते हैं, और आप गन्ने का जूस भी पी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। पानी पूरी वाले भैया जी से पानी भी मांग के पी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिलहाल चलते हैं इन्हीं के फरमाइश की ओर, और इन्होंने क्या फरमाइश की है आइए सुनते हैं मिलकर। आपके 3000 के सफर में मैं हूँ उस चैनल से आपकी आज आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा रेडियो 96.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और ये सॉन्ग आप सभी के लिए।

आज बहुत सारे सैड सॉन्ग्स आए हुए थे, लेकिन ये पहला सॉन्ग था जो कि सैड मैंने ट्यून किया था। और वक्त हो चला आप सभी से अलविदा कहने का। कब वक्त बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, एक घंटे कितना छोटा पड़ता है ना आप लोगों से मुलाकात के दौरान। फिलहाल इस गाने को कंप्लीट होने देते, फिर थोड़ी सी बातें करके और लास्ट सॉन्ग लेकर के मैं आपसे अलविदा लूंगी।

के लिए कितनी गहरी बात है। और आज के काफी सारे नगमे थे जो कि सैड सॉन्ग्स थे, फिलहाल जिन जिन के रह गए चलिए बता देते हैं। और सारी सैड सॉन्ग्स में से थे फिलहाल हमारे देव प्रसाद जी का सॉन्ग सैड नहीं था, लेकिन देव प्रसाद जी रह गए हैं आज के सफर से। जी थोड़ी सी माजर चाहूंगी आप सभी से। और निबर जी हैं, मोहम्मद अयूब जी हैं, रीत लाल जी हैं हम अलाहाबाद से, अहमदाबाद से नहीं। और मुस्तफ़ा जी और कमल नैन जी का मैं नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करते हुए अब आप लोग से लूँगी अलविदा। और बने रहिए आपके अपने अपने अपने अपने फेवरेट वाले रेडियो स्टेशन पे आने के, रेडियो गाने स्ली 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन के साथ में। सबलू जी आप अपने हाथी को प्लीज़ हाथिया घर से ही भिजवाइएगा, हम चाहेंगे दीपक जी घर के भेजें। फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं कल आपके अपने शो इसी शो में, जी हाँ कॉलर ट्यून गुंडा में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
1: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now listening 11.39.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.39.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज हमारे साथ में गोधूली में अलग अलग सेक्टर्स के, अलग अलग क्षेत्र के हमारे बीच में मेहमान आते हैं, जो अपने कार्यक्षेत्र के बारे में, अपने बारे में बताते हैं, जिनसे हमको न जाने कितनी सारी चीजें देखने को, जानने को, समझने को मिलती हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, तो हम बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना हम बता दें कि आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि ओनर हैं प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में, जिसका नाम है गोधूली।
2: थैंक यू नंद जी,
1: थैंक यू सो मच जट साहब। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई आप डॉक्टर हैं, आपसे आपकी पद्धति के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें होनी है और बहुत अहम बातें होनी है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक परिचय दें ताकि हमारे श्रोताओं को पता चल सके कि आप कौन हैं।
2: मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी है, मैं यहीं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा के पास ही एक छोटा सा विलेज है चांदपुर, वहीं का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी गोंडा में ही हुई है। मैं यहीं आपके पड़ोस में GIC का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर्नाटका के पास शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से की है। और गोंडा में मेरा एक छोटा सा आयुर्वेदिक क्लिनिक है, प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम से।
1: जी, ये आपने अपना परिचय दिया, हम जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में।
2: मेरे पिताजी गोंडा डीजल से रेलवे में ही एक कर्मचारी थे, अभी रिटायर्ड हैं। माताजी हाउसवाइफ हैं, दो भाई दो बहन हैं। मेरा छोटा भाई जो है, मेरा एक हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वो ओन करता है, वो देखता है वहीं, और मैं यहाँ हूँ जैसा जानते हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो टीचर है प्राइमरी स्कूल में, और छोटी सिस्टर हाउसवाइफ है।
1: ओके, ये तो बड़ा अच्छी बात आपने बताई, और लगता है कि हाँ, एक छोटी और शॉर्ट सुखी फैमिली के बारे में आपने बताया। हाँ जी। बचपन कैसा बीता आपका?
2: गांव में रहा चुकी, तो जैसा गांव के सभी लड़कों का बचपन बीतता है वैसा ही बीता, कुछ स्पेशल नहीं रहा ऐसा। घर पे रहना, खेती का काम करना और साथ में पढ़ाई करना, ये सारी चीजें जीवन के साथ जुड़ी रही। तो मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं अपनी जमीन के साथ काफी जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी इसी, शायद यही वजह है कि मैं अपने गाँव को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आज भी मैं वहीं रहता हूँ।
1: क्या बात है। और कहते भी हैं कि जो लोग भाई अपने गाँव से जुड़े हुए होते हैं, वो हमेशा ही उसकी मिट्टी उनको सौंधी।
2: हाँ, मुझे लगता है कि वो सुकून कोई और जगह दे नहीं पाती है जो हमारा गांव हमें देता है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। अभी आप हमको ये बताइए कि आपने पढ़ाई की, गोंडा से शुरुआती पढ़ाई आपकी हुई, उसके बाद आप कर्नाटका चले गए आयुर्वेदिक डिग्री प्राप्त करने के लिए। आपके जहन में ये कैसे आया कि आपको डॉक्टर ही बनना है?
2: कुछ स्पेशल तो ऐसा विचार नहीं था, पर कुछ रिलेटिव्स और सबसे लोगों से मिला, बातचीत हुई। उस समय बड़ी उत्सुकता होती है जब हम 12th पास करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ रिलेटिव्स कुछ लोगों से मिला, उनसे मिलने की वजह से ही जो है हमारा जो है डॉक्टरी की तरफ बढ़ा। तो उस समय मुझे ये भी नहीं पता था आयुर्वेद एलोपैथ में क्या डिफरेंस है। धीरे धीरे पढ़ाई के दौरान मैंने एलोपैथी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, MD हैं, MBBS हैं, उनसे बातचीत हुई। चूंकि मेरा हॉस्पिटल भी है तो वहाँ भी काफ़ी डॉक्टरों से मुलाकात हुई। काफ़ी चीज़ें देखने और जानने के बाद में मुझे लगा कि आयुर्वेद जो है वो उसकी आवश्यकता है आज हमारे समाज में, आज हमें ज़रूरत है आयुर्वेद की, क्योंकि बीमारियों का इलाज तो हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अवेलेबल है, पर हमें स्वस्थ कैसे रहना है वो हमें नहीं पता चल पा रहा। वो हमें आयुर्वेद ही बता सकता है कि हमें बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है।
1: ओके, तो आप तो अभी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए काम कर ही रहे हैं।
2: बिल्कुल।
1: जानना ये चाहेंगे कि क्या बचपन से ही आपके घर में भी ऐसा ही माहौल था, चीजों को लेके, क्योंकि आयुर्वेदिक चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, या कैसे क्या होता था?
2: नहीं, सामान्य परिवार जैसा होता है, हम वैसे ही थे, गांव से जुड़े थे, खेती किसानी था, मुख्य पापा ही एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बाकी हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि खेती और पशुपालन ही था, जो नॉर्मली एक औसत भारतीय परिवार, किसान परिवार में होता है। मेरा जीवन भी वैसे ही गुजरा, कुछ स्पेशल नहीं था।
1: डॉक्टर साहब, वैसे जहाँ तक हम जानते हैं कि ऐसे घरों में ज्यादातर ये जो कहते हैं होम रेमेडीज, घरेलू इलाज, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। चोट लगने पे हल्दी का लेप बांधना है, या कहाँ पे कड़वे तेल का इस्तेमाल करना है, ये सब बड़ा अभी भी है। क्या अभी भी गांव में इस तरह का माहौल है कि पहले चीजों को डॉक्टर के पास ना जाके पहले घर पे ही देखा जाता है क्या ऐसी चीज है जिससे इलाज किया जा सके?
2: इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोई अलग से नहीं आया, ये हमारा आयुर्वेद है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे कुछ हम मॉडर्न होते गए, कुछ भ्रांतियाँ फैलती गईं, कुछ अपने ही पैथी से हम दूर होते गए। तो जो हम हमारे जुकाम होते ही हमारी माँ हमें अदरक और हल्दी का वो पिला देती हैं दूध में डाल के, और हमारा जुकाम हमें आराम हो जाता है, वो कुछ अलग से नहीं आए, वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, हमारा आयुर्वेद ही है। पर क्या हुआ, हम उनसे अनजान हो गए। हमारे कुछ गाँव के कुछ बुजुर्ग अभी उन पैथियों को जिंदा रखे हुए हैं, उन्हें बचाए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से आया है, वो सब कुछ आयुर्वेद है, हमारे जीवन में जितना कुछ जुड़ा हुआ है। इवन अगर आप रात को कुछ ऐसा खाने लगते हैं, गलत खाने लगते हैं, तो आपकी दादी, आपकी नानी आज भी आपको टोक देती हैं कि ऐसा मत खाओ नहीं बीमार हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने कोई डिग्री ले रखी है डॉक्टरी की? उन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी, उन्होंने उन्हें ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे जीवन सा हुआ करता था। आज हम थोड़ा सा उससे दूर हुए हैं, या कह सकते हैं हम भटक गए हैं, पर हम पूर्णतया उससे भटक नहीं, दूर नहीं रह पाएंगे, हमें उसके पास जाना पड़ेगा।
1: ओके, तो अगर आपने इतनी ही तारीफ कर दी है आयुर्वेद की, तो फिर अब हमको और हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताएं कि आयुर्वेद है क्या?
2: देखिए, आयुर्वेद के बारे में वैसे एक्सप्लेन, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इतना हम कह सकते हैं कि सुख दुख और आयु के लिए हितकर और अहितकर विषयों का मापदंड जहाँ बताया गया है वही आयुर्वेद है। हमारे लिए सुखकारी क्या है, दुखकारी क्या है, हमारे आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये जहां पर भी बताया गया है वही आयुर्वेद है।
1: ओके, आपने कहा सुख दुख में जो भी हितकर बताया गया, हाँ, वही आयुर्वेद है।
2: हाँ।
1: ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है।
2: देखिये, आयुर्वेद का अगर मूल सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक है जो लिखा गया है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। इसका मतलब ये होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए सबसे पहले, उसके बाद जो बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। अर्थात आयुर्वेद ये चाहता है कि लोग बीमार ही न पड़े, जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ ही रहे। तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए, फिर जो बीमार होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए।
1: तो जो मान लीजिए जो स्वस्थ है, तो उनका फिर इलाज, या कह सकते हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैसे क्या क्या होता है?
2: हाँ, वही हमारी जैसे दिनचर्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आयुर्वेद में तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजन, ऋतु अनुसार भोजन, इन सब चीजों के बारे में बहुत विस्तृत एक्सप्लेन किया गया है।
1: जी,
2: शुरुआत में जो भी हमारे आयुर्वेद, जैसे हमारा अष्टांग हृदय है, तो उसकी शुरुआत ही होती है दिनचर्या से, कि हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना क्या पीना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना पीना चाहिए। तो आयुर्वेद तो बहुत विस्तृत इस चीज को बताता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकता है।
1: बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन ये भी है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, अगर आयुर्वेद को देखे तो?
2: जैसे मैंने बताया कि आपके आयु के लिए और सुख के लिए क्या हितकर है, आयुर्वेद में बताया गया है। तो अगर हमें सुखी रहना है और स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद आवश्यक है।
1: अगर हमें स्वस्थ रहना और सुखी रहना है
2: तो बिना आयुर्वेद के संभव नहीं है।
1: ओके, चलिए ये तो आपने बता दिया। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है बाकी पैथियों में और आयुर्वेद में।
2: हाँ, देखिए, बाकी पैथियों के बारे में ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद ऐसी पद्धति है, ऐसी चिकित्सा है जिसमें आपको अपने चिकित्सा के लिए कुछ भी बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, जो भी आपके डेली यूज़ की सामग्री है, उसी से आप अपने स्वास्थ्य को मेनटेन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर में हल्दी भी होती है, हमारे घर में सौंठ भी होती है। अगर हमें जुकाम होता है, तो हम हल्दी काली मिर्च का काढ़ा बना के हमारी माताएं आज भी हमें पिलाती हैं और हमें आराम मिलता है। कहीं चोट लग जाती है तो तेल गरम करके मालिश कर लगा दिया जाता है और हमें आराम मिल जाता है। तो कहने का मतलब है आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिसके लिए आपको कुछ बाहर से नहीं ढूंढना, जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आपकी चीज़, जैसे गाँव में कहते हैं कि फोड़ा हो गया है, पस पड़ गया है, तो नीम की पत्ती ले उबाल के धुल दो। तो कहने का मतलब है कुछ आपको बाहर से ढूंढना नहीं है, कुछ आपको फैक्ट्री में तैयार नहीं करना, आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है आप उसी से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं।
1: ओके, तो आपने कहा कि जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके घर की बात हो या आपके आसपास की बात हो।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आया कि आखिर अलग कैसे है। देखिए, सारी चीजों में ऐसा देखा जाता है जब कुछ इमरजेंसी होती है या बहुत पेन बढ़ जाता है तो लोग एलोपैथ की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो जल्दी आराम देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जल्दी आराम देता है तो उस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद को प्रेफर किया जाता है कि आयुर्वेद अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म कोई चीज़ चल सकती है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे गिल्टी की प्रॉब्लम है, गांठ जो पड़ जाती है, उसका एक अच्छा इलाज होता है। दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, जो बीमारियाँ जैसे शुगर और बीपी की ये कॉमन बीमारियाँ होती हैं, इसमें कितना रोल अदा होता है आयुर्वेद का?
2: हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी पैथी है, जैसे एलोपैथी या आयुर्वेद है, इन दोनों का एक मुख्य उद्देश्य जो है हमें स्वस्थ रखना है।
1: बिल्कुल।
2: तो दोनों के अपने अपने लाभ फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे एलोपैथ का नुकसान है कि लंबे समय तक उसका साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही आयुर्वेद में कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास पेन किलर नहीं है, या ऐसा कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हम अब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, तो हम उसमें ना पढ़ के थोड़ा सा बाहर रह के हम ये बात करेंगे कि हर पैथी की अपनी गुणवत्ता होती है। एलोपैथ की अपनी गुणवत्ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े रिसर्च है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास ऐसी हैं जिससे हमें चिकित्सा करने में बड़ी सुविधा मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों को मिला के अगर कोई चिकित्सा की जाती है, अगर कोई पेशेंट है जिसको जोड़ों का दर्द है और बहुत भयंकर दर्द है, तो उसको एक पेन किलर अगर दिया गया है किसी डॉक्टर द्वारा, उसने खा लिया, उसे आराम हो गया, लंबे समय के लिए उसे ठीक करने के लिए अगर वो आयुर्वेदिक चिकित्सा करता है, तो हो सकता है, संभावना इस चीज़ की भी रहती है कि उसका घुटने का दर्द परमानेंट ठीक हो जाए बिना किसी दर्द की दवा के, उसे दर्द की दवा का सेवन परमानेंट नहीं करना पड़ेगा, और वो जो लंबे समय तक इलाज करवाएगा उसका उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा। यह आयुर्वेद का फायदा है। लेकिन एलोपैथ का फायदा यह है कि अगर इमीडिएट उसको किसी तरीके का बहुत सीवियर पेन है तो वो इमीडिएट उसमें आराम पा सकता है एलोपैथ में। आयुर्वेद में इंजेक्शन जैसी अभी चीजें अवेलेबल नहीं है।
1: ओके, तो ये तो आपने बताया कि कुछ जैसे नुकसान ये होते हैं कि भाई इमीडिएट फौरन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है।
2: हाँ,
1: आयुर्वेद की साइड से क्या और भी साइड इफेक्ट्स वगैरह का भी खतरा इसमें रहता है?
2: देखिए, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है, पर आयुर्वेद का नुकसान, आयुर्वेद में नुकसान अगर आप सही दवा नहीं लेंगे, सही समय से नहीं लेंगे, तो उसका नुकसान होता है।
1: क्या हो सकता है नुकसान?
2: जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर किसी को बहुत सीवियर एसिडिटी है और वो खट्टा दही खा लेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये हमारे भोजन की बात हुई। अगर हम गलत तरीके से भोजन भी

0: इनके लोगों की चिकित्सा करते हैं, तो क्या होता उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो वो क्या होता, उनका एक ही उद्देश्य होता है लोगों को ठगना और पैसे कमाना। तो वो कुछ भी उल्टा सीधा मिला के, कोई भी दवाइयां मिला के, कुछ भी करके लोगों को दर्द का, घुटनों के दर्द का इलाज कराते। बहुत सारे पेशेंट मुझे ऐसे मिले हैं जो किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करा के आए, बाद में उन्हें ढेर सारा साइड इफेक्ट हुआ, किडनी फेलियर हुआ, चेहरे पे सूजन थी, या बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा है, उसका गलत लाभ भी समाज में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मार्केट में जब आप जाते हैं तो कोई साइकिल पे बेच रहा है, कोई तंबू लगा के साइड में बेच रहा है, और बहुत सारे दिक्कतों का निवारण बताते हैं।
0: बिल्कुल, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे थोड़ा सा नियंत्रण करे वो, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो बना रहना चाहिए आयुर्वेद पे। क्योंकि हम जैसे अच्छे डॉक्टर जब किसी अच्छे व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं कि हम आपके घुटने का दर्द का इलाज करेंगे, तो हमसे कहता है कि नहीं नहीं यार, हमारे पड़ोसी ने तो कराया था, उसका तो घुटना फेल हो गया। पर वो ये नहीं कहता कि उन्होंने किससे कराया था, या वो ये जानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद बदनाम होता है ऐसे ठगों के चक्कर में।
1: ओके, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि भाई हर पैथी में जैसे उसका फायदा होता है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उसी तरह कुछ ठग भी ऐसे होते हैं जो उसका भरोसा
0: गलत उपयोग करते हैं।
1: और लोग उस पर झांसे में आने के बाद कहीं ना कहीं उनका विश्वास सही पद्धति से भी हटने लगता है। तो ये जागरूकता की भी कमी है, और कहीं ना कहीं सिस्टम को इस पे थोड़ा और ध्यान।
0: कभी भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो ऐसे डॉक्टर के पास ही, पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, और जिसकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी से, एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है, जिसने डिग्री की है, वो कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, वो किसी भी पैथी का हो। पर उसकी कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, और जो उसके मन में दिमाग में बस जाती है उससे भाग नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही बात है कि भाई जिस भी पैथी के डॉक्टर हो, उनकी अपने एक समाज के लिए जिम्मेदारी होती है,
0: और हर पैथी के डॉक्टरों ने समाज की सेवा की है समय समय के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी उनका रहा, वो सभी ने बहुत समाज की सेवा की अपने अनुसार।
1: बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ में, चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया, श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे अभी अहम सवाल हैं बाकी, जिसको सुनने के बाद आपको काफी कुछ समझने को, जानने को मिलने वाला है। इसलिए कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से, जिसमें हम काफी ज्यादा अहम मुद्दों पे बात कर रहे हैं आयुर्वेद को लेके। डॉक्टर साहब, जाने से पहले काफी सारी बातें हुई जो हमारे और आपके सभी के जीवन में काफी ज्यादा पता होना उसको जरूरी होता है, जानकारी होनी चाहिए। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद इतना पुराना बताया जाता है कि सालों साल, कई हजार साल पुरानी पद्धति है, क्या आज भी, क्योंकि देखा जाता है कि फायदा करता है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है जबकि समय के साथ चीजें चेंज की जाती हैं, अपडेट होते हैं, तो आज भी कैसे इतने रिलेवेंट है, कितनी बीमारियों में ये काम आ जाती दवाएं?
6: देखो, आयुर्वेद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी एक आदमी ने लिख दिया हो या किसी एक आदमी ने बता दिया हो, ये सालों साल रिसर्च का परिणाम है। हमारे ऋषियों ने बहुत गहरी शोध इस पर की है, किस तरह से की है उस पर तो सोच पाना आज मुश्किल है। आज मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर किसी को खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, तो उसको लोहासो देना चाहिए, यानी आयरन कंटेंट देना चाहिए। लौह भस्म होता है लोहासो में, आयरन कंटेंट देना चाहिए। आज मॉडर्न साइंस, इतनी मॉडर्न होने के बाद, इतनी सारी रिसर्च के बाद, सब कुछ होने के बाद में आज हम जानते हैं कि मॉडर्न में भी, मॉडर्न जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है हमारा, उसमें भी अगर किसी को एनीमिया होती है तो उसे आयरन देते हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि कहते हैं 2000 साल पुराने ग्रंथ हैं हमारे, तो उस समय ना हमारे पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट हुआ करते थे, ना कोई मॉडर्न रिसर्च हुआ करती थी। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने किस तरह से इसकी खोज की होगी, कितनी रिसर्च की होगी, उसके बाद इस चीज को लिखा।
0: बिल्कुल,
6: तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज आयुर्वेद में जो भी बताई गई है वो हमारे शरीर को और उस चीज, जो भी चीज हमारे खाने पीने वाली चीज है या जो भी चीज दवा में यूज होती है, उसके बारे में अच्छे से जान के, समझ के, उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव सब चीजों को समझ के तभी बताया गया है। मतलब हम इस चीज को भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों को आप लंबे समय तक यूज करते रहे, जो भी इफेक्ट और साइड इफेक्ट बताया गया है ग्रंथों में, उसके अलावा शायद ही आपको कोई और देखने को मिले। इतना ज्यादा प्रामाणिकता है इस आयुर्वेद की।
0: जी, तो ये तो आपने बताया कि 2000 साल पुरानी पद्धति बताई जाती है और आज भी रिलेवेंट है, लेकिन फिर एक सवाल जहन में उठता है,
6: बिल्कुल,
0: कि अगर आखिर ये इतनी कारगर पद्धति है और बिना नुकसान पहुंचाए इतना ज्यादा हमको फायदा देती है, स्लो प्रोसेस होता है, तो फिर आज के टाइम में ये पद्धति खोती क्यों जा रही है? आज लोग बाकी पद्धतियों की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, इससे हटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ?
6: नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं आयुर्वेद के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रीजन थे, हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो कहीं ना कहीं हम लोग वही चीज़ उपयोग करने लगे या उन्हीं चीज़ों का सेवन करने लगे जो उनके द्वारा हम पर थोपा गया। हम अपनी मूल संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें जो है मिस करते गए, खोते गए, आयुर्वेद भी उन्हीं में से है, पर हमने आयुर्वेद को पूर्णतया खो दिया ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आयुर्वेद आज भी हर घर के, हर माँ में, हर नानी में, हर दादी में आज भी जिंदा है। आप छोटी छोटी चीज, आप ठंडी में दही खाओगे तो आपके घर में कोई बुजुर्ग हुई टोक देगी, मत खाओ जुकाम हो जाएगा।
0: सही,
6: तो ये कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद जो उनके मन में जिंदा है ना, वही उनसे कहलवाता है, कुछ अलग सा नहीं है ये।
0: बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि लोग जिसे प्रेफर करते हैं डॉक्टर के पास फौरन जाते हैं एलोपैथ का इलाज, क्योंकि उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है। जैसा कि अभी हमारी आपकी बात भी हुई थी कि लोगों को जल्दी फायदा चाहिए होता है, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे भी बुरा असर पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च है कि जहां बताया जाता है कि अंग्रेजी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किडनी हो या बाकी ऑर्गन्स हो। लेकिन आपने कहा कि ये टाइम टेकिंग तो होता है बट बेनिफिट देता है, तो हम एक साथ ये भी चीज एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन रोगों के लिए ज्यादा बेस्ट इलाज इसमें है। हम टाइम भी दे सकते हैं और बाद में हो सकता है ये पूरी तरह से सही भी कर दें।
6: देखो, इसको मैं दो तीन तरीके से आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट एलोपैथ या जो भी है, जिस भी पैथी, हर पैथी में होता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है और आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने आपको एक पेन किलर दे दिया, आपको दर्द से आराम मिल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप ठीक हो गए।
0: जी,
6: आपको ठीक होने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कुछ दिन तक चलेगा वो।
0: बिल्कुल।
6: तो ये कहना कि सिर्फ आयुर्वेद ही टाइम टेकिंग है, ऐसा सही नहीं है। सारी पैथी टाइम टेकिंग है। आयुर्वेद में हम जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि दुष्परिणाम ना हो उसके। अगर आप 6 महीने दवा खाते हो, तो अगर आप घुटने का दर्द ठीक करवाने आए और किडनी भी आपकी फेल हो गई, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा किसी भी पैथी के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते, या हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो मूल पर्पज़ होता है, वो जो डिजीज़ है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको आज आराम मिला है, कल फिर से आपको वही प्रॉब्लम हो गई, या फिर से आपको आराम मिला, इलाज करवाया, 2-4-10 दिन आप ठीक रहे, फिर आपको समस्या होने लगी, वो ना हो। अगर आप एक बार ढंग से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, जो समस्या है उसका पूर्णतया समाधान हो जाए।
0: ओके, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा।
6: हर पैथी में, हर पैथी के लिए ये आवश्यक है। कोई भी पैथी ऐसा नहीं कह सकती कि वो 2 खुराक दवा में, भाई अगर किसी को बुखार आता है, वो 1 डोलो खा लेता है, उसका बुखार उतर जाता है, पर बुखार ठीक नहीं हो जाता। बुखार ठीक होने में तो जो 5-6 दिन का निश्चित टाइम हो वो लगेगा,
0: यानी एक नेचुरल टाइम तो जो लगना है वो
6: लगना लगता है। हम बुखार को कम कर सकते हैं, पर बुखार को ठीक नहीं कर सकते 1 दिन में 1 खुराक में।
0: बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही जैसे कि अभी लास्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था आपसे कि इतनी पुरानी पद्धति है, तो जैसे सभी चीज़ों में चेंज आया है, तो हम जानना चाहेंगे क्या आयुर्वेद में भी कुछ चेंजेस आए हैं, क्या टाइम टू टाइम रिसर्चेज हुई हैं, और कितनी आवश्यकता है इसमें और रिसर्चेज की?
6: अब रिसर्च की आवश्यकता, देखो रिसर्च की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है हर चीज़ में। जैसे जैसे हमारा स्वभाव बदलता है, हमारी चीज़, जैसे पहले क्या होता था कि आयुर्वेद में चूर्ण दिया जाता था, चटनी दी जाती थी, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम टेबलेट और कैप्सूल्स पे आ रहे हैं, हम जो आसो अरिस्ट है उनको भी थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोगों को लेने में सुविधा हो। आज आदमी को अगर आप 3 ग्राम चूर्ण सुबह 3 तरह का और 3 ग्राम चूर्ण रात को 3 तरह का देने की कोशिश करें, तो वो नहीं खाएगा या नहीं खा पाएगा, या उसे तमाम तरह की समस्या होगी। तो वो आदमी आजकल कैप्सूल और टैबलेट्स में ज़्यादा भरोसा करने लगा है। तो हम भी इस आयुर्वेद को धीरे धीरे करके इस तरह से मॉडर्न कर रहे हैं कि लोगों को दवाइयाँ लेने में असुविधा ना हो। वो जिस तरह से और किसी पैथी की दवाई लेता है, उसी तरह सेम उसी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सके, उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स ना हो दवाइयाँ लेने में।
0: जी, ये तो आपने कहा कि ये आप मॉडिफाइड कर रहे हैं।
6: हाँ,
0: हम जानना ही चाहेंगे कि कोई जैसे ट्रीटमेंट की जहाँ बात आती है, तो ट्रीटमेंट में भी कोई क्या फ़र्क आया है कि पहले आप दवाओं को कुछ इस तरह देखते थे, अभी कुछ अलग तरह से देखते हैं, या कुछ चीज़ों को और ऐड किया जाता है कि नहीं इसमें ये चीज़ की कमी होने पर इन चीज़ों को भी ऐड करके आफ्टर कोई रिसर्च के?
6: देखो, ट्रीटमेंट में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, मैं और नहीं कह सकता।
0: ओके,
6: पर डायग्नोसिस में फ़र्क आया है, तमाम तरह के मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ और खून की जांचें हुई, एक्सरे हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, तो डायग्नोसिस में तो डिफरेंस आया है, थोड़ा सा हम डायग्नोस करना ईजी हो गया है आज के समय में। पर ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि लगभग वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई बहुत फ़र्क नहीं आया है।
0: Okay.
6: और कारगर है, पूर्णतः कारगर है। इस विषय में मैं पूर्णतः विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही कारगर है।
0: ठीक है, ये तो आपने कहा कि बहुत ही कारगर है। एक बात जहन में बहुत टाइम से आ रही है, अब सोच रहा हूँ कि पूछ ही लूँ आपसे।
6: बिल्कुल।
0: कि आप डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई की है आयुर्वेदिक की, इसके साथ ही हमारे ही शहर में या कहीं भी चले जाइए, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे बाबा होते हैं जो इसका इलाज करते हैं, तो फिर कोई भी शख्स आपके ही पास क्यों आए?
6: हाँ बिल्कुल, ये सही सवाल आपका है। मैंने इस शुरुआत में ही इसका जवाब दिया था कि एक व्यक्ति है जो जिसने पढ़ाई की है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता, उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी एक बाध्यता है समाज के प्रति, वो गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार की नज़रों में है। ऐसे लोग जिनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दवाई या हो सकता है बहुत अच्छा इलाज करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर विश्वसनीयता के मामले में अगर मुझे इलाज कराना हो तो सामने वाले की विश्वसनीयता किस वजह से है वो मैं ढूंढना चाहूंगा।
0: कोई पैरामीटर तो होगा।
6: हाँ, जाहिर सी बात है। तो अगर वो किसी पैरामीटर्स को पूरा करता है आपके, कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज है, इसने ऐसा ऐसा किया था, कई लोग कहते हैं कि उनके दवा में बहुत फायदा है, तो वो फायदा तो मतलब कोई भी लेमैन दे सकता है, और कोई दवा अच्छी है या बुरी है उसका डिसीजन मेरे ख्याल से लेने के लिए एक योग्यता चाहिए कि किस दवा, कोई दवा फायदा करती है या कोई दवा नुकसान करती है, वो डिसीजन लेने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कोई रिसर्चर है वो बताएगा कि ये दवा खाने से फ़ायदा होता है हमें, या इस दवा खाने से तुरंत तो फ़ायदा होता है लेकिन कुछ समय के बाद में नुकसान होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर लोगों को और पहले से ज़्यादा बीमार कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पास ही आए, पर मेरे कहने का मतलब ये ज़रूर है कि वो देखे कि जिस व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रमाणिक है, वो ऐसा है कि उसकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है, वो गलत ना हो, वो ठग ना हो, वो लोगों को मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भ्रमित ना कर रहा हो।
0: करेक्ट। हाँ, और मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रीटमेंट करने वालों के साथ ही दिक्कत नहीं है, यानी ये सिर्फ ठग अगर जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इलाज करने वाले के रूप में ही नहीं बल्कि ये कंपनीज के रूप में कैसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ तेल हुआ, कुछ ऐसे चीज़ें बना बना के चूरन को, बहुत सारी ऐसी दावे किए जाते हैं कि फला बीमारी में एकदम तरीका है।
6: देखो, हमारे हम कुछ भी कहें कि आयुर्वेद हमारे यहाँ से लुप्त हो गया है या हम आयुर्वेद से दूर चले गए हैं, पर हमारे मन में, हमारे जहन में आयुर्वेद के प्रति जो एक भरोसा है ना, वो अभी भी बना हुआ है, और उस भरोसे का फ़ायदा उठाने की बहुत सारे लोग कोशिश करें। अभी दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तीन दिन पहले, कि कम से कम 30-40 ऐसी दवाइयाँ थी जिनको सरकार ने बैन किया, नुकसान वो मतलब प्रतिबंधित चीज़ों को मिक्स करके दवाइयाँ बना रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी पढ़े, जैसे आपका सवाल था कि आपके पास ही क्यों आए, तो मेरे पास अगर कोई आएगा और मैं कोई दवा किसी पेशेंट को लिखूंगा तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में जानता हूं कि नहीं जानता हूं। तो कोई डॉक्टर या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपको कोई दवाई देगा तो वो ज़रूर उसकी
0: जांच कर लेगा
6: कि वो कितना अच्छी है, कैसे है, आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, क्या है। कोई भी डॉक्टर गलत दवा नहीं लिखेगा, वो किसी भी पैथी का हो।
0: जी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो बाकी अदर जिनकी बात हमने की, वैद्य जो बाबा कहलाते हैं, वो आप करताल तो नहीं करते हैं, वो सबको बस एक कॉमन दवा उठा के दे देते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम होती है। हो सकता हो हम और आप एक ही चीज़ के पेशेंट हो लेकिन बॉडी टाइप अलग होता है, हो सकता है एक के साथ हमारे साथ दूसरी बीमारी हो, तो उसके लिहाज से दवा थोड़ा सा और चेंज होनी चाहिए।
6: मैं इस विषय में थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि आयुर्वेद में तो ये कहा जाता है कि अगर किसी को फीवर है तो फीवर के तीन कॉज होते हैं, तीन सिम्टम्स होते हैं, मूलतया तीन दोष बताए जाते हैं, वात और पित्त और कफ आयुर्वेद में। तो फीवर भी वातज हो सकता है, पित्तज हो सकता है, कफज हो सकता है, और तीनों का डिफरेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब अगर वातज फीवर है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कफज में नहीं होगा, और जो कफज फीवर है उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो वातज में नहीं होगा। तो सभी को एक तरह की दवाई देके ठीक करना ये आयुर्वेद में संभव नहीं है।
0: जी,
6: अगर सभी को एक दवा बता दी जाए कि ये दवाई है, ये सारे बुखार में काम करती, तो ऐसा आयुर्वेद में संभव नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी को बहुत बारीकी से परख कर देख कर तभी उसका इलाज किया जाता है।
0: जी, जैसे बाकी अदर पैथीज में भी होता है। हाँ, और ये एक सही तरीका भी है।
6: बिल्कुल
0: बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बता दें हमारे श्रोताओं को कि ये वायु पित्त कफ होता क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग।
6: आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ये तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और इन तीनों से ही हमारे शरीर की रचना होती है। अगर ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, जितना शरीर में होना चाहिए, तो हम आरोग्य होते हैं, और अगर इनमें विषमता आ जाती, जितना होना चाहिए उससे घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो उसी स्थिति को बीमारी कहते हैं।
0: ओके,
6: इन तीनों की विषमता ही बीमारी है।
0: जी, तो आपने कहा कि अगर जैसे ये बैलेंस अगर है तब तो ठीक है, अगर इससे घटे या इससे बढ़े तो फिर दिक्कत आती है।
6: बिल्कुल,
0: और फिर ट्रीटमेंट के लिए इंसान आता है।
6: हाँ।
0: इसी के साथ, चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया है, आएंगे तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक जीवन कैसा होना चाहिए किसी भी मनुष्य का, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है। लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गोधुली। नाउ यू लिसनिंग ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से। सर, जाने से पहले अभी हमने आपसे और श्रोताओं से ये कहा था कि आने के बाद हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इस विषय में विस्तार से हमारे श्रोताओं से बताइए।
4: हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा और मुझे इस बारे में तो जरूर ही बात करनी चाहिए अगर हम आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
4: देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद कहता है कि जो हमारे तीन दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, इनका साम्य होना जरूरी है। और इनको साम्य अवस्था में रखने के लिए मुख्य रूप से दो तीन चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। पहला तो होता है आहार, हम भोजन क्या करते हैं। दूसरा होता है विहार। विहार का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी दैनिक क्रियाकलाप क्या है
0: जी।
4: सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, व्यायाम, सब कुछ विहार में आता है। और तीसरा होता है हमारी मानसिक अवस्था, हम कैसे हैं, हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हम कैसे हैं। ये तीनों चीज़ जो है आपके दोषों को साम्य अवस्था में रखने में मदद करते। तो सबसे पहले हम आते हैं आहार पे। जो हमारा आहार, हमारा भोजन है, कुछ चीज़ें हैं जो वात बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पित्त बढ़ाती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कफ को बढ़ाती हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कफ प्रकोपित है और वो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करेगा तो उसको बीमारी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सॉरी, जोड़ना चाहूँगा कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत ये भी है, आयुर्वेद ये भी कहता है कि जो भी शरीर में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसका मुख्य अधिष्ठान होता है हमारी अग्नि, हमारा पेट, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है। कहते हैं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है तो ही आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, तो ही आपकी हड्डियाँ कमजोर होंगी, या तो ही आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कार्डियक्स, मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेट है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो मुख्य केंद्र है हमें स्वस्थ रखने का। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें किस समय क्या भोजन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम रात को दही खाते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, या रात को हम बहुत हैवी डाइट लेते हैं, या रात को हम बहुत देर से खाते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। रात को हमेशा सुपाच्य और हल्का भोजन लेना चाहिए। दिन में, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आयुर्वेद की ब्रेकफास्ट जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। दोपहर, सुबह का भोजन और शाम का भोजन।
0: अच्छा, दो ही भोजन की बात,
4: दो भोजन की बात। और जो शाम का भोजन है उसका समय 5 से 6 बजे के सूर्यास्त से पहले होना चाहिए।
0: ओके,
4: मतलब देर रात को खाने जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब हम सुबह भोजन करते हैं, 8-9 बजे हमने खाना खाया और 5-6 बजे फिर हमने खाना खा लिया। रात को हम लिक्विड पानी, दूध या कुछ ऐसा ले सकते हैं। यही चीज, मतलब 80% समस्याएं तो मुझे लगता है यही चीज समाप्त कर देती है। दूसरा, हम भोजन में क्या खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बताएं कि घी, कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो तलने वाली चीज़ें बनाई जाती थी कुछ समय पहले, आज के बहुत ज़्यादा पहले नहीं, मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले, वो देसी घी में ही बनती थी या सरसों के तेल में बनती थी
0: जी।
4: देसी घी एक ऐसी चीज़ है, आप कभी अपने घर पर भी अजमा के देख सकते हैं कि एक दिन आप रिफाइंड या डालडा से पूड़ी बना के खाएं, आप देखेंगे आपको इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, सारी समस्या होगी। दूसरे दिन वही पूड़ी आप देसी घी में बनाकर खाएं, आप देखेंगे आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी और आपका डाइजेशन पहले से अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि घी जो है वो पित्त शामक और अग्निवर्धक है, यानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला है। आप कभी भी आपको एसिडिटी हो रही है, आप थोड़ा सा घी खा के देखो, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि चिकित्सा जो है वो करने के लिए कुछ अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो भोजन है वही हमारी चिकित्सा है। हमें कब खाना है और क्या खाना है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें चिकित्सा के लिए कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। बिहार जैसे हुआ, बिहार में जैसे कहते हैं कफ वृद्धि, अगर कोई व्यक्ति है वो भोजन करने के तुरंत बाद सो जाता है दिन में, तो उसको इनडाइजेशन हो जाएगा। उठने के बाद उसका पेट भारी भारी रहेगा, सर दर्द होगा, थोड़ा सा सर भारी भारी सा रहेगा, क्योंकि दिन में सोने से कफ प्रकोपित होता है। कफ प्रकोपित होगा तो अग्नि को मंद करेगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा उसको। अगर कोई आदमी रात्रि जागरण करता है उससे क्या होता है, वात प्रकोपित होता है। आप स्वयं पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप एक रात पूरी रात जागो, आप देखो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पैरों में दर्द होगा, सर भारी भारी सा रहेगा, शरीर में झंझनाहट सी होगी, आपका पूरा मतलब वात के जितने शरीर में ड्राइनेस हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोचो कि अगर आप रात को जागते हैं तो आप सुबह अपने शरीर में ड्राइनेस फील कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि आयुर्वेद में जो भी सिम्टम्स और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन पे बहुत गहरी रिसर्च की गई है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनको सुन के या थोड़ा सा जान के बता, हमारे शरीर के बारे में बहुत गहरी रिसर्च करके तभी हमारे आहार और विहार का निर्धारण किया गया है। आयुर्वेद में दिन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों बताया गया है। ये भी बताया गया है कि किस ऋतु में किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में लगभग सभी का डाइजेशन वीक हो जाता है, पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों को गैस्ट्राइटिस जैसे होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में आयुर्वेद के अनुसार हमें हल्का भोजन लेना चाहिए। लेकिन हमारा चूंकि अब ऐसा समय हो गया कि सबके पास स्टोर होता है सारा राशन, पहले समय होता था कि लोग खेत से पैदा होता था वही खाते थे, अब क्या है कि हमारे पास सब कुछ स्टोर होता है, दाल है, चावल है, आटा है, सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो हमारा जो भोजन है वो एक रूटीन बन गया, दाल चावल रोटी सब्जी हम परमानेंट खाते हैं, या पूड़ी पराठा जो भी हम खाते हैं अभी वो परमानेंट खाते हैं। इस वजह से हमें हमारी पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी। पाइल्स जो है, लोग पाइल्स का, मुझे बहुत सारे लोग मिले कि सर हम पाइल्स की दवा खा रहे हैं लेकिन पाइल्स ठीक नहीं हो रहा। पाइल्स अलग से कोई बीमारी नहीं है, पाइल्स इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाला बदलाव है शरीर का, ये कह सकते हैं हम। मतलब अगर आपका डाइजेशन फिट है तो कभी पाइल्स जैसी समस्या नहीं होगी। अगर आपका डाइजेशन फिट है तो शायद ही घुटनों का दर्द हो। अगर आपका डाइजेशन फिट है, माइग्रेन जैसी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, ये सारी समस्या अपने आप ही धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी अगर आपका डाइजेशन फिट है तो।
5: जी, तो मतलब आपने ये बताया कि एक तो खाने का वक्त निर्धारित होना चाहिए,
4: बिल्कुल।
5: दूसरी चीज है जैसे विहार के बारे में आपने बताया,
4: बिल्कुल, कि जैसे व्यायाम जैसे है, व्यायाम के बारे में हम आज के समय में हम जिम जाते हैं, परमानेंट एक्सरसाइज करते हैं, खूब अच्छे से करते हैं, पर आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें सर्दियों में, जो सर्दी का मौसम है, उसमें खूब अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब हमारी शक्ति का आधा, जितना हमारी टोटल शक्ति है उसकी आधी शक्ति हमें व्यायाम में खर्च कर सकते हैं हम सर्दियों के महीने में। गर्मियों में अपने शक्ति का एक चौथाई हम खर्च कर सकते हैं व्यायाम में, और बारिश में हमें बिल्कुल व्यायाम नहीं करना चाहिए, कोई भी बहुत हैवी एक्सरसाइज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि मंद होती है। अगर हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे हमें ज़्यादा भूख लगेगी, लेकिन हमारी अग्नि डाइजेशन वीक है, हम उतना जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें समस्या उत्पन्न होने लगेगी।
5: वाह, मतलब सीजन भी आपको ध्यान, कौन से सीजन में कितना क्या करना है,
4: क्या खाना है, क्या करना है, दोनों चीज़ें।
5: और आपके अकॉर्डिंग आपने कहा कि अगर इन चीज़ों को समय अनुसार कर लिया जाए तो 80% बीमारियां तो वैसी दूर हो जाएंगी।
4: मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम अपने खाने पे ध्यान रख लें, अपने डाइजेशन पे, तो 80% बीमारियां दूर हो जाएंगी, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। समय से खाएं और उचित, जो हमारे लिए उचित है वो खाएं। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा
5: जी,
4: कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे खाने के लिए क्या उचित है, हर व्यक्ति को पता है कि उसे क्या नुकसान करता है और क्या उसके लिए उचित है। हम जानबूझ के नुकसान करने वाली चीज़ें स्वाद के लिए खाते हैं। किसी आप पूछ लो कि आपके लिए क्या नुकसानदायक है, वो सारी चीज़ें बता सकता है, क्योंकि हमारे मूल से आयुर्वेद जुड़ा हुआ है। ये भी एक एग्जांपल है कि आयुर्वेद से हम अलग नहीं हो पाए आज तक भी।
5: सही बात है। हाँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वाद और स्वास्थ्य में कई लोग स्वाद को प्रायोरिटी देते हैं तो कई लोग स्वास्थ्य को देते हैं।
4: बिल्कुल।
5: और उसका परिणाम सामने दिखने को आ ही जाता
4: बिल्कुल,
5: है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
5: डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम बात होती है फूड कॉम्बिनेशन की, कि क्या खाना है, किस चीज़ के साथ क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जब एक साथ दो ऐसी चीज़ों को खाया जाता है जो विषम होती है, तो उससे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है।
4: बिल्कुल।
5: उसके बारे में
4: बिल्कुल मैं बताऊंगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे उसको आयुर्वेद में कहा गया विरुद्ध आहार, मतलब दो चीज़ें ऐसी जिनको साथ में मिला के खाने से आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होगा, उन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे शहद और घृत, ये दोनों हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, पर अगर दोनों को सम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके खाया जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक है, जहर जैसे होता है, मतलब एलर्जिक होती है। मछली और दूध या दूध में नमक, ये विरुद्ध आहार है। और हम कह सकते हैं कबूतर का मांस सरसों के तेल में, इसे विरुद्ध आहार बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। शराब पीने के बाद में दूध पीना विरुद्ध आहार बताया गया है। बहुत लोग कच्चे अंडे को दूध में मिला के खाते हैं, ये भी विरुद्ध आहार है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है। कुछ चीज़ों को हम आज के समय में पालन कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ों से दूर रह सकते हैं और कुछ चीज़ों से नहीं रह सकते हैं।
5: जैसे
4: पनीर, अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखा जाए तो पनीर भी विरुद्ध आहार है।
5: किसके साथ?
4: पनीर की सब्जी।
5: ओके।
4: विरुद्ध आहार है लेकिन हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन पनीर हम खा सकते हैं पर उसकी सब्जी बना के नहीं खा सकते, कच्चा पनीर हम खा सकते हैं।
5: अच्छा, लेकिन इसमें भी क्या डॉक्टर साहब कुछ कम और ज्यादा का है? जैसे एक चीज तो है कि कुछ भी आपने एक बार में लिया तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया, पनीर का आपने एग्जांपल दिया, तो क्या मतलब कुछ चीजें चलाऊ हो जाती है क्या?
4: ऐसा नहीं है, विरुद्ध आहार जो भी है वो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत खाओगे जानलेवा हो जाएगी
5: जी,
4: पर आप लंबे समय तक जब उसका उपयोग करेंगे तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। लंबे समय जब आप उसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो आपको उसका दुष्प्रभाव दिखना चालू होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक डोज लेंगे और आपको समस्या होने लगेगी।
5: ओके, यानी टाइम टेकिंग ये भी है।
4: हाँ हाँ बिल्कुल, लंबे समय तक जब आप विरुद्ध आहार का सेवन करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी, बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी
5: जी। तो हमारे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ये विरुद्ध आहार के बारे में जानकारी मिल के उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी बातें, और ये बहुत ही अहम बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी कड़ी में अभी एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, कि जैसे कि हमने देखा है कि एलोपैथ में भी लोग यह करते हैं कि ज़रा सा बुखार आता है तो कुछ दो चार ऐसी गिना चुना दवाएँ हैं जो जाके ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से। आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकान होती है जहाँ आदमी जाके चूर्ण, कोई ऑयल या कोई ऐसे पेय पदार्थ होता है वो ले लेता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं और उनको लगता है ये बता दिया जाता है कि ये चीज़ फ़ायदा करेगी ले लेते हैं, तो ये कितना इस चीज़ को आप सही मानते हैं?
4: देखो, आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं हमेशा के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, हर घर में लगभग हर आदमी जानता है आंवला, आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। पर एक चीज़ और है कि अगर किसी को अंग्रेजी में, हिंदी में सफ़ेद दाग कहते हैं, अगर किसी को सफ़ेद दाग है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए। किसी की अग्नि जो है बहुत मंद है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए, आंवला पित्त शामक होता है और पित्त की कमी से की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं अगर आंवला आप ज़्यादा लेंगे तो बढ़ जाएंगी। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप अगर ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो आपको नुकसान करेगी। आपको एसिडिटी है, आप दही खाएंगे आपको नुकसान करेगा। आप हाई ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाते, जैसे आप नमक खाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है कि आपको सलाह जो जरूर लेनी चाहिए डॉक्टर से। आपको अभी फीवर आया रात में, इमरजेंसी, आपने एक डोलो खा लिया, ठीक है, पर डोलो के स्ट्रिप पे देखो आप, उस पे लिखा हुआ है कि इंजीरियस टू हेल्थ।
5: जी जी,
4: इंजीरियस टू हेल्थ मतलब कोई भी आप बुखार की दवा खाते हैं तो उस पे लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ या इंजीरियस टू लीवर, कुछ भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के
5: प्रिस्क्रिप्शन के
4: नहीं लेना चाहिए, कुछ भी, कोई भी दवा आप ले रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है तो लोगों को लगता है कि हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों जैसा ही है, पर कई बार वो चीज़ें नुकसान भी करती हैं।
5: यानी सलाह बहुत ज़रूरी है।
4: बिल्कुल, बिना सलाह के कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए।
5: कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, चूंकि अब हमारे आपके चलने का वक्त भी हो चला है।
4: बिल्कुल।
5: लेकिन जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाहेंगे कि आप बैठे हैं स्टैम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है।
4: बिल्कुल।
5: तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि जिस तरह के प्रोग्राम हम प्रसारित कर या इसके आने से गोंडा में कितना चेंज होने वाला है, इसको सुनने के बाद जो लोग सुनते हैं उनके जिंदगी में कितना चेंजेस आएंगे?
4: जैसा कि पहले मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं अपने गांव से अपने घर से काफ़ी गहरा जुड़ाव मेरा रहा, तो जब पहली बार एफएम चालू हुआ ये, तो उस समय मैं दिल्ली में था, मेरे किसी मित्र ने बताया कि अपने गोंडा में भी एफएम चालू हुआ है। तो जब मैंने पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड किया इसका, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और सुना, तो मुझे बड़ा जुड़ाव महसूस हुआ, बड़ा अपनापन सा लगा। ऐसा नहीं लगा, नॉर्मली हम कार में चलते हैं किसी शहर में हैं तो वहाँ एफएम बजता रहता है, तो हम एफएम गाने सुनने के लिए लगाते हैं, पर जब हम ज्ञानस्थली को प्ले करते हैं और ख़ास करके जब हम गोंडा से बाहर हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में आ गए हैं, अपने शहर से जुड़ गए हैं।
5: क्या बात है, तो वो एहसास कराता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, अपनेपन का एहसास कराता है।
5: क्या बात है, और पहली बार इस तरह का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई। हर गेस्ट आते हैं, उनकी अपनी एक राय होती है, आपका ये है कि जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब स्पेशली आप बाहर होते हैं, ये बहुत अच्छा मुझे लगा जान के। और हमारी कोशिश भी है कि हमेशा लोग इससे जुड़े रहें और हम ऐसे ही जनहित की जानकारी हमेशा इस तरह देते रहें कि लोगों में एक जागरूकता आए, एक ऐसा मंच हो जहाँ पे एक पसमानदा समाज आए, जहाँ पे हम एक दूसरे से बातचीत करें और बहुत सारी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारी हमेशा की कोशिश रहेगी। आप डॉक्टर साहब आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमने आपके जीवन के बारे में बात की, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, और साथ ही आयुर्वेद से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी हमने बातचीत की, न जाने कितने सारे हमने आपसे प्रश्न किए, जिसका आपने बखूबी उत्तर सरलता व सहजता के साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: अदलान जी, मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी मीठी आवाज़ रेडियो पे अक्सर सुनते रहते हैं, मुझे कभी नहीं लगा था कि जब पहली बार मैंने सुना आपकी आवाज़ रेडियो पे, लगा था कि हम आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे, आज मुझे बात करके बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि आपकी आवाज़ रेडियो पे जितनी मीठी है वास्तव में भी उतनी ही मीठी है, कोई फ़र्क नहीं है।
5: बिल्कुल, लेकिन इसका हम कोई दवा नहीं बताने वाले।
4: थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो शुगर और बढ़ जाएगा।
5: लेकिन हम बता दें कि हम भी जो इस्तेमाल करते हैं वो आयुर्वेद की ही दवा है, जो कि नुकसान नहीं करने वाली।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: तो वो बस सीधा सा प्रेम है और कुछ नहीं है आप सभी लोगों का। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जनहित की बात हमारी हुई, लोगों को बहुत फायदा इससे जरूर होगा। जो भी हमारे श्रोतागण इस वक्त सुन रहे हैं वो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो न जाने कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीने की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।
4: थैंक यू
5: सो मच। अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हम सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनसे जुड़ी हुई कई बातें करेंगे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
9: गोंडा शहर की धड़कन।
10: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
11: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
10: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
11: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
10: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
11: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
12: अरे सुना?
13: क्या?
12: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
13: वाओ!
12: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
14: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
15: इसको तुरंत अल्टस किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
16: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें अल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

देखिए गलियां किसी की भी हों, कहीं भी जाएं, पर हम सभी को पता है कि जब गलियों में मौसम सुहाना हो जाता है तो वो गलियां अच्छी लगने लगती हैं। तो वो चाहे बारिश वाली गलियां हों, चाहे वो ठंडाई वाली गलियां हों। सो लेट्स एंजॉय द इवनिंग। गोंडा मैसे मसाला आरजे बिना वाला आप सुन रहे हैं अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 93.9।

0: बारिश ने तो आज दिल खुश कर दिया, और इसी के साथ साथ भाई इलेक्शन के नतीजे भी आ चुके हैं, और भाई आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिसने जिस भी मतलब पार्टी को सपोर्ट किया उसको बहुत सारी मुबारकबाद। और देखिए सबने अपना अपना प्रदर्शन अच्छा किया, और देखिए हार जीत तो लगी रहती है, हर बार हर कोई जीत नहीं सकता और हर बार हर कोई हार नहीं सकता है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए हमें देखिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को ऐसे ही मतलब देख के मतलब कह सकते हैं, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और मैं तो ये जानती हूँ कि हर जैसे अगर मैदान में खिलाड़ी हैं तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए उसको अपनी प्रेजेंटेशन देने का। तो चलिए अब जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ ने रिजल्ट्स बड़े ही अलग अलग हैं, और किसी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे, किसी को थोड़े ख़तरनाक लग रहे होंगे, किसी ने नहीं उम्मीद की होगी कि ऐसा रिजल्ट आएगा। पर चलिए जो भी आया है हमारे लिए तो बस ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में जो भी हो सब बढ़िया हो, ठीक है। बढ़िया मतलब कि डेवलपमेंट। इंसान अगर लोकतंत्र का हिस्सा है तो वो हमेशा से ये उम्मीद करता है कि वो उसके देश के लिए कुछ अच्छा करे, ठीक
1: है।
0: तो चलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पार्टीज जो जीत चुकी हैं। एंड हमारे लिए तो सभी विनर्स हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि खिलाड़ी हमेशा से विनर होता है, तो हम खेले या ना खेले उस बात पे ये बात बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती कि हम नहीं जीते तो क्या हो गया, हम खेले ना ये इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले तो आज का सुहाना मौसम सबको परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पर हाँ, साथ ही में बहुत सारे पेड़ वगैरह भी गिरे हैं। और सबसे पहले तो हिदायत ये देना चाहूँगी मैं आप सभी को कि जब मौसम थोड़ा ख़राब हुआ करे ना, तो थोड़ा आप लोग घर से जब बहुत मैंडेटरी हो या बहुत आप कहें कि हाँ अब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमको जाना ही पड़ेगा, तो ही आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ आप अवॉइड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए और हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आज मंडे है, मंडे मींस आज बहुत सारी बातें होंगी, बातों के साथ साथ आप लोगों के साथ हम लोग आज खास एक्ट्रेस का नाम आपके सामने उनकी बात करेंगे, और एक्ट्रेस का नाम है त्रिशा कृष्णन, जिन्हें साउथ क्वीन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो आज उनका बर्थडे है, सो वेरी हैप्पी बर्थडे त्रिशा। सो त्रिशा के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूँ आप लोग को, और थोड़ा सा रूबरू करा दूँ कि आपने कहाँ देखा होगा त्रिशा को। अगर हम बात करें त्रिशा कृष्णन की, तो आपने अगर अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी जिसका नाम है वही वही वही टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी, तो टिचकुले में जो एक्ट्रेस थी वो त्रिशा कृष्णन है। एंड अगर बात करें तो बहुत ही डिसेंट एक्ट्रेस में से एक है वो, और मैं सच्ची बताऊं तो हम लोग को चाहिए कि ऐसे एक्ट्रेसेस को सपोर्ट करें, और हमारे सपोर्ट मीन्स कि उनकी मूवीज़ को अप्रिशिएट करें। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि त्रिशा जो हैं वो भारतीय जो कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में इनकी अपनी पहचान है। सबसे पहले इन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया, दक्षिण भारत के सिनेमा में काम करना शुरू किया, इसके बाद इन्होंने अपना करियर जो है उसको गढ़ दिया है। चेन्नई में जन्मी जो त्रिशा हैं ये मिस चेन्नई भी बनी है, इनकी खूबसूरती इनकी पहचान है। और इसमें तमिल में इन्होंने फिल्म की है सामी गिल्ली, और तेलुगू में इनकी वर्षम फिल्म में काफ़ी ज़्यादा सफलता इनको मिली है। और त्रिशा को खट्टा मीठा में यानी कि टिचकुले एंड टिचकुले वाली मूवी में देखा है, और काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग थी, मुझे इस मूवी में ये बहुत प्यारी लगी। और हैप्पी वेरी वेरी बर्थडे टू यू। एंड

आपकी फिल्म का गाना सुना देते हैं। गाना सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आपके लिए और त्रिशा के लिए। तो देखते हैं कौन कौन लाइव हो गया हमारे साथ, एंड इट इज वेरी डिसेंट टाइम टू डिस्कस। वेरी गुड इवनिंग सबलू जी, वेरी गुड इवनिंग दीपक, रोशनी, सभी का स्वागत है। और आज की शाम में करते हैं बहुत सारी बातें और सुनेंगे आपसे बहुत सारी चीज़ें।

जागे सारी सारी रतियाँ। सो वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। और रतियाँ हो या शाम हो, बतिया तो हम लोग हर समय करते रहते हैं और बातें बनाने में तो हम सभी एक्सपर्ट हैं। लेकिन बातों के साथ आपको ये बताना तो मैं भूल ही गई कि आज हाँ आप लोगों से कुछ ना कुछ सुनूंगी, लेकिन क्यों ना थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए। आज कॉलिंग शो गाने बहुत गा लिए आपने, लेकिन अपने मन से गा लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज कुछ अलग आप लोगों से सुना जाए और सुनाया भी जाए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मानसून जैसा फीलिंग आ रही है, पर अभी मानसून आया नहीं है। पर हाँ, इस बार ये साल हमें शुरू से लेके अभी तक मतलब एक से एक कहते हैं ना, शौक पे शौक देता जा रहा है, ठीक है ना। और मैं जब बात करती हूँ कि जब शौक की बात आती है ना, तो हम लोग सबसे पहले तो अपने कुछ खास खास चीज़ों को सोचने लगते हैं कि भाई अभी तो वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति चल रही है यार, लग रहा है कि लड़ाइयाँ हो जाएंगी। इसके अलावा हम अगर बात करें मौसम की, तो मौसम भी हमें बार बार मतलब स्ट्रेंज फीलिंग दिला रहा है। कभी कभी लगता है कि यार इस बार गर्मी कम पड़ेगी, और कभी कभी लगता है कि गर्मी इतनी पड़ेगी कि हम लोग तवे पे फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। अभी जल्दी हम लोगों ने लेबर्स डे मनाया, लेबर्स डे पे भी बहुत सारे लोग बहुत खुश थे, सबने एक दूसरे की हेल्प की। लेकिन उसी बीच बीच में कुछ ख़राब न्यूज़ भी आ जाती है, कहीं कोई मतलब क्रूज़ एक्सीडेंट हो जाता है, और कहीं कुछ कहीं कुछ। देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही चलता रहेगा, लेकिन उनके बीच में हमें अपने जो थॉट्स हैं उनको स्टेबल करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें क्या करती है ना, हम लोग को थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का कर देती हैं। और अभी आज का मौसम तो इतना अच्छा था मॉर्निंग में कि बहुत इन्जॉय भी किया, लेकिन इन्जॉय करने के साथ साथ ये ख़तरनाक मौसम भी था, क्योंकि पेड़ बहुत जगह गिरे हैं और पेड़ गिरने की वजह से बहुत जगह दुर्घटनाएँ भी हुई हैं। तो थोड़ा सा हम लोग सेंसिबल बन के रहें और कोशिश हो ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकले, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। और कल थी, कल का डे बहुत ही ख़ास था। अब आप पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि कल था लाफ्टर्स डे और मैं तो थी नहीं, तो मैंने सोचा आज ही आपको हंसा दिया जाए। और हंसाने के मामले में आरजे बीना थोड़ा मतलब बहुत आप लोग की तरह तो फास्ट एंड वो नहीं है, बट हाँ मैं ये मानती हूँ कि हंसने के लिए वजह ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आसपास नज़रें दौड़ाएंगे, आपको कुछ ना कुछ मुस्कुराने की वजह ज़रूर देके जाएगा। एंड हैप्पी लाफ्टर्स डे टू यू ऑल। आप सभी को मुस्कुराने के लिए हर दिन मिले और हर दिन आप मुस्कुराते रहे। एंड स्पेसिफिकली मैं यही कहूँगी कि आज की बात करूँ तो आज भी खास दिन है, और आज कोल माइनर्स डे है, तो स्पेशल बात मैं करूँगी आज लाफ्टर्स डे की, कि आज क्यों ना आज थोड़ी हास्य कविताएं आप लोग सुना दें। और गाना भी होगा तो आपका फ़नी गाना होना चाहिए, जैसे एगो चतुर नार बड़ी होशियार और बम बम बोले मस्ती में डोले। तो मैं चाहती हूँ कि आज ऐसे गाने आप लोग सुनाएं जो सिर्फ हंसी और मजाक से भरे हों। तो सबसे पहले मैं ही शुरुआत कर देती हूँ, और शुरुआत में सबसे पहले मैं आज फ़नी कविता से शुरुआत करूँगी। और फ़नी कविता की जब बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी कविताएं हैं जो हमेशा हरदम घूमती ही रहती हैं, हरदम। और बचपन में अगर हम लोग जाएं तो हम लोगों ने ये वाली तो सुनी होगी, सोनू की गुड़िया की शादी, कितने सारे चले बराती, दूल्हे राजा है मुस्काते, मन ही मन मुस्काते जाते। इसके अलावा अगर हंसने वाली कहानी की बात करूँ तो आपने ये वाली कहानी सुनी होगी, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। सो अगर हमारी लाइफ में कविताओं की बात करें तो कविताएं पढ़ के ही हम लोग बड़े हुए हैं। तो सबसे पहले एक हास्य कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कहते हैं कि लस्सी मक्खी मारती, पेप्सी की है धूम। लस्सी मक्खी मारती, पेप्सी की है धूम, कुल्हड़ के दिन लद गए, अब बोतल को लो चूम। अब बोतल को लो चूम, चढ़ा गर्मी का पारा, बोतल पकड़े हाथ घूमती दत्ता लारा। मुन्ना नाक सिकोड़ कह रही मैडम जस्सी, पेप्सी देना एक उठा लो ये लस्सी। सो गर्मी है तो गर्मी में सबसे पहले मेरी यही हास्य कविता निकलती है, और आप लोगों से भी बोलूँगी कि कोई फ़नी गाना सुना दें एंड आज की शाम में थोड़े ठहाके लगा दें। यू नो, हंसने के लिए मतलब
बहुत सारे रीज़न अगर आप ढूंढें तो आपको मिल जाएंगे। एंड सबसे पहले तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी कविता याद आती है, खास तौर पे अभी चुनाव भी चल रहा है और चुनाव की लहर हर जगह है, और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भाई विजय जी तो छा गए हैं। और विजय को कौन कौन सपोर्ट कर रहा था? वैसे मैं तो विजय की मूवीज़ देख देख के ही दीवानी हूँ विजय को मूवीज़ के लिए सपोर्ट कर रही थी। आप लोग बताइए, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे? सब लोग अपना अपना सपोर्ट बताइए कि आप लोग केरल में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में किसको, और पुणे में, पुणे कह रही हूँ यार मैं भी ना एकदम, पुदुचेरी में किसको सपोर्ट कर रहे थे? तो जितने ये चारों जगह मतलब चुनाव हुआ है और इन चारों जगह में आप किसको किसको सपोर्ट कर रहे थे, अपना अपना सपोर्ट ज़रा लिख के भेजिए, मैं भी देखूँ कि कौन किसका किसका सपोर्टर है। फिलहाल इसको हम अन्यथा नहीं लेंगे, बस हंसी मजाक के लिए लेंगे, क्योंकि अब देखिए जब बात आती है इलेक्शंस की तो इलेक्शंस को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हम लोग करते हैं, पर स्पेसिफिकली यार जो जो भी जैसे भी जीता जीत गया, बात ख़त्म। हम लोग को क्या है, हम लोग को बस अपने वोट्स जो हैं सही जगह देने हैं, वोट्स दे के ही हम लोग कुछ ना कुछ मतलब अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के हिस्से हैं। और अगर हम सब एकजुट होके वोटिंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी मतलब जो जस्टिस नहीं होगा लोकतंत्र के साथ। तो आगे बात करते हुए मैं चलूँगी चुनाव की ओर, थोड़ी सी चोट देने कि हार गए थे लग गए इलेक्शन में चोट, हार गए थे लग गई थी इलेक्शन में चोट, अपना अपना भाग्य है वोटर का क्या खोट। ध्यान से सुनिए, वोटर को कुछ मत कहिएगा। हार गए थे लग गई इलेक्शन में चोट, अपना अपना भाग्य है भाई और वोटर का क्या खोट, वोटर का क्या खोट। जमानत जब्त हो गई उस दिन से ही लाला जी को सख्त हो गई, कह काका कभी बर्राते हैं सोते सोते, रोज रात ले हिचकिया, रोज रात ले हिचकिया करें रोते रोते। भाई हिचकियां तो आ ही जाएंगी, और खास तौर पे जब कोई हारता है तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं हारा कैसे। और बंटी जी आ गए हैं, लिखते हैं कि शाम हुई तो सोचा चलो जिम जाएंगे, सेहत बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, पर तभी रास्ते में गोलगप्पे वाला मिल गया, अब कल से पक्का डाइट पर हम आएंगे। शुभ संध्या सभी श्रोतागणों को। ये बात सही है यार, जब कुछ अच्छा करने का सोचो ना तो खराब चीज़ आके आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, पर उसी समय हमारे जो कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन का ये परीक्षा हो जाती है कि हम अपने जो कहते हैं ना विचार को लेके कितने पक्के हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं गोरखपुर से, कैसे हैं अनिल जी? तो आज अगर आप लोग को कुछ सुनाना है तो स्पेसिफिकली आप सुनाएंगे लाफ्टर्स डे पे, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराने के लिए, मुस्कुराने वालों के लिए ही आपको कुछ सुनाना है। हाँ बिल्कुल, खूबसूरती मन में, खूबसूरती मन की हो तो चेहरे पर नूर आता है। क्या बात है, खूबसूरती मन की हो तो चेहरे पर नूर आता है, आपकी बातों से काम करने का नया सुरूर आता है। अरे बाप रे क्या है। तो चलिए, आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, और इसी के साथ मुझे आपको कुछ अच्छा सा सुनाने का इरादा है। लेट्स एंजॉय, आप सभी के साथ ये शाम बहुत ही प्यारी है, एंड हंसते मुस्कुराते इंजॉय करते हुए चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: यहाँ पे छुप जाओ।
1: अरे अंधेरे में मुझे डर लगता है, आ जाओ ना।
0: अरे कुछ नहीं होगा, मेरी बात।
2: तो भाई फ़नी गाने की जब बात हो रही है और फ़नी फ़नी बातें हो रही हैं, तो मैं क्यों ना आप लोग को कुछ सुना दूं। और देखिए मैं चाहती हूँ ना कि हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग आज की शाम को एंजॉय करें, पर क्या करें, आज मुस्कुराहट के लिए मुझे थोड़े से गोलगप्पे खाने पड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हंसी के गोलगप्पे जहाँ भी देखें, जहाँ भी मिलें वहाँ खा लेने चाहिए और एंजॉय साथ ही कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अगेन मैं कल के बिहाव पे आप लोग को वर्ल्ड लाफ्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। एंड यस, आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ, और गाना आप लोग को गेस करना है। वैसे मैं सुनाऊंगी तभी आप लोग गेस कर लेंगे। कविता तो लिखता हूँ पर फिलहाल हास्य पर अभी तक नहीं लिखी। दो पंक्तियाँ तेज नारायण जी लिख के दिखा दीजिए ना, कोशिश करेंगे तो क्यों, हार मिलेगी आपको। खूबसूरती जैसे कहते हैं ना कि मन में दिखती है, वैसे ही अगर आप चाहें तो आपकी कलम में बहुत कुछ है। तो गुड इवनिंग सविता जी हमारे साथ हैं। एंड यस, गाना सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए कौन सा गाना मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोग को, कोशिश करेंगी। मेरे को वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, पर हाँ आज लाफ्टर्स डे की बात कर रही हूँ तो उसी के भी हाफ पे सुनाना चाहती हूँ। आप लोग गेस करिए कौन सा गाना है।

अच्छा एक बार की बात है ना, गाना तो सुनाऊंगी मैं आप लोग को। एक बार की बात है कि एक मतलब दुकान थी पेंट की दुकान थी, वहाँ से मतलब ऐसे बैठा हुआ था एक आदमी अपनी दुकान पे और गाना लगाया हुआ था उसने एक, और सुन रहा था मस्त आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तो 5-6 लोग आए उसकी दुकान से, मतलब कलर के डिब्बे उठा उठा के ले गए और भागने लगे। तो उसने पूछा कि भाई दिन दिहाड़े क्यों चोरी कर रहे हो, चोरी करनी थी दुकान में ताला लाल लगा होता तब करते, मतलब मेरी तो बेइज्जती होगी मैं दुकान में बैठा हूँ। तो उसने कहा आप ही ने तो गाना लगा के रखा है कि ले जा रे महकी याद में चुरा के सारे रंग ले जा। तो उसने कहा ये तो गाना है, बोले गाने में तो यही बोला जा रहा है और आप मस्त इन्जॉय करो। तो हम लोगों ने सोचा कि गाने को थोड़ा प्रूफ कर दिया जाए, अक्सर हम सपनों में सोचते हैं कि सच हो जाए, तो मैंने सच कर दिया और वो लोग रंग लेके चुरा गए। तो चलिए सुनाती हूँ गाना, और जैसा कि तब से मैं कोशिश कर रही हूँ और मैंने कहा भाई बड़ा डिफ़िकल्ट गाना है, कभी मैंने गाया नहीं तो कैसे गाऊँ, जज्बा बना रही हूँ अपने अंदर और उसी जज्बे के साथ ये गाना आप लोग के लिए।

तो ये बताइए किसकी वाली बीवी इसके साथ जा रही है, सिचुएशन किसके साथ कौन सी वाली मैच हो रही है, और किसी का पति भी जा रहा है तो वो भी बता देगा, क्योंकि किसी का पति भी तो लंबा हो सकता है ना। और जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी हाँ मोटी हाँ मोटी हाँ, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लिटा दो

मैंने बहुत कोशिश की, कभी मैंने आज तक ये गाना गाया नहीं, आप लोग के लिए गा रही हूँ कि आप लोग मेरी वजह से थोड़ा सा मुस्कुरा लें। अरे जिस

कह रहे मेरी वाली तो उल्टी है। अरे जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी गोरी, हाँ भाई गोरी गोरी एकदम फेयर एंड लवली वाली, जिसकी बीवी गोरी बड़ा उसका नाम है, कमरे में बैठा लो

सच में अगर किसी की बीवी गोरी हो तो एकदम उजली उजली दिखेगी। वैसे बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे तो ये गाना कभी कभी बॉडी शेमिंग टाइप लगता है, लेकिन जो दूसरी नेक्स्ट लाइन आती है ना तो तारीफ वाली लगती है। अरे जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी, हाँ जिसकी बीवी नाटी उसका भी बड़ा नाम है। अब भाई मैं अमिताभ बच्चन के स्टाइल में तो नहीं बोल पाऊंगी। हाँ

0: काम है। हाँ भाई, तो इसी के साथ ये गाना मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। और भाई, विराम करने का मेरा स्टाइल उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा अमिताभ जी का था। तो फिलहाल इस गाने को एंजॉय करके आपको कैसा लगा और किसकी किसके साथ ये वाली जा रही, भाई शादी जिसकी हुई ना वो बता देगा मेरी वाली किसके साथ किस कौन से कंट्रास्ट में जा रही है, किसकी वाली सीढ़ी वाली है, किसकी वाली बच्चे वाली है, कौन सी वाली गद्दे वाली है, सब बताएंगे अपनी वाली का। ठीक है, तेरी यादों का नशा कुछ इस कदर चढ़ गया है जैसे गोलगप्पे में एक्स्ट्रा तीखा पानी पड़ गया है, पूरी दुनिया एक तरफ, तेरा नखरा एक तरफ, और भैया थोड़ा और पानी देना वाला चेहरा एक तरफ। क्या बात है, हमारी वाली उल्टी है, इसके लिए स्टैंजा बनाना पड़। जिसकी बीवी उल्टी उसका भी बड़ा काम है, जिसकी बीवी उल्टी, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा नहीं तो फिर आप ही की लग जाएगी क्लास। थैंक यू सो मच। चलिए सुनते हैं एक बढ़िया सा और फनी फनी वाला गाना, क्योंकि आज लाफ्टर्स डे की बात हो रही है तो हंसे ना ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए एक फनी गाना आप लोग के साथ एंजॉय करते हैं। और आप लोग कुछ सुनाने नहीं वाले हैं क्या? आज मैंने फ़नी वाला दे दिया तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं कौन सा फ़नी गाना सुनाऊं। देखिए, फ़नी गाने के लिए सुर ताल की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी गाना गा देंगे ना अपने वाले अंदाज में। तो चलिए आज एक पुराना सा गाना सुनाती हूँ, और पुराना गाना है लेकिन सुन के बताइए कैसा है, आपने सुना है कि नहीं कभी।
1: आ आ ई ई आ आ ई ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। आ आ ई ई आ आ ई ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में

0: अगरबत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआ छाप आग पे बैठा पानी ताप।

0: अच्छा आज देखते हैं किस कौन से फनी गाने ज्यादा अच्छे होते हैं, 90s वाले या फिर इधर वाले। जैसे दोनों ही गाने मैं अलग अलग कलेक्शन के लेके आई हूँ, आप लोग बताइएगा कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा। आप 10 में से आप पॉइंट्स भी दीजिएगा। ओके,
1: पत्थर पे एक आम का झाड़, पूंछ पे लेकर चले पहाड़, पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी।

0: VIP under bed banyan. VIP under bed banyan.
1: अब आप लोग बताइए, आप में से किसने वीआईपी अंडरवियर बनियान पहना हुआ है? जल्दी से यस टाइप करिए। वीआईपी।

0: लेके चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर इसे बट पर वॉट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान,
1: VIP अटलवेर बनिया।
2: बिल्कुल सावधान हो जाइए, और सावधान होने के साथ भाई कॉल भी कर रहे हैं आप लोग, और अभी एक कॉल नहीं हो पाया कनेक्ट क्योंकि अभी ऑन एयर था आपका गाना परफेक्ट। तो चलिए चलिए चलिए चलिए गाना सुनते हैं एक और, जिसको मैंने आप लोग के लिए ढूंढ के रखा है। एंड यस, बहुत ही प्यारा सा गाना है, ओल्ड इज़ गोल्ड वाला गाना है, और आपको भी पसंद आएगा। भाग डिगे बोझ पे, ये गाना तो मैं गाने की जब भी कोशिश करती हूँ ना तो मैं खुद डिगे बोझ बन जाती हूँ लेकिन गा नहीं पाती हूँ। तो चलिए आप लोग सुन के बताइए, और आप लोग ये गाना गा सकते हैं। चैलेंज है आप लोग को, जो ये गाना सुनाएगा उसको उसकी पसंद का गाना सुनने को मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं, मैं आप लोग को डेमो के लिए एक बार ये गाना सुनने का मौका भी देती हूँ।

0: क्या बात है।
1: लेते रहोगी अपने साजन की, गले हम हमको लगाएंगे।

0: सनम आज के पास
1: बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, बहुत सुरीला आपने गाया और बहुत अंदाज में गाया। बहुत दिनों बाद ये गाना सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और जैसे किसी को डेडिकेट करने वाला गाना, बहुत अच्छा गाना है। और
0: अच्छा गा नहीं पाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं जी, थोड़ा एक और भी अगर अच्छा निकल जाए तो आपकी मेहरबानी है।
1: अच्छा मतलब मैं ये कहूँगी कि अभी तक जितने भी गाने मैंने आपकी आवाज़ में सुने हैं वो हर बार आप अपने बेहतरीन अंदाज़ में गाते हैं और जितनी तारीफ़ की जाए उसके कम होंगे, और हर बार आपका जो अंदाज़ है वो निखरा हुआ दिखता है और हर गाने को जो भावनाएं चाहिए, मैं ये कहूँगी कि गाने तो सब लोग गाते हैं पर जिस भाव के साथ जिस गाने को गाना होता है, क्योंकि हर गाना हर भाव के साथ तो नहीं हम गा सकते, हर गाने को एक अलग भाव एक अलग इमोशन की ज़रूरत है और जिस गाने को जिस इमोशन की भूख है वो आप देते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आभार, दिल से आभार। तो सुरेश जी ने अपनी आवाज़ में ये प्यारा सा गाना सुनाया और भाई देखिए हम लोग अब लाइव हो चुके हैं आप लोग के साथ, जैसे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जय जयकार करने से नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी भी पहाड़ पे कई बार चढ़ती है फिर फिसलती है फिर चढ़ती है फिर फिसलती है, लेकिन फाइनली उसकी कोशिश बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हम लोग वापस लाइव हो चुके हैं आप लोग के साथ और बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आप लोग के साथ हंसने मुस्कुराने वाली। सो गुड इवनिंग अगेन नेहा जी, कैसे हैं मुस्तफ़ा जी, कैसे हैं आप? अभी तो इवनिंग हो गई, आपने गुड आफ्टरनून कर दिया। वैसे जब देखिए यही बचपना है, यही हंसने मुस्कुराने का मतलब कहते हैं ना वजह है देने की, तो मुस्कुराने की वजह बस यही है कि आप जब चाहो तभी उस टाइम को एंजॉय कर लो क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार पप्पू से ना मम्मी ने पूछा कि बेटा तुम बड़े होकर पायलट बनोगे ऐसा तुम कह रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? पप्पू ने कहा फिर घर के ऊपर मैं रोज़ फ्री में घूमूंगा। मैंने कहा क्या बात है, मतलब फ्री में घूमने के लिए उनको पायलट बनना है और कोई काम नहीं है। फिलहाल एक बार क्या हुआ कि एक जनाब बोले कि मतलब पप्पू की जो है ना वो शादी होने वाली है, पप्पू सोच रहा है कि वो अपने मतलब हनीमून की टिकट्स कहीं करा ले, पर पप्पू ने कहा कि मेरा बजट जो है वो बाहर जाने का नहीं है। तो उसके दोस्त ने कहा भाई इंडिया में बहुत सारी जगह हैं वहाँ का तू मतलब टिकट वगैरह करा ले। तो उसने कहा कि यार बहुत सारी जगह क्या, मतलब दूसरी जगह हनीमून मनना चाहिए तो मैंने दूसरे वाले गांव में एक कमरा किराए पे ले लिया है और वहीं जाके एक महीने के लिए हनीमून मनाऊँगा। उसकी पत्नी ने तुरंत ही शादी तोड़ दी और ये प्लान सुनते ही पप्पू बेचारे कुंवारे रह गए। फिलहाल आप लोग बताइए कि आप लोग क्या क्या प्लान है, आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं गर्मी की छुट्टी में या फिर पड़ोस के गांव में आपने भी प्लान बना लिया है? तो चलिए चलिए हम लोग भी सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आप लोग के साथ। और शाम है रंगीन तो गाना भी होना चाहिए ना एकदम मतलब फुल टू एनर्जी वाला, तो चलिए सुनते हैं साड़ी गली भी आया करो, क्योंकि साड़ी गली भी आजकल शादी ब्याह का माहौल है, हर गली में बैंड बाजे बज रहे हैं और शादियों में अगर हम जाके एंजॉय ना करें पार्टियों में खाएं ना तो शादियां होने का क्या फ़ायदा। और अगर जहां भी अगर आपको लग रहा है वीआईपी एंट्री वहां मत जाइए, बाकी सारे आसपास की जितने भी लॉज हैं जाके पार्टियां अटेंड करिए और जो मौके ना मिले तो मुझे बताइए, मैं बता दूंगी कौन कौन से होटल बुक हैं वहां जाके आप बढ़िया एंजॉय करिएगा, क्योंकि मुझे न्योते मिलते रहते तो मैं बता दूंगी कहां कहां जाके फ्री पूड़ी का व्यवस्था हो जाएगी। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम तनु वेड्स मनु।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार
1: नमस्ते, न्यू तरंग टेलर बोल रहे हैं मजीद भाई।
0: ओ मजीद जी, कैसे हैं? शुभ संध्या, क्या हाल है?
1: बढ़िया है, गाना मुझे सुनना है वो जाने वाले।
0: ओ मजीद जी, अभी फरमाइश नहीं चल रही है और प्लीज अभी आप 7:45 से अपनी फरमाइश करिएगा। थैंक यू सो मच। सो मजीद जी ने कॉल किया फरमाइश करने के लिए और ये भी एक हंसी की बात है यार, ये भूल जाते हैं आप लोग फरमाइश वाला टाइम। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में खास खास बहुत खास बहुत ही ज्यादा खास बहुत ही ज्यादा सा रूहानी और बहुत ही ज्यादा सा स्पेशल आज की आंधी और तूफान की तरह जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए ना आए हाय इस आंधी तूफान की तरह जितने चांद आप लगाना चाहते हैं। सो कितने कितने लोगों ने इंजॉय किया है आज के इस आंधी तूफान को जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम उदालक शर्मा जी, मुस्तफा जी, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा और आरजे सोनी गोपालगंज से कमल नयन जी, अनुष्का श्रावस्ती से, प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राकेश वर्मा जी आप सभी का तहे हुए दिल से स्वागत है और इस्तकबाल है आज की इस भीगी भीगी सी शाम में। आहा, तो क्या आप लोगों का भी मूड एकदम से एकदम भीगा भीगा सा है मेरी तरह, हमारी आरजे बीना की तरह? जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताना। लेकिन उसके पहले एंजॉय कर लेते हैं ना बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली वाली फरमाइश। उदालक शर्मा जी को सुनना है गाना कभी जो बादल बरसे मैं देखू तुझे आंखें भर, ओह माय गॉड, कभी जो बादल बरसे मैं देखू तुझे आंखें भर के और तू मुझे लगे पहली बारिश की दुआ। आहा, सो आप लोग भी मुझे लगते हैं मेरी पहली बारिश की दुआ। सो मेरी पहली बारिश की दुआ के लिए एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदालक शर्मा जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड। आहा

सो कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के। सो हमारी बारिश की पहली दुआ के लिए हमने एंजॉय कर लिया ये पहली पहली पहली वाली फरमाइश को, जो कि आई थी उदालक शर्मा जी की तरफ से। सो नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। तो क्या आप सभी भी आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह तैयार है? अनिल शास्त्री जी, आपका स्वागत है आपके अपने फरमाइशी शो में। सो जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश है किसकी? हमारे मुस्तफा जी की। और हमारे मुस्तफा जी को सुनना है गाना ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। सो ऐसा ही कोई म्यूजिक है, फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं मुस्तफा जी की फरमाइश बिना किसी देरी के। है ना ऐसी म्यूजिक?

नाम के दीवाने तू काम तो बता। आंखें मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में मुस्तफा जी की फरमाइश पर। चलिए चलते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना पहले प्यार की पहली बरसात। तो इंजॉय करते हैं दिल है बेताब मूवी का ये हाउ रोमांटिक बरसात बरसात फीलिंग वाला गाना, एकदम आज के मौसम पर फिट बैठने वाला गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: सो पहले प्यार की ये पहली बरसात है, हम दोनों एक दूजे के साथ हैं, हमने एंजॉय किया है ये गाना सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। चलिए चलते हैं ना, बढ़ते हैं ना हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। सो चलेंगे चलेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले थमो थमो, हमारे साथ और भी कोई है दोस्तों। सो क्या आप सभी जानना चाहते हैं? हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका नाम?
1: मुमताज अंसारी
0: जी। मुमताज अंसारी जी, मैं तो जानती ही थी कि आप ही हैं, लेकिन मैं बस हमारे दोस्तों को रूबरू करवाना चाहती थी और आपके नाम को, आपके नाम में जो शोभा आपके मुंह से आपका नाम लेने में होता है ना, वो शोभा दूसरे के मुंह से शायद उतना मजा नहीं आता। क्यों, सही कहा ना मैंने?
1: जी जी,
0: शुक्रिया। तो आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: बस गाना सुनना है, ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, उनको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
0: वाह, बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। और आप अक्सर मुमताज अंसारी जी दोस्तों, अक्सर वो फरमाइश करने के लिए अगर फोन करते हैं तो कहते हैं कि मैडम जी कुछ कहना भी चाहते हैं, तो क्या आज आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं?
1: नहीं नहीं, कहना चाहते हैं
0: जी, बिल्कुल इरशाद इरशाद।
1: एक नया चीज सुनाता हूँ
0: जी,
1: जमाने के हिसाब से
0: जी।
1: जिसके चेहरे पे नूर होता है,
0: हाँ हाँ,
1: उनको अपने आप पर गुरूर होता है।
0: अरे वाह।
1: और यूं ही नहीं डूबती किसी की कश्ती, कुछ इशारा जरूर होता है।
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत उम्दा। सो बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज अंसारी जी हमें ज्वाइन करने के लिए, और चलिए एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना। ओहो, सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के ये शक्ति मूवी काल का याग्निक सोनू निगम की आवाज में गाना मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना। हमने एंजॉय किया है सोनू निगम अलका याग्निक जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवीय नगर गोंडा से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना। अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, और गुजराती में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं, मलयाली में क्या कहते हैं, ये सब आप जरूर मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन हिंदी में तो कहते हैं कि हमें आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम है। सो एंजॉय कर लेते हैं मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम मजीद जी, मालवीय नगर गोंडा से आपका स्वागत है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है खुद्दार मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू। मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है आरजे सोनी की गोपालगंज से, उनको सुनना है गाना बहुत देर कर दी। सो एंजॉय करते हैं तवायफ मूवी का आशा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हर दिल को मतलब भाने वाला गाना, हर दिल को रिझाने वाला गाना, हर दिल में बसने वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

और हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आशा जी की आवाज़ में हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल नयन जी की। कमल नयन को सुनना है गाना तू मिला दे। तो सावन मूवी का ये गाना एंजॉय करते हैं कमल नयन की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम आरके श्रीवास्तव जी गोंडा से, कैफ मोबाइल वाले गोंडा से, आवाज़ विकास गोंडा से, रवि जी आपका भी स्वागत ही है। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के। और हमारी आज की अगली फरमाइश आप जानते हैं किसकी है? अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना, दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए, ये वाला नहीं, ओरिजिनल वर्जन इसका। सो एंजॉय करते हैं हंसराज हंस का ये वाला सदाबहार पंजाबी सॉन्ग अनुष्का।

0: हंसराज हंस का ये गाना हमने एंजॉय किया है अनुष्का की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है इम्तियाज़ अहमद की गोंडा से। इम्तियाज़ अहमद को गोंडा से सुनना है गाना मिर्ची शिमले दी। सो एंजॉय करते हैं शिमला मिर्च का ये गाना सिर्फ और सिर्फ हमारे अतरंगी से इम्तियाज़ अहमद जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: गालिब डूबे मजनू डूबे,
2: वाह जी वाह,
1: डूबे कितने रांझे, इश्क दी पतंग जिसने उड़ाई, कट गए उसके मांझे।
3: समझे बांझे?

एंजॉय किया है ये गाना इम्तियाज अहमद की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि आज के हमारे इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। सो दोस्तों एंजॉय कर लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर जो की है चौक गोंडा से। सो एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश और मिलेंगे सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त तो लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी के सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेन जी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में NDA उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
3: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ।

0: सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो कैसे हैं आप सब, और फाइनली बता दीजिए क्या है हाल चाल, क्योंकि ब्रेक तो बहुत ही लंबे समय का होता है दोस्तों। ये 10-15 मिनट में तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है ना, तो आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गॉसिप तो ज़रूर आई होगी। सो जो गॉसिप आई है वो मुझे भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस टाइम पे मुझे भी गॉसिप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो ऐसे ही गॉसिप के भंडार के साथ में हमारे साथ में चैट बॉक्स में आ चुके हैं नागेश्वर धाकड़, और उन्होंने ज्ञान की बात बताई है, पते की बात कही है उन्होंने। नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि खुद की समझदारी अहमियत रखती है, खुद की समझदारी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे ना। सही कहा ना। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है संतोष जी की गिलौली से, और गिलौली से संतोष जी को सुनना है गाना मुझे अल्लाह की कसम। तो सनम बेवफा का ये गाना हम इंजॉय करेंगे विपिन सचदेवा और लता जी की आवाज़ में, सिर्फ और सिर्फ संतोष जी की फरमाइश पर, जो की है गिलौली से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की ये ना समझ में आने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

से प्यार हो गया। लता जी और विपिन सचदेवा की आवाज में हमने एंजॉय किया है सनम बेवफा का ये गाना, संतोष जी की फरमाइश पर जो की है गिलौली से। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन की। धर्मेंद्र मोहन को आवास विकास गोंडा से सुनना है गाना, भटिंडा से बीकानेर हो गया। सो एंजॉय करते हैं ये पंजाबी हिट सॉन्ग सुरजीत भुल्लर का गाना, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हूँ। सो हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, किसकी फरमाइश पर? धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना ये मौसम भीगा भीगा है। सो एंजॉय करते हैं धरती मूवी का ये गाना लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, क्लासिक हिट नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा, आपका स्वागत है। वैसे दोस्तों कभी कभी झूठी अफवाहें बहुत तेजी से

क्यों ना बचने का दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है और ये मौसम भीगा भीगा है। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत का हाँ ये क्या बोल रही हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में। हमारे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर गोंडा से मजीद की और मजीद को सुनना है गाना आ जा जाने वाले तेरी याद सताए। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मजीद जी की फरमाइश पर जो की है न्यू तरंग टेलर से मालवे नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो

0: जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलीट 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और अब कार्यक्रम हो चला है बाहर।

और बाहर एक गजल, जब इस वक्त आती है जो इस पल आती है तो आपको एक अजीब सा सुकून देने के लिए आती है। कहा जाता है कि ऑल इज वेल इफ इट्स वेल, अगर आप अच्छे विचारों के साथ अपनी नींद के आगोश में जाते हैं तो नींद अच्छी आती है, क्योंकि रात ज़रूरी है। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो ये चाहने वालों की रात है साहब, और इस चाहत भरी रात में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। हम बहुत ही मशगूर और मगनून हैं आप सभी के कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, एक पार्ट बने हैं। और अब आपको ले चलते हैं कैसे व्यक्तित्व के बारे में बताने, जिनका पूरा नाम हो सकता है आप लोगों ने कम सुना हो, लेकिन जिस उपनाम से वो जाने गए वो नाम आप सभी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण सिंह कालरा, और उनका उपनाम है, उनका तखल्लुस है गुलजार। क्या बात है जी, शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जो इस नाम से परिचित ना हो। उन्होंने कहा कि दिन ऐसे गुजारता है कोई, दिन ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई, दिन ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम। इस दुनिया में प्रत्येक चीज की अपनी एक जगह है, और अगर वो चीज़ अपनी जगह से हटती है तो वो मजाक का विषय बन जाती है। 10,000 का जूता इंसान पाँव में ही पहनेगा, और 200 रुपए की टोपी भी इंसान के सर पर ही लगेगी। अगर सोचिए हम 10,000 का जूता पहन के सर पर रख लें तो ये अजीब लगेगा। जिस प्रकार वस्तुओं की अपनी जगह है, उसी प्रकार गम की भी अपनी एक जगह है, और वो जगह कहाँ है? वो जगह है आपके दिल में। आंसुओं की जगह है कहाँ है? आंखों में। अगर वो आंसू आंखों से बाहर आ गए तो दे आर नॉट बेटर देन सलाइन वाटर, उनका महत्व खारे पानी से ज्यादा नहीं होता है। वसीम बरेली साहब का शेर है कि मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो, शरीफों के घरों का मसाला बाहर नहीं जाता। तो गुलजार साहब कहते हैं कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। जी हाँ, जितनी फिक्रमंदी के साथ हम अपना जेवर संभालते हैं, उसी फिक्र के साथ कवि अपने गम को संभालता है। कहता है कि आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई, पेड़ पर पक गया है फल शायद, पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। जी हाँ, बहुत ही आसान लफ्जियात में बहुत ही बड़ी बात कह देने का हुनर गुलजार साहब के पास। शायद ही ऐसा कोई गजल गाने वाला व्यक्तित्व हो जिन्होंने गुलजार की गजलों को आवाज न दी हो। बहुत सारी हिट फिल्मों में उनके बहुत से गीत चले। आज बात उन्हीं पर करेंगे
संपूर्ण सिंह कालरावफ गुलजार साहब। फिलहाल आपको ले चलते हैं, जी हाँ, बहारों की महफिल में, और ये महफिल है गज़ल की। सुनाते हैं आपको प्यारी सी एक गज़ल, और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थी 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। लेकिन फ़िलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हुजूर, आपको भी सलाम करता चलूँगा। और जब बात सलाम करने की आती है तो मुझे बशीर बद्र साहब याद आते हैं। उन्होंने कहा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत मतलब विपक्ष में बोलने वाले लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। एहतराम मतलब इज्जत। उन्होंने कहा कि मतलब जो हमारे विपक्ष में लोग बोलते हैं, हमारे अगेंस्ट बोलते हैं, वो अच्छी बात है क्योंकि इससे मेरी पर्सनालिटी में और निखार आता है। जी ये बात डॉक्टर बशीर बद्र साहब की है। यहां पर हम बात करें गुलजार साहब की। उन्होंने लिखा कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, यानी जो पाकीजगी से बात न कर पाए पवित्रता से, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। मतलब अगर ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी से गया है तो उसे मना कर लेने का कोई फायदा नहीं है। लक के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, साहिल मतलब किनारा, लक के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते, जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें। जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें, इस तरह ख्वाबों से आंखें नहीं फोड़ा करते। किरचें मतलब शीशे के टुकड़े। जागने पर भी नहीं आंख से गिरती किरचें, इस तरह ख्वाबों से आंखें नहीं फोड़ा करते, शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं तोड़ा करते। जी हाँ, जिंदगी की सारी मिठास आपको एक साथ नहीं मिल सकती और जिंदगी के सारे नमक आपको एक साथ नहीं मिलते, ये कुछ कुछ अंतराल पर मिलते रहते हैं, गैप पर। कुछ समय खुशी, आज गम कल खुशी है, यही जिंदगी सुन ले प्यारे। तो ये नियम ही है सृष्टि का। और अंतिम पंक्ति का के कही कि जाके कोहसाल से सलमांगो की आवाज तो हो, जहां पर पर्वत का इलाका हो, जाके कोहसाल से सर मारो की आवाज तो हो, पत्थर पे सर मारो, खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते। उन्होंने कहा अगर माथा फोड़ने का शौक है तो दीवारों से क्यों फोड़ा जाए, माथा ही फोड़ने का शौक है तो जरा लेवल की चीज लाएंगे अपने स्तर का, तो आवाज गूंजेगी हमारी वादियों में। जी हाँ, ये हैं गुलजार साहब। हमारे साथ नेहा जी बैदा इससे हैं। नमस्कार मनु सर, आदाब नेहा जी, आपको कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। कैफ मोबाइल जी हमारे साथ हैं, आदाब करते हैं, आपको भी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे भाई। राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं सर, नमस्कार आपको भी। और धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनु जी नमस्कार, नमस्कार आपका आशीर्वाद। हम आशीर्वाद नहीं, हम आपको अपनी शुभकामनाएँ, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो ये है साहब गुलजार साहब, जो जिंदगी की परेशानियों को, उलझनों को हम सभी के समक्ष लाते हैं, और लाते ही नहीं बल्कि उसका रास्ता भी बताते हैं कि उन रास्तों से, उन मुश्किलों से कैसे निकला जाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो जाने वाला है उसके लिए आप चिंता न करें,
जिसको रहना होगा वह आपकी चार कमियां देखकर भी रह लेगा, और जिसको जाना होगा साहब तो इस दुनिया में बहाने बहुत हैं। और बहाने ही क्यों, हम तो देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में ठंडक का मौसम आ गया, तो मौसम बदल रहा है। जी हाँ, जब मौसम बदल रहा है तो बदले हुए मौसम पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत हमारे जहन में आया, आपको सुनाते हैं। हो सकता है मौसम पर ये गीत आपको भी अच्छा लगे, सुनकर बताइए कि ये गज़ल आपको कैसी लगी। फिलहाल मौसम का हवाला देते हुए ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। ये बात अलग है कि उम्र बीती, समय बीतने के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन उतना हरा नहीं है, लेकिन अभी तक भर भी नहीं पाया है। बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। कभी आपकी जिंदगी में होता होगा कि उनके जैसा कोई नहीं मिल पाया, और साहब ये जिंदगी है, यहां बाहर से मुस्कुराने वाले अंदर से रोते हुए मिलते हैं। जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो, जो चाहता है चीखना रो लेना सिसकना, जो चाहता है चीखना रो लेना सिसकना, महफिल में उसे गाते हुए देख रहे हो। तो साहब जिंदगी है। गुलजार साहब कहते हैं कि दर्द हल्का है, दर्द हल्का है, सांस भारी है, दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। रात को चांदनी तो ओढ़ा दो, रात को चांदनी तो ओढ़ा दो, दिन की चादर अभी उतारी है, शाख पर कोई कह कहा तो खिले, कैसी चुपसी चमन पे तारी है। कल का हर वाकिया मतलब कहानी, कल का हर वाकिया तुम्हारा था, कल की सारी कहानी आपकी थी, आज की दास्तां हमारी है। कल जो कहानी थी दुनिया में वो आपकी थी, आज जो कहानी दुनिया में है वो मेरी है। जी हाँ, हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं भाई, और जी मनीष शर्मा जी प्रणाम करते हैं आपको, और नमस्कार है जी, गलतफहमी होगी तो उसको दूर करिए। अंबर जी हमारे साथ भाई उपस्थित हैं, अम्बर जी प्रणाम करते हैं आपको। जी मैं बीबीसी पर रेखा जी का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने पूछा गया कि बताइए आपने बहुत सारी गज़लें गाई, गीत पर अभिनय किया, आपको ऐसी कौन सी गज़ल या ऐसा कौन सा गीत है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। लता मंगेशकर जी ने वो गीत, वो गज़ल गाई थी, और मैं चाहता हूँ कि वो गज़ल मैं आपको भी सुनाऊँ। जी हाँ, आवाज़ आप सुनकर बताइएगा कि ये आवाज़ किसकी है, अगर आप गेस कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और ये लता जी की सबसे अच्छी गज़ल जो उन्होंने सुनाई थी, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो। देखते हैं इस गज़ल की आवाज़ को पहचानने वाले हमारे कौन से श्रोता हैं। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, चांद को हुस्न, गुलाबों को नजाकत दी है, उसने मिट्टी को भी इंसान की सूरत दी है। चाहता हूँ कि तेरे साथ कटे उम्र, मगर वक्त ने चंद ही लम्हों की इजाज़त दी है। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। कायनात जी भी साथ उपस्थित हैं, प्रणाम करते हैं आपको। जी शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाहर ये गज़ल, ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणस 89.6 FM। ये है गोंडा ही नहीं बल्कि आपके दिलों की भी।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी तुम्हारे जाने के बाद। विवेक को उसके चले जाने का दुख उतना नहीं होता था जितना परेशान वो ये सोचकर होता था कि अब जीवन भर उसे इस पछतावे में जीना होगा कि उसने उसे खो दिया। समय सारे घाव भर देता है, ये उसने सुना ही नहीं देखा भी था। पर उसके चले जाने के बाद वाला दुख एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी जैसे आज ही मिले घाव सा ताजा था। दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लगता था कि समय इस पर मरहम लगा देगा पर ये तो जैसे कोई लाइलाज बीमारी सा हो गया था। इस समय रूपी औषधि के लिए ना दर्द कम हो रहा था और ना ही उसकी तड़प। सुबह उठो तो उसकी तस्वीर देखो, फिर दिन भर बस इस पछतावे में जियो कि आखिर उसने उसे कैसे खो दिया। अपनी गलतियां गिनो और ये सोचो कि काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता, या वैसा नहीं हुआ होता तो अभी भी वो साथ होते। किंतु परंतु के बीच उलझा उसका ये जीवन सच को स्वीकार करने में यूं असमर्थ था जैसे सूर्य शीतलता प्रदान करने में। हर दिन बीत चुके को कैसे सुधारा जा सकता है या क्या किया जा सकता था कि जिससे सब कुछ इस तरह नहीं बिखरता, यही सोचने में बीत रहा था। समय में पीछे जा सकने की शक्तियों के बारे में सोचना भी तो पागलपन है, पर वो सोचता था। उसे लगता कि यदि समय में किसी तरह पीछे जाया जा सकता तो वो अपनी हर गलती को सुधार लेता, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़ती। फिर सोचता कि जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी के बगैर तो नहीं हुआ होगा, और अगर उसने ऐसा किया है तो उसके पीछे उसके अपने भी कुछ प्लान्स होंगे। पर कई महीने बाद भी दुख का कम ना होना, इस दर्द का ज्यों के त्यों बना रहना ईश्वर के इस प्लान पर उंगली उठा रहा था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना विवेक अपनी पत्नी को खो चुका था, लेकिन उसके जाने का गम इतना वक्त बीतने के बाद भी कम होने का नाम ही नहीं लेता था। दिन रात हर पल उसके पास सिर्फ एक ही काम था, काश में जीना और उसे याद करना। अब आगे वो सोचता था, एक ही रिश्ते में रह रहे दो शख्स एक सा प्रेम करने के बाद भी एक इतनी आसानी से आगे बढ़ चुका है और वो आज भी वहीं ठहरा हुआ था, तो ईश्वर की इस योजना का उसके समझ में आना बहुत कठिन होता जा रहा था और ना ही वो ये स्वीकार कर पा रहा था कुछ बेहतर होगा। लगता था जैसे ईश्वर से कोई गलती हुई हो या फिर उसके लिए बनाई गई नई योजना को लागू करना ईश्वर भूल गया हो। ऐसा कोई दिन नहीं था जब दर्द जरा सा भी कम हुआ हो। पछतावा अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अगर उससे माफी मांगने पर सब ठीक किया जा सकता तो वो उसके पैरों में गिरकर उसके पैरों को धोकर पी सकता था, परंतु वो जानता था कि इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये बात ईश्वर भी जानता था कि विवेक उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और इस दर्द को कम करने के लिए भी वो हर वो चीज करने को तैयार था जो ईश्वर चाहे, लेकिन ईश्वर उसे कोई इशारा भी नहीं करता था कि आखिर वो क्या करे कि सब कुछ ठीक कर सके या इस दर्द को कम कर सके। उसकी यादों का यूं तरोताजा बना रहना अब बोझ होता जा रहा था। वो चाहता था कि अब सब कुछ धुंधला हो जाए, परंतु ऐसा भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी गलतियां तो अब दिनों दिन और साफ दिखाई देने लगी थी उसे। वो यादें खूबसूरत ना होकर जैसे कोई श्राप सी हो गई थीं, ऐसा श्राप जो अनंत काल तक उसके साथ रहेगा। इसलिए अब उसके जाने का दुख जैसे समाप्त हो चुका था, रह गया था तो सिर्फ पछतावा। उसके चले जाने के दुख के सामने उसकी गलतियों का ये पछतावा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उसे अब उसके जाने से ज्यादा खुद के होने का पछतावा होता था। लगता था जैसे अगर ये सब खत्म नहीं कर सकता है ईश्वर तो कम से कम उसे ही खत्म कर दे। पर शायद अनंत काल के लिए मिला ये श्राप उसकी आखिरी सांसों के साथ ही समाप्त होगा। ऐसा ही तो होता है ना, वो समय में पीछे नहीं जा सकता था, ये सच है, लेकिन वो बीते समय में ही जी रहा था, ये भी सच है। उसके जाने के बाद जैसे उसका समय आगे बढ़ा ही नहीं,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना विवेक की पत्नी परलोक की यात्रा पर निकल चुकी थी और विवेक उसके दुख से किसी भी तरह खुद को उभार ही नहीं पा रहा था। अब आगे उसकी पत्नी का देहांत हुए अब 5 वर्ष बीत गए थे। ऐसे दुख खत्म तो कभी नहीं होते पर मन पर विवशता और उदासीनता की एक परत सी जम गई थी। इससे दुख हल्का लगने लगा था। जीवन और परिवार की लगभग सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थीं। नौकरी से सेवानिवृत्ति, बच्चों की नौकरियां और विवाह भी। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां दोबारा घर बसाना उसे बचकाना ख्याल लगता था। उसे याद आता था कि एक बार पत्नी और खुद की नौकरी में अलग अलग पोस्टिंग हो जाने के लिए अनिच्छुक पत्नी को समझाते हुए उसने ये वचन दे डाला था कि वो जीवन में कभी किसी दूसरी औरत के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसके जाने के बाद वो वचन उसके लिए पत्थर की लकीर बन गया। वो तन मन से दुनिया भर की स्त्रियों से हमेशा के लिए दूर हो गया। उसके अंदर जैसे एक जड़ता ने घर कर लिया। कुछ समय बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पास कोई तो हो जिसके कंधे पर सर रख के वो अपना दुख मना सके, उसके साथ एक कप चाय पी सके, उससे अपने मन की कोई बात कर सके। कोई भी, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई तो हो। एक अदद इंसान की उसे जरूरत महसूस होने लगी। उसे अपने हम उम्र लोगों का साथ बड़ा खींच भरा लगता। वो हमेशा ऐसी बातें करते कि उसकी आमदनी कितनी है, उसकी जायदाद की कीमत कितनी है, उसके पास भविष्य निधि के स्रोत क्या हैं, उसके मकान या जमीन का बाजार मूल्य कितना है। इन सवालों से उकताकर वो दूरी बना लेता। उसका ध्यान बच्चों की ओर जाता लेकिन उनमें से किसी की आत्मीयता पनपने से पहले वो सोचता कि ये इनके जिंदगी बनाने, करियर बनाने के दिन हैं, इनका ध्यान भविष्य बनाने पर ही रहे। और ये सोचता हुआ वो उनसे भी पर्याप्त दूरी रखता। एक शाम के समय खाना खाने के बाद वो सड़क पर अकेला ही टहलकर घर लौट रहा था कि घर के पास उसने एक लड़के को खड़े देखा। लड़का एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक खड़ी करके उसी के सहारे खड़ा था। लड़के की उम्र लगभग 21-22 वर्ष रही होगी और वो बार बार घड़ी देख रहा था, शायद किसी के इंतजार में था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसके दुख में जीते जीते आखिर विवेक को ऐसा महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में भी उसके लिए कोई तो हो जिसके साथ वो अपना मन हल्का कर सके। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो उसके घर के बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। अब आगे विवेक दरवाजे से भीतर दाखिल होने ही लगा था कि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पेड़ के नीचे खड़े होने पर भी बारिश से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा जा सकता था, सो वो लड़का कुछ भीगने लगा। विवेक ने इंसानियत के नाते उससे कहा, भीग क्यों रहे हो, भीतर आ जाओ। लड़का झट से उसके पीछे पीछे चला आया। कमरे का ताला खोलकर विवेक ने भीतर की लाइट जलाई तो लड़के ने कुछ संकोच से पूछा, अकेले रहते हैं अंकल? हाँ, कहकर विवेक ने लड़के को सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो कुछ सहज होकर उत्साहित हुआ, फिर बोला, मैं सामने वाली बिल्डिंग में एक आंटी को डांस सिखाने आता हूं। अच्छा, विवेक को उसकी बात में दिलचस्पी लगी। उन्होंने मुझे 7 बजे का समय दिया हुआ है पर कभी समय पर घर नहीं आ पाती। वो कुछ मायूसी से बोला, क्या तुम किसी डांस स्कूल में नौकरी करते हो? विवेक ने पूछा। नहीं अंकल, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर जहां से मैंने खुद डांस सीखा था उन्हीं कोच सर ने मुझे ये ट्यूशन दिलवाई है। मेरा थोड़ा खर्च निकल जाता है, डांस स्कूल का समय दिन का है तब ये आंटी आ नहीं पाती। वो बोला, वो आंटी क्या जॉब करती हैं जो रोज देर से घर आती हैं? फिर उन्होंने तुम्हें ये समय दिया ही क्यों? विवेक ने सहज ही कहा, जॉब नहीं करती, हाउसवाइफ है, देर तो उन्हें वैसे ही हो जाती है, कभी शॉपिंग में तो कभी सोशल विजिट्स में। लड़का बोला, विवेक ने देखा कि लड़का संजीदा और शिक्षित था, साथ ही स्मार्ट भी। लड़का उस दिन तो थोड़ी देर बाद चला गया, लेकिन अब वो कभी कभी विवेक के पास आने लगा, जब भी वो फुर्सत में होता चला आता। एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेने के बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। विवेक अपने अकेलेपन से त्रस्त तो था ही, एक दिन बैठे बैठे उसके मन में आया कि क्यों ना वो भी डांस सीख ले। ठीक है कि अब इस उम्र में उसे कोई करियर नहीं बनाना, कहीं प्रस्तुति नहीं देनी, पर अपने मन की खुशी और तन की व्यस्तता का एक उपाय तो ये है ही। 2-4 दिन ही बीते होंगे कि लड़के को डांस का एक ट्यूशन और मिल गया। वो ट्यूशन विवेक का ही था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है तुम्हारे जाने के बाद। अब तक आपने सुना, विवेक ने अपनी पत्नी के वियोग में कई साल अवसाद में गुजार दिए। फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो डांस टीचर था। अपने सूने जीवन की धारा मोड़ने के लिए विवेक ने निर्णय लिया कि वो भी नृत्य सीखेगा। अब वो लड़का सप्ताह में दो दिन विवेक को भी डांस सिखाने लगा। फिर रोज दरवाजा बंद करके तेज संगीत की आवाज में विवेक लगभग एक घंटे तक अकेले ही उसके सिखाए स्टेप्स दोहराता। एक दिन विवेक बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी। अभिवादन के बाद विवेक ने उसे बैठाया। वो इधर उधर देखते हुए कुछ संकोच से बोली, अभी अभिनव का फोन आया था, वही कोरियोग्राफर सर। ओह अच्छा, विवेक ने कहा। हाँ, उसने कहा है कि आज उसे आने में देर हो जाएगी, तो तब तक मैं आपको कुछ वो स्टेप सिखा दूं जो वो मुझे सिखा चुका है, क्योंकि असल में वो दो लोगों वाले डांस के स्टेप्स हैं, इसीलिए अकेले अकेले समझ में भी नहीं आते। विवेक के लिए ये सुखद आश्चर्य था। कुछ मिनट बाद वो और वो अपरिचित महिला एक तेज धुन पर एक साथ डांस कर रहे थे। विवेक को महिला की अगवानी की हड़बड़ी में शायद ये भी ध्यान नहीं रहा था कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया है। वो नाचते नाचते मनोयोग से घूमकर पलटे तो देखा कि अभिनव उनका डांस टीचर सामने खड़ा ताली बजा रहा था। वाह वाह, एक्सीलेंट, उसने कहा तो वो दोनों अचकचा कर रुक गए। अभिनव ने उसे बताया कि डांस मन की खुशी का प्रदर्शन भी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा अलग अलग, पर दिन में एक बार किसी भी समय आप लोग साथ में प्रैक्टिस किया करेंगे। मानो अब से उनकी जिंदगी ही बदल गई। अब वो ऐसे मित्र बन गए थे कि दिन में एक बार आधे घंटे के लिए जरूर मिलते थे, पर उस आधे घंटे की प्रतीक्षा कई घंटों तक रहती थी। ऐसा लगता था कि तन मन में बंधे बांध में अब ठहरा पानी उन्हें तंग नहीं करता था। वो बहकर न जाने कहां ओझल हो गया था। अब कभी कभी रात को सोने से पहले विवेक सोचता था कि अगर रात को सपने में उसकी पत्नी आई और उसने ये पूछा कि आपके साथ दोपहर को कौन होता है, तो मैं उसे बता दूंगा कि उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो मेरी डांस क्लास की क्लास फेलो है, हम एक साथ ही एक टीचर से पढ़ते हैं और होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी तुम्हारे जाने के बाद। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों।

आपकी, हम सभी की है, यानी हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगानी। तो चलते हैं इस जिंदगी के सफरनामे पर और सुनाते हैं आपको वो सॉन्ग जो हर किसी के जिंदगी के प्यार का गीत है, यानी जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बेशक ये वो गीत है जो हम और आप गुनगुनाते हैं, चाहे मन हो या ना हो, कैसे भी हो। तो चलिए जानते हैं इस गाने के माध्यम से कि आखिर में जिंदगी को अगर गाना होगा तो कैसे गाएंगे हम। लेकिन उससे पहले इस गीत के पीछे का एहसास आप तक पहुंचाती है आपकी अपनी आरजी अनोखी। ये गीत उस दौर में आया जब लोगों को यकीन था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ साथ निभाना है। तब मोबाइल नहीं थे, पर रिश्तों की नेटवर्किंग रेंज जो होती थी वो फुल रहती थी। यदि इस गाने को आदमी की जिंदगी से जोड़ें तो एक आम आदमी पहली नौकरी, पहली तनख्वाह और उसी तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी। उसे तब लगता था हाँ, जिंदगी सच में प्यार का गीत है। प्यार से शुरू हुई थी जो राह, अभी भी उसी मोड़ पर खड़ी है जिंदगी। आइए चले उसी मोड़ की ओर इस गाने के माध्यम से।

0: श्रोताओं, अब आपकी अपनी आरजी अनोखी जिंदगी के उस सफर की बात करेगी जो प्यार के राह पे चलने के बाद में सुहाना हो जाता है। बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गाना है किशोर दा की आवाज में और इस गीत में मासूमियत थी। एक ऐसा सफर जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता प्यारा था। जिंदगी का किस्सा ट्रेन की जनरल बोगी, खिड़की से आती हवा और जेब में कम पैसे, फिर भी हम सभी के चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उस वक्त सफर सुहाना था क्योंकि जिम्मेदारियां स्टेशन पर नहीं चढ़ी थी, प्यार को गले लगाया करती थी। आइए बढ़ते हैं इस और एक खूबसूरत से जिंदगानी वाले नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे।
1: जिंदगी

खड़ी, इतनी गहराई, इतना एहसास, इतना दर्द, एक पैगाम और जिंदगी। इस गाने में बहुत कुछ समेटा गया है। हंसी मजाक में कही गई गहरी बात, लड्डू तब तक मीठा होता है जब तक वो टूट ना जाए, यानी उसके हर बूंद में मिठास तो होता है, पर बिखरने के बाद में क्या वही सेम स्वाद आपको मिलता है? सोचने की बात है ना, जिंदगी हर वक्त एक जैसी नहीं होती। तो टूटने से पहले इस जिंदगी को क्यों ना समेट लें, प्यार में, अपने पन में, अपने एहसासों के साथ, अपने एहसास इकट्ठा कर लें और बना लें अपनी इस जिंदगी को खुशहाल, खुशनुमा।

ये गीत उस एहसास का नाम है जब लोग साथ चलते चलते अलग रास्तों पर मुड़ जाते हैं। स्कूल का दोस्त, कॉलेज की मोहब्बत, ऑफिस का यार, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर गए, यानी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ लोग साथ नहीं रहते मगर यादों में हमेशा सफर करते हैं। तो चले बढ़ते हैं जिंदगी के सफरनामे की ओर इस एक और नगमे के साथ।

मैं उड़ा जी हाँ, धुआं मतलब एक धुंध में खो जाना। जब फिक्र की बात हो तो उसको धुंध में छोड़ दीजिए, कहीं गुमसा हो जाए, अपने आप को एक नए सफर की ओर आगे बढ़ाइए। ये गीत हौसले की मिसाल है। दर्द आया गया पर जिंदगी रुकी नहीं, ईएमआई, बीमारियां, जिम्मेदारियां, फिर भी हर सुबह उठकर कहना खुद से कि चलो आज भी निभा लेते हैं जिंदगी को अपने तरीके से, अपने फन से।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम भूले बिसरे गीत, और मैं हूं आपके साथ में आपकी अपनी आरजे अनोखी। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगानी पर, जिंदगी पर और इस जीवन पर। इसी में एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने आपके लिए चुना हुआ है, और ये गाना बेहद बेहद बेहद पसंद किया जाता है आज भी। वैसे आज के सारे नगमे एवरग्रीन हिट्स में से एक है, और जब बात होती है आपके लिए सॉन्ग सिलेक्शन करने की, तो ना जाने कहाँ से कितने सारे ख्यालात इकट्ठा तालमेल बिठाने को आतुर हो जाते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं इस नगमे के साथ में, जिसके बोल हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाई, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, है ना। जिंदगी यही तो करती है, खेल सा करती है, हंसी ठिठोली सा करती है, कभी नाराज हो जाती है, कभी हमसे शिकवे गिले भी करती है। तो इस जिंदगी का साथ क्यों ही छोड़ना, अपने तरीके से इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, यही तो है जिंदगी का असली सफरनामा। इस गीत में सवाल है, जवाब नहीं है। कभी जो चाहिए वो नहीं मिलता, और जो मिल जाता है उसकी हम कीमत ही नहीं समझ पाते, लेकिन इस गाने की कीमत को हम समझेंगे। चलिए फिर सुनते हैं ना इस गाने।

श्रोताओं, अब ले चलेंगे आपको जिंदगी के एक और परिवेश की ओर, एक और दृश्य की ओर, एक और नगमे की ओर। नगमे के बोल हैं मैं

कभी कभी ऐसा फील होता है ना, हम सभी को होता है, हम सभी की जिंदगी में एक गहराई वाला दर्द आता है और वो दर्द हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। पर कोई कितना भी समझा ले, बुझा ले, पुचकार ले, समझते और संभलते हम तभी हैं जब हम अपने आप से मान लें कि बस अब हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त है। भले ही ये पतंग कट गई है, इसका डोर इसके मांझे से अलग हो चुका है, अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे उड़ान भरनी है, और ऊंची, बस उड़ते जाना है और इस सफर का अंत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सॉन्ग हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि पतंग की तरह जिंदगी है, डोर किसी और के हाथ में है, कभी बॉस की डोर, कभी समाज की डोर और कभी अपनों की उम्मीदों की डोर, पर इसमें हम कहाँ हैं और हमारी डोर कहाँ है, सोचना पड़ेगा आपको। तो चलिए सोचते हैं फिर इस गाने के माध्यम से।

और अब आपके लिए वो नगमा जो आपको हर कदम एक उम्मीद से भर देता है। नगमे के बोल हैं,

बिल्कुल, खुशी भी आएगी और खुशी को हम एंजॉय भी करेंगे इसी नगमे के साथ में, जो है वो बदलता रहेगा। बेशक आज जो अपना है कल याद बनकर रह जाएगा, और यही तो रीत है, यही तो दस्तूर है, यही तो जिंदगी और जिंदगानी है। आइए जीते हैं फिर इस जिंदगी को इस बेशुमार सीख वाले नगमे के साथ।

ये सफर चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत का और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अनोखी। एक और नगमे की बात करना चाहती मैं आपसे, जो कि है जिन

ये गीत आईना दिखाता है, भागते भागते हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए और अपने दिल को, अपने दिमाग को एक संतुलन में लाइए और उसके बाद फिर से हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ साथ बैलेंस बनाने की भी कोशिश को लगातार जारी रखिए। फिलहाल ये गाना।

श्रोताओं, अब ले चलूंगी मैं आपको इस जिंदगी के एक और फेज की ओर। जब हम सोचते हैं, एक दौर ऐसा भी आता है ना जिंदगी में कि

नहीं। जी हाँ, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, पर बरखुदार यही तो जिंदगी है और यही तो जिंदगी का एक रोमांच है। चलिए फिर चलते हैं, इस गाने को आगे बढ़ने देते हैं

तो दोस्तों, ये सारे गीत दरअसल हम सबकी अधूरी आत्मकथा है। कभी मौका मिले तो इन गानों को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी कोई नया गाना नहीं, एक भूला बिसरा गीत है जो सही वक्त पर चल जाए तो रूह तक बजने लगता है। अब दें आपकी अपनी आरजी अनोखी को इजाजत बतौर तोहफा एक नगमा आपके लिए, जिसके बोल हैं, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेती है ना, हर कदम पे हर मोड़ पे हमेशा लेती है, पर जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी इस इम्तिहान को पास कर लेता है, जिसको इस इम्तिहान को पास करने के गुर मालूम है, वो अपने लाइफ में बखूबी कुछ अच्छा कर रहा है। और यही अंतिम सच है कि जिंदगी सवाल नहीं, जिंदगी जवाब भी नहीं, जिंदगी बस एक तजुर्बा है जो हम रोज नए इम्तिहान से लेते हैं। फिर मिलेगी आपकी आरजी अनोखी किसी नए सफरनामे के साथ, किसी और कहानी किस्से के साथ, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: में डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
2: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।